मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 मई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 5:57 होने वाले हैं। अब आरंभ हो रही है हमारी आज की ये सभा।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ और वेव्स ओटीटी पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में

0: समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
3: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में धान की उन्नत प्रजातियों के विषय में जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
1: किसान भाइयों, आज हम धान की उन्नत प्रजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसका बीज उन्नत किस्म का एवं प्रमाणित होने के साथ साथ अधिकतम पैदावार वाला होना चाहिए। धान की प्रजातियां वैसे तो बहुत सी हैं, लेकिन इन किस्मों की कुछ अपनी विशेषताएं भी हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां क्षेत्रगत होती हैं, यानी जो प्रजाति जिस क्षेत्र के लिए स्वीकृत हो उसे उसी क्षेत्र में ही बोना चाहिए। दूसरे क्षेत्रों में लगाने से उसकी सही पैदावार नहीं मिल पाती है। कुछ प्रजातियों का विकास मिट्टी की दशा के अनुसार किया जाता है, जैसे ऊसर के लिए विकसित प्रजातियां या जल भराव वाले क्षेत्रों के लिए संस्तुत प्रजातियां। ऊसर मिट्टी में खेती करने के लिए धान की जो प्रजातियां स्वीकृत हैं वह ऊसर मिट्टी में ही ज़्यादा पैदावार देती हैं। अन्य मिट्टियों में इनकी पैदावार अपेक्षाकृत कम होती है। इसी तरह जलमग्न क्षेत्रों के लिए अलग से प्रजातियां स्वीकृत हैं, जिनकी खेती इस तरह के क्षेत्रों में ही करनी चाहिए। धान की कुछ ऐसी भी प्रजातियां स्वीकृत हैं जो कि सुगंधित होती हैं। धान की प्रजातियों का चयन करते समय एक बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए, वह है इसका समय। धान की कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो कि जल्दी तैयार होती हैं। इन किस्मों के पकने में 100 से 120 दिन का समय लगता है। कुछ किस्में देर से पकने वाली होती हैं, यानी इनके पकने में 120 से 140 दिन का समय लगता है। इसके अलावा कुछ धान की प्रजातियां काफ़ी देर से पकती हैं, अतः जिन प्रजातियों को तैयार होने में लंबा समय लगता है उनकी रोपाई थोड़ा पहले करनी चाहिए ताकि उसे तैयार होने में पर्याप्त समय मिल सके। जो प्रजातियां जल्दी तैयार होती हैं उन्हें अपेक्षाकृत देर से रोपना चाहिए। ये तो कुछ बातें रहीं प्रजातियों के चुनाव से संबंधित। अब इन प्रजातियों की चर्चा। प्रदेश में धान की खेती दो दशाओं में करते हैं, असिंचित दशा यानी जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं, यानी वर्षा पर आश्रित खेती। दूसरी सिंचित दशा है, यानी जहाँ पानी के साधन उपलब्ध हैं। असिंचित दशा में अगर धान की खेती बुआई करके करना चाहते हैं तो नरेंद्र 97, नरेंद्र 118 और गोविंद प्रजातियों में से चुनाव करना चाहिए। अगर रोपाई करना चाहते हैं तो साकेत 4, नरेंद्र 118 और गोविंद प्रजातियों की नर्सरी डालें। बात आती है सिंचित दशा की। ऐसे क्षेत्रों के लिए शीघ्र पकने वाली जो प्रजातियां हैं उनमें नरेंद्र 80, नरेंद्र 118, नरेंद्र 97 प्रजातियां हैं। मध्य देर से यानी कि 120 से 140 दिन में तैयार होने वाली जो प्रजातियां हैं उनमें प्रमुख हैं मालवीय 2-1, मालवीय 4-3, नरेंद्र 359, प्रो एग्रो 64-44, IR 36, सरजू 52, सीता और पंतधान 4। जो प्रजातियां पकने में 140 दिन से भी अधिक समय लेती हैं वह हैं क्रॉस 116, टाइप 100, टाइप 9, टाइप 23, मसूरी, साभा मसूरी यानी BPT 5204, MTU 7029, सवाड़ा और MTU 1001। धान की सुगंधित किस्में भी हैं, जैसे टाइप 3 पूसा बासमती 1, बासमती 370, हरियाणा बासमती और तरावड़ी बासमती। इसके अलावा सुगंध 3, ये सब प्रजातियां हैं जिनकी आप खेती कर सकते हैं। अगर ऊसर जमीन है तो ऐसे क्षेत्रों में नरेंद्र ऊसर धान 1, नरेंद्र ऊसर धान 2, नरेंद्र ऊसर धान 3, CSR 10, CSR 13, CSR 30 प्रजातियों को बो सकते हैं। तो इस तरह से क्षेत्र एवं परिस्थितियों के अनुसार धान की प्रजातियों का चुनाव करें और फिर उनकी खेती करें।
0: धान की उन्नत प्रजातियां, इस विषय पर किसान भाइयों को जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। खेती की बातें कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। उस परम शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति अगर सानिध्य का एहसास करना है तो उसका सबसे सरल और सुगम उपाय है निष्काम भक्ति, संपूर्ण समर्पण और निस्वार्थ प्रेम।

प्रभु भक्ति या ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जो सीधे प्रभु से सामीप्य दिलाता है। ये प्रार्थना जुबान से न होकर अंतर्मन से, हृदय से होनी चाहिए।

कहते हैं मौन प्रार्थनाएं ईश्वर तक जल्दी पहुंचती हैं, और ये मौन प्रार्थनाएं होती हैं हमारे कर्म, अन्य जीवों के प्रति हमारा व्यवहार और प्रेम।

कहते हैं ईश्वर का वास प्रत्येक जीव में है। अतः यदि ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करना है, तो प्रत्येक जीव से प्रेम करें, उसके प्रति आपका व्यवहार निस्वार्थ होना होगा।

0: आराधना के अंतर्गत आज आपने अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल, चित्रा सिंह और आलोक गांगुली की गायी भक्ति रचनाएं सुनी। हमारी आज की आराधना अब संपन्न होती है। मीडियम वेव के मीटर पर अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को और अब प्रस्तुत है विचार बिंदु। आज सुनिए मैथिली शरण गुप्त के विचार।
1: राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में राष्ट्रीयता। भारतवर्ष में राष्ट्र की अवधारणा का संदर्भ महाभारत काल में दिखाई पड़ता है, जिसमें भारत भूमि को एक राष्ट्रीय इकाई के रूप में देखा गया था। सामान्यतः किसी निश्चित भूभाग पर निवास करने वाला जनसमूह जब उस भूभाग के प्रति समर्पण और गर्व की भावना से युक्त तथा सांस्कृतिक एवं राजनैतिक दृष्टि से समान मूल्यों एवं हितों से परस्पर आबद्ध होता है, तब उसे एक राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रीयता की समग्र एवं पूर्ण अवधारणा के लिए भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई, आर्थिक एवं राजनीतिक एकता एवं भावात्मक एकता का होना उसके लिए आवश्यक है। राष्ट्रीयता की यह भावना राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के काव्य में दिखाई देती है। श्री मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में जिन महापुरुषों को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है वो हैं स्वामी दयानंद, राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामतीर्थ, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी। श्री मैथिली शरण गुप्त को सभी से शक्ति और प्रेरणा प्राप्त हुई थी। मैथिली शरण गुप्त को अपने साहित्यिक गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी से राष्ट्रीय चेतना की वैचारिक समृद्धि प्राप्त हुई थी। श्री गुप्त ने जिस राष्ट्रीयता को अपने साहित्य में प्रतिष्ठित किया उसकी अभिव्यक्ति कई रूपों में हुई। स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जननी जन्मभूमि कही गई, सेवनीया है सभी की वह महामहिमामयी। मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है, इसकी महिमा अपरंपार है और ये हर किसी के लिए पूजनीय है। गुप्त जी का काव्य, गुप्त जी के काव्य में कवि कर्म केवल मनोरंजन नहीं था, अपितु उन्होंने उसमें बात कही कि उसमें ज्ञान और उपदेश का भी मर्म हो। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। श्री मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती लिखी जो उनकी बहुत प्रसिद्ध काव्य कृति है और उनकी कृति सर्वोत्कृष्ट मानी गई। उन्होंने अपनी यह पुस्तक उस समय लिखी जब हमें समझाया जा रहा था कि हमारा कोई इतिहास नहीं है। उस समय गुप्त जी लिखते हैं, फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यही थी जग रही जो ज्योति अब संसार में। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। भारत भारती में भारत की श्रेष्ठता का प्रतिपादन वो इन शब्दों में करते हैं, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहां। संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। गुप्त जी ने पराधीन भारत की जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को अपने देश संस्कारों से वाणी दी। विश्व शांति, अहिंसात्मक आंदोलन, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक आर्थिक समानता, कृषि विज्ञान की प्रगति, राष्ट्रीय चेतना के सभी पक्षों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने एक भारतीय के रूप में सोचने और कर्तव्य पालन की प्रेरणा दी। बापू ने उनको राष्ट्रकवि का नाम दिया था। उनके लिए देश सर्वोपरि था। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। श्री मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचनाएं साकेत, यशोधरा, भारत भारती, द्वापर, सिद्धराज, पंचवटी आदि हैं। उन्होंने अपनी सभी रचनाओं के माध्यम से समाज को जागृत किया और इसीलिए डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है कि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, वैसे ही सहज भाव से मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि हैं। ये उपाधियां किसी व्यक्ति या समूह द्वारा प्रदत्त नहीं, मानो पूरे राष्ट्र के द्वारा दी गई हैं।
0: विचार बिंदु के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मैथिली शरण गुप्त के विचार। आकाशवाणी

0: का ये वाराणसी केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं दूषित जल से होने वाली बीमारियां और इनका इलाज। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विनोद कुमार। आज सुनिए इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी IMS BHU। आज हम चर्चा कर रहे हैं दूषित जल से होने वाले प्रमुख बीमारियों के बारे में, जिसमें कि प्रमुख नाम थे हैजा, टाइफॉइड, पेचिस, हेपेटाइटिस ए और ई, जियाडियासिस, क्रिप्टोस्पोरोसिस एंड लेप्टोस्पायरोसिस, जिसके बारे में हम लोगों ने उनके कारण को जाना, हमने उनके मुख्य लक्षण को समझा और उनका इलाज के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। हमने इलाज के समान सिद्धांत पे भी चर्चा की। तो अब हम हेपेटाइटिस के बारे में बात कर रहे थे। तो हेपेटाइटिस में आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपको बेहोशी होने लगे, मरीज अकबक करने लगता है या फिर वो मुंह से कुछ नहीं ले पाता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि ये लिवर फेलियर के लक्षण हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से मिल करके उसका इलाज शुरू करना है। फिर उसके बाद इन सब बीमारियों में आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर समान लक्षण है तो आप रिहाइड्रेशन थेरेपी यानी ORS का घोल से भी अपने से इलाज कर सकते हैं। अगर आपको गंभीर डिहाइड्रेशन होता है तो उस केस में आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें कि एंटीबायोटिक की जरूरी होती है। तो तुरंत डॉक्टर से मिले तो उसके लिए दस्त उल्टी 2 दिन से अधिक जारी रहे। अगर आपको बहुत कमजोरी लग रही है, दस्त उल्टी में बिल्कुल आराम नहीं हो रहा है, तो आपको मिलना है, क्योंकि ज्यादातर दस्त उल्टी वायरस की वजह से होती है। तो वायरस से जो दस्त उल्टी होती है वो ज्यादातर 2-3 दिनों में ठीक हो जाती है। अगर मान लीजिए ठीक नहीं हो रहा है तो आपको जरूर विशेषज्ञ से मिलना है। खून वाला मल या पेशाब, अगर आपके पेशाब में खून आ रहा हो या मल में खून आ रहा हो तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना है। तेज डिहाइड्रेशन माने अगर आपको चक्कर आ रहा है, पेशाब कम हो रहा है, मुंह सूख रहा है, खड़े होने में चक्कर आ रहा है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर से जरूर मिलना है, तुरंत मिलना है। बच्चे, बुजुर्ग या कमजोर लोग जिसमें की प्रतिरोधक क्षमता कम है, जैसे कि कुछ मरीज हैं जिनको शुगर है, अगर मान लीजिए उनका शुगर कंट्रोल नहीं है, या फिर जो मरीज है जिनको की पता है कि जैसे HIV के मरीज होते हैं जिनमें की इम्यूनिटी कमजोर होती है, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, क्योंकि इनमें ये बीमारियां बहुत जल्दी ही प्रभावित करती हैं और दिमाग पर भी असर करती है, तो इनको आपको बहुत जल्दी डॉक्टर से मिलना है, इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना है। तो अब हम बचाव के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही पिए। तो ध्यान रखिए, ये सब गंदे पानी से होने वाली बीमारियां हैं, तो आपका सबसे पहला रोकथाम होगा कि आप उबला या फिल्टर किया हुआ पानी ही पीना है। विशेष ध्यान देना है इस पे, हाथ धोना, हाँ ये बहुत ही जरूरी है, जो कि हम लोग सब लोग करते ही हैं, लेकिन थोड़ा और ध्यान से करना है। हाँ, खाने से पहले और शौचालय के बाद को हाथ अच्छे से धोना है, खासकर बुजुर्ग और बच्चों में आपको ये चीज बहुत ही ध्यान देना है उनको, कि ये ध्यान दें इस चीज पे। कच्चे आध पके भोजन से बचे, मान लीजिए कोई चीज कच्चा है या आध पका है, उसको आप अच्छे से पका के खाइए। पानी के बर्तन को ढक कर रखें, क्योंकि ये सब संक्रमण से होता है, तो इसलिए इसको ढक के रखना है। और टीकाकरण, कुछ बीमारियां हैं जैसे टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए, जिसके लिए टीकाकरण उपलब्ध है। हालांकि भारत में हेपेटाइटिस ए के टीकाकरण की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम लोगों को ज्यादातर बचपन में ही हेपेटाइटिस ए हो जाता है और हमारे में इम्यूनिटी हो जाती है, लेकिन आजकल अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनमें टीकाकरण भी करवा सकते हैं। तो हम लोगों ने जो चर्चा की उसका सारांश यह है कि दूषित जल से होने वाली बीमारियां मुख्यतः दस्त और डिहाइड्रेशन से जुड़ी होती हैं। प्राथमिक उपचार ORS और IV फ्लूड है। परजीवी से होने वाली बीमारियों को हम लोगों को उसी के अनुसार आपको एंटीबायोटिक्स या एंटी पैरासिटिक दवाई लेनी पड़ती है, जो कि डॉक्टर से मिल करके आपको लेना है। और बचाव के लिए आप स्वच्छ पानी, हाथ का धोना, टीकाकरण सबसे प्रभावी उपाय है। एक चीज और, जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं वो जूस पीते हैं, तो ये ध्यान दें कि जूस और गन्ने का रस जो पी रहे हैं उनके यहाँ पे साफ सफाई है कि नहीं, मक्खियां बहुत ज्यादा तो नहीं है। ये सब चीजों से भी हेपेटाइटिस और ये गंदे पानी से होने वाले बीमारी हो सकते, ध्यान देना है। तो धन्यवाद।
0: दूषित जल से होने वाली बीमारियां और इनका इलाज, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विनोद कुमार सिंह। खेती की स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन-स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

राजा जनक की यज्ञशाला में शिव के जिस धनुष को रावण तथा बाणासुर जैसे जगत विजयी वीर हिला तक नहीं सके, उसे खंडित करने के लिए गुरु विश्वामित्र का आदेश पाकर श्री राम उठ खड़े हुए। इधर लक्ष्मण ने अग्रज को धनुष की ओर ताकते देखकर अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर दिक्पालों, कच्छप तथा शेषनाग और वराह को सावधान होकर पृथ्वी को दबाए रहने का आदेश दिया ताकि वो हिलने ना पाए। श्रीराम धनुष के निकट पहुंचे। सबका संदेह और अज्ञान, अभिमानी तथा दुष्ट राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की क्रूरता, देवताओं की कातरता, सीता जी की सोच, राजा जनक का संशय, सभी मानो शिव जी के धनुष रूपी जलयान पर आकर सवार हो गए। लगा वो राम की भुजाओं के बल का सहारा पाकर भव सागर पार कर जाना चाहते हैं। श्री राम ने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बड़ी सहजता से धनुष को उठा लिया। उसे उठाते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा कि एक भयंकर नाद के साथ वो दो खंडों में टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। मानस पाठ की इस कड़ी के गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित पद्म पुरस्कार 2025 कार्यक्रम का सजीव प्रसारण आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से शाम 5 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में रात्रि 10:30 पर और दोपहर 12:45 पर सुनिएगा पंडित पशुपतिनाथ मिश्र का गायन। इसी कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर हम आपको सुनवाएंगे पंडित जितेंद्र अभिषेकी का गायन। आपसे मिलिए इस कार्यक्रम में रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे 95 बटालियन के कमांडेंट राजेश्वर बलापुरकर से चंदन सिंह की बातचीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे सुनिएगा पंडित सीताराम सिंह की गायी गजलें और इसी कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर हम आपको सुनवाएंगे मनोहर सिंह के गाए भजन। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई हीरालाल यादव और साथियों के गाए लोकगीत के साथ ही सुनेंगे डॉक्टर संतोष कुमार से सतीश कुमार यादव की बातचीत। बातचीत का विषय होगा पशुपालन हेतु सरकारी सुविधाएं। हीरालाल यादव और साथियों के गाए लोकगीत आप सुबह 9:50 पर और दिन में 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं।

गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर बहनें चर्चा, गीत संगीत और सेहत ज्ञान के साथ ही सुनेंगी ईशा त्रिपाठी की वार्ता तनाव प्रबंधन है जरूरी। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे दोपहर 12 बजे। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित भोजपुरी फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुनिएगा दिन में 2:30 पर। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे दिन में 11 बजे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम अंजुमन आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत के कार्यक्रमों के अंतर्गत रसरंग सुनिएगा शाम 7:31 पर, रसमाधुरी रात 8:15 पर, मधुरिमा सुबह 8:45 पर, झंकार सुबह 10 बजे। इसके अलावा फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकते हैं शाम 6:10 पर और शाम 7 बजे।

0: श्रोताओं, आपको पुनः बता दें, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित पद्म पुरस्कार 2025 कार्यक्रम का सजीव प्रसारण आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से शाम 5 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में रात्रि 10:30 पर और दोपहर 12:45 पर सुनिएगा पंडित पशुपतिनाथ मिश्र का गायन, और इसी कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर हम आपको सुनवाएंगे पंडित जितेंद्र अभिषेकी का गायन। और अब से थोड़ी ही देर में यानी सुबह 7 बजे सुनिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस। ये था संक्षिप्त विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। संस्कृत समाचार सुनिए दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्दझाः।

हेलो हाय नमस्कारम सुप्रभातम गुड मॉर्निंग बनारस। सप्ताह की नई शुरुआत यानी मंडे की खूबसूरत मॉर्निंग और साथ में बनारस की वो सुहानी सुबह जहां गंगा किनारे उगता सूरज हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। इसी नई उम्मीद नई ऊर्जा के साथ चलिए करते हैं शुरुआत आपके अपने नंबर वन शो गुड मॉर्निंग बनारस की। तो फटाफट से बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल सेट का वॉल्यूम क्योंकि बज गए हैं सुबह के 7 और शुरू हो गया है आपका अपना फेवरेट और नंबर वन मॉर्निंग शो द वन एंड ओनली गुड मॉर्निंग बनारस। और साथ ही कीजिए आज के अपने मॉर्निंग साथी शुचि का स्वीकार प्यार भरा नमस्कार गुड मॉर्निंग।

0: पड़ी। जागो जागो जागो सुबह आ गई, जल्दी से लो चाय ठंडी हो गई।
1: हाँ जी दोस्तों, सुबह हो चुकी है और सूरज भगवान भी अपनी तेज किरणों के साथ पूरे आसमान पर अपना साम्राज्य जमा चुके हैं। लग रहा है जैसे आज सुबह ही सुबह उन्होंने ऐलान कर दिया हो कि भैया अब गर्मी से बचना आसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मई माह का अंतिम सप्ताह चल रहा है और ये सप्ताह अपने आप में बहुत खास है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर खास क्यों, क्या आज कोई बड़ा दिवस है या फिर कोई त्योहार? अरे जनाब, खास इसलिए है क्योंकि आज से शुरू हो रहा है नौ तपा का असर, यानी वो नौ दिन जब सूरज देव अपनी पूरी गर्मी के साथ धरती को तपाने निकल पड़ते हैं। सुबह से ही धूप के तेवर कुछ ऐसे होते हैं कि पंखा भी कह उठता है, भाई साहब अब मुझसे अकेले नहीं होगा। लेकिन बनारस की बात ही अलग है दोस्तों, यहाँ गर्मी चाहे कितनी भी बढ़ जाए, घाटों की सुबह, गंगा किनारे चलती ठंडी हवाएं और कुल्हड़ वाली चाय की चुस्की दिल को फिर भी सुकून दे देती है। जी हाँ दोस्तों, अब बनारस घाट और गंगा किनारे बैठे सुकून की बात हो रही है तो इन दिनों दोस्तों हम आपको गुड मॉर्निंग बनारस में सैर करा रहे हैं, बनारस के घाटों की और साथ ही बता रहे हैं उनसे जुड़े दिलचस्प किस्सों की। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं उस घाट की सैर पर जिसने अपने भीतर मुक्ति और साधना के एहसास को समेटा है और ये घाट है महानिर्वाणी घाट।

महानिर्वाणी घाट महानिर्वाणी संप्रदाय के नागा साधुओं के अखाड़े के कारण प्रसिद्ध है और इसी अखाड़े के नाम पर इसका नामकरण भी हुआ। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस अखाड़े की स्थापना चेत सिंह किला के उत्तरी भाग में की गई थी। इस घाट के भीतर नेपाल महाराज के द्वारा निर्मित चार छोटे छोटे शिव मंदिर भी स्थापित हैं, जो इसकी धार्मिक महत्ता को और अधिक बढ़ाते हैं। इतिहास के पन्नों में ये उल्लेख भी मिलता है कि 7वीं शताब्दी के समय में सांख्य दर्शन के आचार्य कपिल मुनि ने इस घाट पर निवास किया था। ये प्राचीन घाट न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि भारत की गूढ़ सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपराओं का भी प्रतीक है। हे बनारस, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। दोस्तों, बातें तो हम और भी करेंगे, लेकिन बातों के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, तो सुनिए ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक और बने रहिए अपने पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस में।

वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग बनारस ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। और दोस्तों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको रूबरू कराते हैं अपने देश, दुनिया और शहर बनारस के हाल समाचार से।

नगर निगम का नो फ्यूल डे। सरकारी गाड़ी छोड़ इलेक्ट्रिक कार पर सवार हुए मेयर ईंधन बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। प्रधानमंत्री के पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत के संदेश को आगे बढ़ाते हुए नगर निगम ने नो फ्यूल डे के रूप में मनाया।

इस अवसर पर महापौर अशोक कुमार तिवारी ने खुद पहल करते हुए लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मेयर सरकारी गाड़ी छोड़ ईवी पर सवार होकर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। महापौर ने अपने पारंपरिक सरकारी पेट्रोल वाहन का उपयोग नहीं किया। भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच वह छाता लेकर पैदल ही नगर निगम कार्यालय पहुंचे। उनके इस सादगी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को देखकर निगम कर्मचारी और आम लोगों ने सराहना की। नगर निगम कार्यालय पहुंचने के बाद महापौर बीएचयू में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकले। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल या डीजल वाहन के बजाय पूरी तरह प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल किया। महापौर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है और हर नागरिक को इसमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। महापौर की इस पहल का असर नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी देखने को मिला। नगर निगम परिसर में सामान्य दिनों की तुलना में पारंपरिक वाहनों की संख्या कम दिखाई दी। अधिकांश कर्मचारी साइकिल, ई रिक्शा, बस या अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों का उपयोग करते नजर आए। वहीं कुछ अधिकारियों ने इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। नगर निगम का उद्देश्य लोगों को निजी ईंधन आधारित वाहनों का कम उपयोग करने और पर्यावरण अनुकूल साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। निगम की इस पहल को शहर के बुद्धिजीवियों और सामाजिक संगठनों ने भी सराहा है। नो फ्यूल डे के माध्यम से नगर निगम ने स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त वाराणसी बनाने का संदेश देने का प्रयास किया है। वाराणसी को मिला अत्याधुनिक MSNCU। वाराणसी शहर दक्षिण के विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने किया 2.55 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास। नीलकंठ तिवारी वाराणसी शहर दक्षिणी के विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी ने किया 2.55 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास। कबीर चौरा महिला अस्पताल में प्रस्तावित आधुनिक MSNCU में होंगे 48 बेड। जी हाँ दोस्तों, मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देने की दिशा में वाराणसी को एक बड़ी स्वास्थ्य सौगात मिली है। कबीर चौरा स्थित राजकीय जिला महिला चिकित्सालय परिसर में शहर दक्षिणी के विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉ. नीलकंठ तिवारी ने बनारस के पहले MSNCU भवन का शिलान्यास किया। लगभग 2.55 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली ये अत्याधुनिक स्वास्थ्य इकाई गरीब महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए आधुनिक चिकित्सा सेवाओं का नया केंद्र बनेगी। समारोह में डॉ. नीलकंठ तिवारी ने बताया कि मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में MSNCU एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित भवन में 24 बेड माताओं और 24 बेड उनके नवजात शिशुओं के लिए स्थापित किए जाएंगे। इस यूनिट के निर्माण से प्रसव के बाद गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही माताओं और बीमार नवजातों को एक ही स्थान पर समन्वित उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि अब तक समय से पूर्व जन्म लेने वाले या गंभीर स्थिति वाले नवजात बच्चों को उपचार के लिए माँ से अलग कर दूसरे अस्पतालों में भेजना पड़ता था। इससे माँ और शिशु दोनों को मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस यूनिट के शुरू होने के बाद प्री मैच्योर और कमजोर बच्चों को मां के संपर्क में रखते हुए ही बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नीलकंठ तिवारी ने बताया कि ये यूनिट अत्याधुनिक तकनीक और प्रशिक्षित चिकित्सा स्टाफ से लैस होगी। यहां न्यूनतम इन्वेसिव वेंटिलेशन, फोटोथेरेपी, वार्मर, इनक्यूबेटर जैसी उन्नत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। महिला अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में प्रसव होते हैं और आसपास के जनपदों से भी बड़ी संख्या में मरीज यहां पहुंचते हैं। ऐसे में इस यूनिट के शुरू होने से बीएचयू और अन्य बड़े अस्पतालों में रेफर होने वाले मामलों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि ये परियोजना जिले विशेषकर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। नवजात मृत्यु दर कम करने में यह यूनिट अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि गाजियाबाद के बाद यह उत्तर प्रदेश का दूसरा अत्याधुनिक MSNCU होगा और अगले 4 माह में इसका निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वाराणसी में विकास को रफ्तार, महापौर ने 2 बड़े सीवर प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। नगर निगम की ओर से शहर में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए विकास कार्यों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में महापौर अशोक कुमार तिवारी ने 2 महत्वपूर्ण सीवर परियोजनाओं का शिलान्यास किया। महापौर ने वार्ड संख्या 58 खजूरी स्थित स्टेट बैंक कॉलोनी में 40.84 लाख रूपये की लागत से बनने वाली 360 मीटर लंबी सीवर लाइन परियोजना का विधिवत शुभारंभ किया है। इस परियोजना के पूरा होने के

बाद क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से बनी जल निकासी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। स्थानीय नागरिकों ने भी इस कार्य को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया है। इसके बाद महापौर ने वार्ड संख्या 9 में कादम्बिनी लॉन के पास दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास किया। यहां गेल द्वारा क्षतिग्रस्त हुई सीवर लाइन की मरम्मत 89.61 लाख रूपये की लागत से ट्रेंचलेस तकनीक के माध्यम से कराई जाएगी। इस आधुनिक तकनीक की खासियत ये है कि सड़क को बिना खोदे सीवर लाइन की मरम्मत संभव हो सकेगी, जिससे यातायात और आम जन को कम परेशानी होगी। महापौर ने कहा कि नगर निगम शहर के आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। सीवर, सड़क और जल निकासी जैसी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। शिलान्यास के दौरान स्थानीय पार्षद, भाजपा मंडल अध्यक्ष और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। तो ये था देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। और आइए अब पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं आज के दिन यानी 25 मई में क्या है खास। सन 1995 में आज ही के दिन अमेरिकी वैज्ञानिकों को पहली बार जीवित जीव के डीएनए को डीकोड करने में सफलता मिली थी। सन 1998 में आज ही के दिन परमाणु परीक्षणों के कारण भारत पर प्रतिबंध न लगाने के लिए यूरोपीय संघ के सभी 15 सदस्य देश सहमत हुए थे। सन 2003 में आज ही के दिन चिली ने पहली बार विश्व कप टेनिस खिताब जीता था। सन 2006 में आज ही के दिन नासा ने जीओईएसएन नामक मौसम उपग्रह अंतरिक्ष में रवाना किया था। तो ये थी इतिहास पे आज के दिन की खास बातें। और अब समय हो गया है दोस्तों आप सब से टाटा बाय बाय करने का। हम फिर मिलेंगे काशी के किसी और घाट, किसी और कहानी, बनारसी अंदाज के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त शुचि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:18 हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से थोड़ी ही देर में।

0: उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग के बीच प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। ताजमहल देखने आज आगरा जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। और प्रदेश में अभी और बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप, पूर्वी जिलों के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चौपालों में राजस्ववाद, घरेलू हिंसा, अवैध वसूली और स्थानीय स्तर की शिकायतों का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। श्री योगी ने IGRS और CM हेल्पलाइन से मिली शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण तथा संतुष्टिपरक निस्तारण पर बल देते हुए कहा कि शिकायतों में किसी भी स्तर की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गंगा दशहरा और बकरीद को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों सहित प्रदेश के हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत सहित ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन और डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी संयंत्रों में तकनीकी दक्षता तथा रखरखाव व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देने के साथ ही फीडर वाइज मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय करने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आंधी तूफान के बावजूद विद्युत व्यवस्था बहाल रखने के लिए त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय रखने को भी कहा। दीपाली सिंह, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने के लिए पुलिस रेडियो यूनिट को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस की लोकेशन, मूवमेंट और संचार गतिविधियों की गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं कल शाम को ही आयुष विभाग की एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस नीति 2026 को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों तथा तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। ये निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने कल वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान ये तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, केनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव लाने के निर्देश दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 28 मई को प्रस्तावित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2026 स्थगित कर दिया है। NTA के अनुसार बकरीद की छुट्टी की तारीख में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_ उपलब्ध है।

0: भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज आगरा में ताजमहल देखने जाएंगे। वो विशेष वायुयान से आगरा पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम पहुंचेगा। शिल्पग्राम से बैटरी चलित गोल्फ कार्ट में बैठकर वह ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के आगरा भ्रमण के मद्देनजर केंद्रीय एवं प्रांतीय खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। ताजमहल के आसपास के होटलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री के ताजमहल भ्रमण के दौरान आम पर्यटकों के लिए ताजमहल खुला रहेगा। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: इस बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने महिलाओं के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कल लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों के साथ वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान बसपा प्रमुख ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा की एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव जिस प्रकार की नई नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी को तैयारियों के हर स्तर पर और भी चुस्त दुरुस्त तथा मुस्तैद बनाने की जरूरत है। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़ मुक्तेश्वर में आज से गंगा दशहरा पर्व का आयोजन हो रहा है। पुलिस प्रशासन ने कल डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं अमरोहा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल से ही रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया। एक रिपोर्ट।
2: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर पीएससी, फ्लड पीएससी, फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेडिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, समाचार, हापुड़।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर जारी रहने की चेतावनी दी है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है।
3: जैसा कि पिछले

0: होने की संभावना है।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिन के समय कुछ स्थानों पर कल तक के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट भी जारी किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग के बीच प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। ताजमहल देखने आज आगरा जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। और प्रदेश में अभी और बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप। पूर्वी जिलों के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता

0: जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
1: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित जितेंद्र अभिषेकी का गायन। राग है भोपाल तोड़ी। आपके साथ तबले पर संगत की है सुभाष कामत ने।

अभी आप सुन रहे थे पंडित जितेंद्र अभिषेकी का गायन। राग था भोपाल तोड़ी। तबले पर संगतकार थे सुभाष कामत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित जसराज का राग भैरवी में गाया भजन। रचना कुंभन दास की है।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज का राग भैरवी में गाया भजन, रचना कुंभन दास की थी। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने

0: 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराए।

0: जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
3: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही

0: राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हुर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हुर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हुर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hiked by 2.61 rupees per litre, while that of diesel by 2.71 rupees per litre. National Testing Agency postpones CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jayashankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसां सिविल कोर्ट के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत

0: पद्मश्री अवार्ड्स हैं। बकिया पद्म अवार्ड्स इस तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे जो बाद में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। इनाम याफ्तगान में 19 खवातीन शामिल हैं, जबकि 16 अफराद को बाद अज़ मर्ग इन अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड मुल्क के आला तरीन शहरी अवार्ड हैं। इन्हें 1954 में शुरू किया गया था और इनका ऐलान हर साल योम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। ये अवार्ड्स लोगों के इम्तियाजी कामों के अतराफ में दिए जाते हैं, जिनमें आर्ट, लिटरेचर, तालीम, खेलकूद, दवाएं, सामाजिक काम, साइंस और इंजीनियरिंग, अवामी उमूर और तिजारत और सनत के मैदान शामिल हैं। प्रिया मोंडाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: पद्म अवार्ड अदा किए जाने के मौके पर हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म के तौर पर खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं।
2: We launched an environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
3: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा, जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोग रोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
4: फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में असंग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए।
0: अपनी इन नशरियात में हम अपने सामेईन को उन शख्सियतों के कामों और जिंदगियों के बारे में तफसील फराहम करा रहे हैं जिन्हें पद्म अवार्ड से नवाजा गया है। आप इस बातचीत को आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबाइली बिरादरियों को यकसा सिविल कोड UCC के दायरे अमल से अलग करने की खसूसी सहूलतें रखी हैं, जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि उनके हकूक पूरी तरह महफूज हैं। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि UCC से कोई कबाइली हकूक खत्म नहीं होंगे।
5: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि कबायली बहबूद के बजट में नरेंद्र मोदी हुकूमत के तहत 1,50,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है, जबकि ये कांग्रेस सरकार के दौरान महज 28,000 करोड़ रुपए था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार दिबांशु पांडा को फाल्टा असेंबली में दोबारा कराई गई पोलिंग में रिकॉर्ड वोट हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि इस जीत से बीजेपी के तई मगरबी बंगाल के अवाम के पुख्ता अजम का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि लोग मुख्तलिफ शोबों में मगरबी बंगाल सरकार का गैर मामूली काम देख रहे हैं, लिहाजा उन्होंने इस पार्टी को मजीद काम सौंपने का फैसला किया है। जनाब मोदी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी कारकुनों की उनके गैर मामूली काम पर सताइश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले वक्त में मगरबी बंगाल की तरक्की के लिए सभी लोग इसी तरह काम करते रहेंगे। पेट्रोल की कीमत में आज 2.61 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 2.71 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। यह इजाफा 2 हफ्ते में चौथी बार है, लिहाजा अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपए और डीजल की कीमत 95.20 रुपए फी लीटर होगी। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने इस माह की 28 तारीख को होने वाले यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट्स के लिए दाखिले के मुश्तरका इम्तिहान 2026 को मुलतवी कर दिया है। NTA ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल अजहा के पेश नजर यह फैसला किया गया है। एजेंसी ने बताया कि अब इस इम्तिहान के लिए नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। NTA ने उम्मीदवारों को ताजा जानकारी के लिए उसकी बाजाब्ता वेबसाइट देखने का मशवरा दिया है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के जवाब के पर्चों की स्कैंड फोटोकॉपीज हासिल करने की आखिरी तारीख में 1 दिन की तौसीख कर दी है, जो कल तक थी। CBSE ने कहा कि यह फैसला इस मकसद से किया गया है कि तलबा को अपनी दरखास्तें दाखिल करने के लिए पूरा वक्त मिल सके। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान

0: जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर जारी एक पोस्ट के मुताबिक वजीर आजम ने जनाब प्रणय वर्मा की भारत बांग्लादेश ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनकी खिदमात को सराहा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात कोलकाता के एडन गार्डन्स में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 204 रन का निशाना दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद पर महज 163 रन बना सकी। ओस्लो में पहले राउंड के मुकाबलों के साथ ही नॉर्वे शतरंज 2026 का आगाज हो गया है। अलबत्ता इस टूर्नामेंट का आगाज सरकारी तौर पर आज भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा। ये नॉर्वे शतरंज का 14वां और नॉर्वे शतरंज खवातीन का 3रा टूर्नामेंट है। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर चलने के हवाले से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना के बाज़ इलाकों में भी दिन के दौरान शदीद गर्मी की सूरत हाल रहने का इम्कान है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब लिखता है कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। अखबार ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि दुनिया की दो बड़ी जमहूरियतों के दरमियान ताल्लुकात सिफारतकारी से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। इसी अखबार ने भारतीय हुकूमत की तरफ से अपने शहरियों को एबोला वायरस के तई मोहतात रहने के मशवरे से मुतालिक खबर को भी अपने पहले सफे पर शाये किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसां सिविल कोड के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तहानात मुनाकिद करने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत उन पर पूरी तरह एतबार कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो वजीर आजम मोदी के बड़े परस्तार हैं। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के इडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म होता है।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में हम लेकर हाजिर होंगे फिल्मी गीतों का कंप्यूटर प्रोग्राम मधुरिमा लेकर।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
6: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
7: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
6: बुकिंग है तो संपर्क करें
8: 0542227658
9: 0542227658 आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

और हम लेकर हाजिर हैं कंपेयर प्रोग्राम मधुरिमा, जिसमें होगा गीत संगीत और होंगी कुछ बातें। और आज ये प्रोग्राम लेकर आपके साथ रेडियो पर है आपकी रेडियो दोस्त अंजू तिवारी। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है सोमवार और सोमवार तो बहुत सारे आते हैं। आज है 25 मई और 25 मई का दिन है कुछ खास, यानी आज है हमारे सिनेमा जगत से जुड़े एक हस्ती की पुण्यतिथि। और आज अपने गीतों के माध्यम से हम उस शख्सियत को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और कुछ ही पलों में आपको पता चल जाएगा कि हम बात कर रहे हैं किस शख्सियत की। पंजाब के झेलम में, पंजाब यानी आज के वक्त में जो पाकिस्तान में है, वहाँ के नक्का खुर्द गांव में मोहयाल ब्राह्मण परिवार में एक बालक की आमद हुई। साल था 1929 और तारीख थी 6 जून। और ये वो दिन था जब उस शख्सियत ने इस दुनिया में कदम रखा। हालांकि बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देखने सुनने को मिला इन्हें, और कहते हैं ना कि किसी की ज़िंदगी में संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता। आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं, उसने पूरी उम्र संघर्ष किया, पहले जीविकोपार्जन में, उसके बाद फिर अपना करियर बनाने में, और उसके बाद एक कलाकार के रूप में, उसके बाद एक पिता के रूप में और एक राजनेता के रूप में, यानी संघर्षों से भरा उनका ये जीवन रहा। और उसके बावजूद उन्होंने इतना नाम कमाया और साथ ही हमें एंटरटेनमेंट का पूरा मौका दिया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। इस शख्सियत का नाम था बलराज, बलराज दत्त।

మధురిమా ద సౌండ్ ఆఫ్ మెలోడీ మధురిమా मीडियम वेव 241.54 मीटर पर अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को।

दोस्तों, महज 5 साल की छोटी सी उम्र में अपने पिता को खो देने वाले बलराज का परिवार मुफलसी में गुजर रहा था और उस वक्त मुल्क के हालात भी कुछ ऐसे थे कि परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। और धीरे धीरे उनकी माँ कुलवंती देवी ने बलराज को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने की कोशिश की और तुरंत ही हिंदुस्तान का बंटवारा होने की नौबत आ गई और बंटवारे के बाद ये परिवार पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया और उसके बाद ये हरियाणा के मंडोली और फिर वहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ लखनऊ की तरफ और लखनऊ के अवध में उन्हें आसरा मिला। पढ़ाई यहाँ भी जारी थी बलराज की, लेकिन चूंकि माली हालत ठीक नहीं थी इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ काम काज किया जाए और जिससे कि परिवार ठीक से चल सके। और ऐसे में दिमाग में आया कि मुंबई चलते हैं और वहाँ कुछ न कुछ काम ज़रूर मिल जाएगा। और वो पहुँच गए मुंबई, जहाँ पढ़ाई के साथ साथ उनका संघर्ष का दौर शुरू हुआ। जिस वक्त बलराज मुंबई पहुँचे वो वक्त था लगभग 1951 का। वहाँ शहरों के भीतर दौड़ने वाली बसों में पहले कंडक्टर के रूप में काम शुरू किया और साथ ही कॉलेज की पढ़ाई भी उनकी जारी रही। इसके बाद लगभग 1954 के आसपास इनके बारे में लोगों को पता चलना शुरू हुआ, क्योंकि नैन नक्श बहुत अच्छे थे, जबान बहुत साफ थी, उर्दू भी अच्छी जानते थे, अच्छी बोलते थे और कुछ थोड़ा बहुत एक्टिंग का कीड़ा भी इनको लगा हुआ था। लिहाजा कॉलेज में भी ये फंक्शंस में रहते थे और थिएटर वालों ने इन्हें अपने साथ जोड़ लिया और इस तरह से उनका एक कह सकते हैं कि नाटकों में शामिल होने का दौर शुरू हुआ।

कहते हैं कि जब वो कॉलेज में प्रोग्राम करते थे, यानी थिएटर करते थे, उसी वक्त एक रोज़ उनका ड्रामा देखने के लिए रेडियो के कोई बड़े अफसर आए, और कहा जाता है कि बलराज की आवाज़ और बोलने का लहजा उन्हें ऐसा जमा कि उन्होंने सीधे पेशकश कर दी कि बरखुरदार, अच्छा बोल लेते हो, ज़बान भी साफ़ है, रेडियो में नौकरी करोगे? और ऐसे में बलराज को तो जैसे मन चाहा मुकाम मिल गया और वो उन्होंने तुरंत हामी भर दी, और ऐसे शुरू हुआ रेडियो सीलोन का सफ़र। मुंबई में फिल्मी सितारों का इंटरव्यू लेना होता था, उसे रेडियो पर लिप्टन के सितारे नाम से खुद पेश करते थे बलराज। इस नाम से, इस कार्यक्रम से उन्हें खासी पहचान दी। बलराज दत्त का ये नाम हर किसी की जुबान पे आ गया और फिल्मी सितारों से उनका एक संपर्क भी बनना शुरू हुआ। फिल्में बनाने वाले एक बड़े शख्स रमेश दत्त के कानों तक उनकी आवाज़ या उनके नाम के बारे में जब बात पहुंची, तो लगभग ये वाक्या 1953-54 का है, जब बलराज शिकस्त फिल्म के सेट पर दिलीप कुमार का इंटरव्यू लेने पहुंचे थे। वहीं रमेश दत्त से मुलाकात हुई। उन्हें बलराज की न सिर्फ आवाज़ बल्कि उनका हुलिया, नैन, नक्श भी ऐसा जमा कि वो उन्हें अगली फिल्म में लेने के लिए तैयार भी हो गए। शौक तो बलराज को भी था अदाकारी का, सो तुरंत राजी हो गए, और इस तरह से रेलवे प्लेटफॉर्म के नाम से 1955 में आई फिल्म से बलराज के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। हालांकि उस वक्त बलराज नाम से, यानी बलराज साहनी के नाम से फिल्मों में एक बड़ी शख्सियत पहले से ही थी, इसलिए इस बलराज को अपना नया नाम लेना पड़ा, नई पहचान लेनी पड़ी।

0: और तब उस वक्त बलराज दत्त से ये नाम बदल कर हो गया सुनील दत्त। सुनील दत्त से जुड़ी कुछ और बातें हम करेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, हम बात कर रहे थे सुनील दत्त की, जिनका पहले नाम हुआ करता था बलराज दत्त। फिल्मी सफर में उनकी शुरुआत सुनील दत्त के नाम से हुई और धीरे धीरे उन्हें और भी फिल्में मिलने लगी। और जब अगर हम बात करें एक ऐसी फिल्म की जिसने सुनील दत्त को वास्तव में एक बड़ा नाम दिया, एक बड़ी पहचान दी, वो फिल्म थी मदर इंडिया। इस फिल्म से जुड़े बहुत सारे वाक्य हैं जिन्होंने सुनील दत्त को खासी चर्चा में ला दिया।

सुनील दत्त की बात करें तो करियर में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया उसके लिए संघर्ष भी था। मदर इंडिया फिल्म के दौरान जब उन्होंने नरगिस के बेटे की भूमिका निभाई थी, उस फिल्म के दौरान एक वाकया ऐसा हुआ था कि नरगिस और सुनील दत्त के बीच में नज़दीकियां बढ़ी और बाद में ये रिश्ता शादी में बदल गया। शूटिंग के दौरान पुआल सेट पर लगा हुआ था और उसमें आग लगाई गई थी और अचानक से उस आग में फंस गई थी नरगिस, जिसकी वजह से उन्होंने चिल्लाना शुरू किया और ऐसे में अपनी जान की परवाह करते ना करते हुए सुनील दत्त ने उन्हें आग से

बचाया, और इस दौरान वो काफ़ी झुलस भी गए थे, उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया था और उनकी देख रेख में नरगिस दत्त ने अहम भूमिका निभाई और इस तरह से दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी और बाद में ये रिश्ता शादी में बदल गया। और कहते हैं कि इस रिश्ते की चर्चा पूरे फिल्मी जगत में हुई क्योंकि बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था और ये बना एक ऐसे फिल्म के सेट पर जहाँ पर दोनों ने माँ और बेटे के तरह से भूमिका निभाई थी। अगर इनकी फिल्मों की बात करें तो 1950 के 60 के बीच की जो फिल्में थीं, साधना, जागूठा इंसान, सुजाता, मुझे जीने दो, खानदान, मेरा साया, पड़ोसन, गुमराह, वक्त, हमराज, ऐसी बहुत सारी फिल्में थीं। उनको कई अवार्ड भी मिले, जिनमें साल 1963 में फिल्मफेयर पुरस्कार, 1964 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, साल 1965 में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, साल 1968 में पद्मश्री पुरस्कार, साल 1995 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1998 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, 1999 में स्क्रीन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2001 में जी सिने फिल्म लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड शामिल था। उन्होंने फिल्मों से राजनीति तक का सफ़र किया, हालांकि बाद में वो वहाँ से निकल गए, लेकिन कहने का मतलब था कि हर क्षेत्र में उन्होंने संघर्ष किया और अपनी जगह बनाई, चाहे वो सिनेमा था, चाहे राजनीति थी, और चाहे एक आम इंसान के तौर पर, एक पिता के तौर पर, उन्होंने हमेशा संघर्ष किया और आखिर में एक खूबसूरत मुकाम को हासिल किया। और अब आज उनको हम नमन करते हैं कि ये शख्सियत हम सबको छोड़कर 25 मई 2005 को इस दुनिया से फानी हो गई, लेकिन उनकी अदाकारी, उनकी बातें, उनकी फिल्में, उनकी फिल्मों के गाने हमारे दिल में आज भी जिंदा हैं और इसी तरह से हम उनके गाने सुनते रहेंगे, उन्हें याद करते रहेंगे।

इस खूबसूरत से गीत के साथ ही अब प्रोग्राम को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए अपनी रेडियो दोस्त अंजू तिवारी को। नमस्कार।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कन्नौज और पीलीभीत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रवि कुमार द्विवेदी का।
2: कन्नौज जिले में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। तापमान 41 डिग्री से 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। भीषण गर्मी से बचाव के लिए शासन ने बजट आवंटित किया है। इस धनराशि से प्रशासन ने जिले के तीनों रोडवेज बस स्टॉप पर दो दो कूलर लगवाए हैं। इसके साथ ही गुड़ और ORS की व्यवस्था भी की गई है। आम जनता की सुविधा के लिए कलेक्ट्रेट में भी प्याऊ की व्यवस्था की गई है। यहाँ भी लोगों को शीतल जल के साथ साथ गुड़, पेठा और गट्टा उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्नोत्री ने बताया कि लोगों को गर्मी और लू से बचाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।
3: जनपद कन्नौज में रोडवेज बस स्टैंड कन्नौज, गुरसाहेगंज और छिबरामऊ तीन जगहों पर हम लोगों ने दो दो बड़े कूलर लगवाए हैं। साथ ही साथ इन जगहों पर गुड़, पानी और ORS के पैकेट भी रखे गए हैं। नगर निकाय की ओर से इसमें कर्मचारी भी लगाए गए हैं। 24 घंटे कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। जो नागरिक आते हैं वो बुला करके और हम लोग देख करके उनको स्वच्छ पेयजल भी देंगे, साथ ही साथ उनको ORS के पैकेट भी रहेंगे। इस समय चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, नागरिक सुरक्षित रहें, वो जागरूक रहें और उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसलिए इस प्रकार की की जा रही है।
2: कन्नौज जिले में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत जनपद के 11 चयनित विद्यार्थियों में निहित वैज्ञानिक सोच और नवाचार की भावना को सराहा जा रहा है। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को मॉडल और प्रोजेक्ट के रूप में साकार कर जनपद का गौरव बढ़ाया है। जिला प्रशासन विद्यार्थियों के अभिनव मॉडल और प्रोजेक्ट को पेटेंट कराने, छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने तथा उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रयास है। कन्नौज जिले में संसाधनों का सम्मान अभियान चल रहा है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी पर अंकुश लगेगा। अभियान के तहत लोगों

0: गई है कि वे सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी पाने पर सूचना कमांड सेंटर 1077 पर दें। दिन में जलती हुई स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक स्थानों पर बहता पानी, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक परिसरों में अनावश्यक रूप से जल रही लाइटें, जागरूक नागरिकों को सम्मानित भी किया जाएगा ताकि समाज में जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना मजबूत हो सके। राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि संसाधनों की बचत केवल प्रशासन की ही नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जन सहभागिता से ही जिले को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सकता है। कन्नौज जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत शिवरामऊ में 100 और उमरदा में 116 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब तकनीक से सशक्त होकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां एवं सहायिकाएं मात्र शिशु पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित सेवाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से जन जन तक पहुंचा सकेंगी। यह पहल सहायिकाओं के उत्साहवर्धन के साथ आंगनवाड़ी सेवाओं के डिजिटलीकरण और सुदृढ़ क्रियान्वयन की दिशा में एक सार्थक सिद्ध होगी। कन्नौज जिले में वेटलैंड के संरक्षण के लिए प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में इस्माइलपुर, रोंसा और निघो खास में एवं असेह में स्थित वेटलैंड को अधिसूचित किए जाने का काम शुरू हो चुका है। आर्द्रभूमि शक्तिशाली कार्बन सिक है जो किसी भी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं, जिससे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में मदद मिलती है। जनपद में 100 वेटलैंड चिन्हित किए गए हैं। इन वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की गई है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने वेटलैंड के संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया है। कन्नौज जिले की 499 ग्राम पंचायतों में 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना लागू होगी। योजना को साकार करने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वर्तमान में करीब 1,00,000 श्रमिक पंजीकृत हैं, जिन्हें नई व्यवस्था के तहत रोजगार और आजीविका से जोड़ा जाएगा। नई योजना के तहत मनरेगा की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस बार स्थायी आजीविका और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर होगा। योजना के तहत श्रमिक परिवार की महिला सदस्य को जॉब कार्ड में शामिल कर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जनपद में 25,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार देने की तैयारी है। मजदूरी का भुगतान सीधे महिलाओं के बैंक खाते में DBT के माध्यम से किया जाएगा, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। पुराने 100 दिनों के प्रावधान के बजाय अब हर ग्रामीण परिवार के सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। पुराने मनरेगा जॉब कार्ड की जगह अब नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बनेंगे। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए चेहरा पहचानने वाली तकनीकी विशेष सुविधा होगी। हर गांव में विकसित ग्राम पंचायत प्लान तैयार होगा। ग्राम सभा की मंजूरी के आधार पर विकसित कार्य होंगे। कन्नौज जिले में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 51 परिवारों को 1,97,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता को शासन ने स्वीकृति दे दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्राप्त बजट के सापेक्ष पात्र दावेदारों को जल्द आर्थिक सहायता मिलेगी।
1: कन्नौज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्रा का।
2: पीलीभीत जिले में इस समय भीषण गर्मी से हर कोई बेहाल है। इसके चलते स्कूल कॉलेजों में अवकाश कर दिया गया है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने गर्मी से बचाव हेतु पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
3: सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ लगवाए हैं और पानी की व्यवस्थाएं की हैं। कितने वाटर कूलर थे नगर पालिकाओं के टाउन एरिया के, वो हम लोगों ने सही कराए हैं और निर्देशित किया सभी ईओ को कि वो एक बार चेक करा लें जो जो वाटर कूलर शहर में लगे हुए हैं उनमें प्रॉपर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और खासतौर से बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर पानी की व्यवस्थाएं कराएं। और ग्राम प्रधानों से भी हम लोगों ने अपील की है कि वो गांव में भी देख लें कि कोई भी जानवर पैसा न रह जाए। इसलिए जो भी तालाब है हमारे और सार्वजनिक स्थान है जो ग्रामीण क्षेत्रों उनकी भी व्यवस्था की गई है।
2: गर्मी का असर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पशु पक्षियों पर भी देखने को मिल रहा है। बाघ, हिरण आदि जीव जंगल से बाहर खेतों व सड़कों पर टहलते नजर आ रहे हैं। टाइगर रिजर्व प्रशासन ने वन्य जीवों की प्यास बुझाने हेतु सभी ताल पोखरों को नहर व नालों के जरिए भरवाने की व्यवस्था की है। प्रभागीय वन अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि जंगल के बीच कई तालाबों को सौर ऊर्जा चालित पंपों से भी भरा जा रहा है। पीलीभीत में एक जनपद एक नदी योजना के तहत गोमती व खन्नौर नदियों का पुनरोद्धार कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, विधायक बाबूराम पासवान, स्वामी प्रवक्तानंद, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर दलजीत कौर सहित कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इसने कार्य में योगदान दे रहे हैं। बाघ और बांसुरी के साथ पीलीभीत की पहचान बासमती उत्पादन के लिए भी है। जिले के

0: सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के प्रयासों से अब बासमती की महक और बढ़ने जा रही है। जिले में बासमती बीज उत्पादन शोध व निर्यात केंद्र की स्थापना करोड़ों की लागत से कराई जा रही है। इस केंद्र को 7 एकड़ जमीन हस्तांतरित कराने के अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा,
1: ये जो बासमती जैविक प्रशिक्षण केंद्र और सह प्रदर्शन का पार्क जो बनेगा, ये इस क्षेत्र के लिए मेरे लिए कहने की मुझे गर्व महसूस होता है कि ये पीलीभीत जनपद बांसुरी के लिए जाना जाता है। ये पीलीभीत जनपद यहाँ के प्राकृतिक धरोहर जंगल है, यहाँ के शेर है, उसके लिए जाना जाता है। मगर आने वाले समय में ये बासमती चावल का जो कटोरा है उसके लिए जाना जाएगा।
0: पीलीभीत जिले में डीजल पेट्रोल और रसोई गैस को लेकर जिला पूर्ति अधिकारी विकास कुमार ने जिले की आपूर्ति व वितरण व्यवस्था को सामान्य व नियंत्रण में बताया है। उन्होंने लोगों से डीजल पेट्रोल व कुकिंग गैस की अनावश्यक खरीद व भंडारण से बचने को कहा है। पीलीभीत जिले में पुरुषोत्तम मास में कथा भागवत भजन कीर्तन यज्ञ व भंडारों जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तकिया दीनारपुर स्थित महाकाली मठ व पीताम्बरा पीठ पर महंत बाबा सूरजगिरी जी द्वारा सचंडी महायज्ञ कराया गया। ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल पर मंदिरों पर सुंदर हनुमान चालीसा व भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं। पीलीभीत में इस समय साठा धान व गन्ने की फसल खेतों में हरियाली बिखेर रही है। गन्ने की उपज का सर्वे गन्ना विकास विभाग द्वारा शुरू करा दिया गया है। जिला गन्ना अधिकारी खुशीराम भार्गव ने बताया,
2: वर्तमान में गन्ना सर्वे का काम चल रहा है। पूरे जनपद में 144 टीमें बनी हुई है और ये 144 टीमें जनपद की चीनी मिले और जो जनपद से बाहर की चीनी मिले हैं उनका गन्ना सर्वे कर रही है। गन्ना सर्वे का काम गन्ना पर्यवेक्षकों द्वारा किया जा रहा है और इसकी मॉनिटरिंग ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक पूरनपुर बीसलपुर बरखेड़ा और मझोला के द्वारा की जा रही है। सभी जो किसानों का सर्वे होना है वो 30 जून तक सर्वे होना है। 1 मई से सर्वे की शुरुआत हुई थी और 30 जून तक गन्ना सर्वे का कार्य पूर्ण किया जाना है।
0: पीलीभीत जिले में जनगणना 2027 के तहत इस समय मकानों की गिनती का कार्य तेजी से चल रहा है। 7 से 21 मई के बीच ऑनलाइन माध्यम से सुगणना की गई और अब गणना कर्मी घर घर जाकर गणना कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कई जगह इसका निरीक्षण भी किया है।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

पीटीवी 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ग्राम मेहरावा थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर निवासी बैजनाथ यादव के पुत्र मोहन यादव दिनांक 1 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र है 65 वर्ष, कद 6 फीट, इकहरा बदन रंग गेहुआ और चेहरा लंबा है। आखिरी बार इन्हें नीले रंग के कुर्ते और लुंगी में देखा गया था। जौनपुर से ही प्राप्त अगली सूचना के अनुसार ग्राम चोचारी थाना मड़ियाहू जनपद जौनपुर निवासी उमेश चंद्र जायसवाल की पुत्री रंजना जायसवाल दिनांक

0: अंक 15 अप्रैल 2026 से लापता है। इनकी उम्र है 20 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, रंग सांवला, इकहरा बदन और चेहरा लंबा है। आखिरी बार इन्हें छीटदार हरे रंग की कुर्ती और नीले रंग की जीन्स में देखा गया था। जौनपुर से ही प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार ग्राम अटहनु लहंगपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर निवासी श्याम सुंदर गौड़ के पुत्र अमन गौड़ दिनांक 23 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र है 19 वर्ष, कद 5 फुट 4 इंच, इकहरा बदन, रंग गेहुआ और चेहरा लंबा है। आखिरी बार इन्हें काले चेकदार शर्ट और पीले रंग के लोअर में देखा गया था। अगली सूचना के अनुसार ग्राम रामनगर भटसरा थाना जफराबाद जनपद जौनपुर निवासी संजय पाल की पत्नी कुसुम पाल अपने पुत्र आकाश के साथ दिनांक 23 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र है 35 वर्ष, कद 4 फुट 11 इंच, रंग गेहुआ, इकहरा बदन और चेहरा लंबा है। आखिरी बार इन्हें हरे रंग की साड़ी में देखा गया था और बेटा सफेद शर्ट और काले पैंट में था। जौनपुर से ही प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार ग्राम 10 गपारा थाना सरपतहा जनपद जौनपुर निवासी कृष्ण कुमार सिंह के पुत्र जयश्री सिंह दिनांक 18 मार्च 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र है 21 वर्ष, कद 4 फुट 8 इंच, इकहरा बदन, रंग गोरा और चेहरा लंबा है। आखिरी बार इन्हें नीले रंग की जीन्स और सफेद शर्ट में देखा गया था। इन सभी के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी मिले तो कृपया निकटतम थाने पर शीघ्र सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। श्रोताओं, आपको बता दें, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित पद्म पुरस्कार 2025 कार्यक्रम का सजीव प्रसारण आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से शाम 5 बजे। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
1: के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
2: तेरे अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे।

का आज का प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपके सामने आपका मेजबान आसिफ इकबाल। आदाब कबूल फरमाएं। एक शहंशाह ने बनवा के हसीं ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है।

शकील ने लखनऊ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। आपको उर्दू, हिंदी और अरबी फारसी का अच्छा इल्म था। दिल्ली में शुरू में सरकारी नौकरी करने के बाद आप मुंबई चले गए, जहां आपकी मुलाकात मौसीकीकार नौशाद से हुई और यहीं से शकील का फिल्मी सफर शुरू हुआ। शकील ने दर्द, बैजू बावरा, मदर इंडिया, गंगा जमुना, मुगले आजम और मेरे महबूब जैसी फिल्मों के लिए तराने लिखे। 20 अप्रैल 1980 को आप इस दुनिया फानी से विदा हो गए।

शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। दिल को कई कहानियां याद आकर रह गईं।

एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। ये अशार हैं उस फिराक गोरखपुरी के जिन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी में तालीम हासिल की।

आप उर्दू में लिखते रहे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर भी रहे। सोचिए ऐसे शख्स की जहानत का आलम क्या होगा। आप आज़ादी की मुहिम से भी जुड़े रहे। फिराक गोरखपुरी की शायरी में गुले नगमा, मशाल, रूह कायनात, नगमा एसाज, गज़लिस्तान, शेरिस्तान, रूप, धरती की करवट, गुलबाग, रम्ज़ व कायनात, चिरागां, हज़ार दास्तान, जुगनू, आधी रात, परछाइयां और तराना इश्क जैसी खूबसूरत नज़में और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी रुबाइयों की तख्लीक फिराक साहब ने ही की है। उन्होंने कई कहानियां भी लिखीं। 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में पैदा हुए रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी के नाम से मशहूर हुए। आपको ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला।

हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले।

0: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नश्र किया जा रहा था।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:50 हुए हैं। हम लेकर हाजिर हैं लोक संगीत का कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए
4: 0542227658।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें
5: 0542227658।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को और हम लेकर हाजिर हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं हीरा लाल यादव और साथी। इनके स्वर में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं देवी गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हीरा लाल यादव और साथियों के स्वर में देवी गीत, और अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं इन्हीं के स्वर में गंगा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थे हीरालाल यादव और साथी। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज चुके हैं और हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद कहीं मत जाइएगा, रेडियो सेट छोड़कर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, आज है 25 मई 2026। विशेष दिन इसलिए है ये क्योंकि आज एक ऐसे शख्स की पुण्यतिथि है जिसके लयबद्ध किए हुए गीत हम दशकों से सुनते आए हैं, और वो गीत आज भी हमारे जुबान पर इस तरह से तैरते हैं जैसे वो कल ही बनाए गए हों। हम बात कर रहे हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत की। आज लक्ष्मीकांत जी की पुण्यतिथि है और उनके लयबद्ध किए हुए यानी उनकी जोड़ी के प्यारे लाल जी के साथ उनकी जो जोड़ी थी, उनकी जोड़ी के लयबद्ध किए हुए कुछ चुनिंदा गीत आज हम झंकार कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। और सबसे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

लक्ष्मीकांत जी, मुंबई के एक बस्ती में इनका जन्म हुआ था। तारीख थी 3 नवंबर और साल था 1937। और बताते हैं कि उस वक्त जिस दिन इनकी पैदाइश हुई थी उस दिन दीपावली का त्यौहार था, और यही वजह थी कि उनके पिता शांताराम पाटिल कुदालकर ने बेटे का नाम लक्ष्मीकांत रखा।

मुकेश और लता मंगेशकर की युगल आवाज़ में ये गीत आपने सुना फिल्म शोर से। इस गीत को लिखा था संतोष आनंद ने। लक्ष्मीकांत जी की बात करें तो उनका जन्म मुफलिसी के दौरान हुआ था। परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी। छोटी ही उम्र में उन्होंने पिता का साया खो दिया, फिर पढ़ाई छूटी और परिवार का खर्च चलाने के लिए मशक्कत करने की नौबत आ गई। और ऐसे में उनके पिता के एक दोस्त ने उनके हाथ में मैंडोलिन पकड़ा दिया। वे खुद भी संगीतकार थे और उन्होंने लक्ष्मीकांत से कहा कि ये मैंडोलिन लो और इसे सीखो, और अगर सीख लिया तो मुंबई में तमाम फिल्मी ऑर्केस्ट्रा हैं, वहाँ रोजी रोटी का बंदोबस्त हो ही जाएगा। फिर क्या था, लक्ष्मीकांत ने वो मैंडोलिन लिया और उसके बाद धीरे धीरे उसको बजाना सीखने लगे। सबसे पहले उन्होंने जाने माने मैंडोलिन वादक हुसैन अली जी से सीखना शुरू किया और फिर बाल मुकुंद इंदुरकर से सीखना शुरू किया, फिर हुस्नराम भगत लाल से वायलिन भी सीखा। और इस सीखे हुए हुनर का फ़ायदा ये हुआ कि बम्बई के कुछ ऑर्केस्ट्रा वालों ने उन्हें अपने साथ काम देना शुरू किया। छोटी सी उम्र के लिए ये सफ़र थोड़ा तो आसान हो ही गया था। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की युगल आवाज़ में। ये गीत है हमजोली फिल्म से और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

ये गीत आप सुन रही थी हम झोली फिल्म से। हम बात कर रहे थे लक्ष्मीकांत जी की, और कहते हैं ना कि हुस्नलाल भगतराम से सीखा हुआ मैंडोलिन और वायलिन वो उनके लिए ऐसा काम कर गया कि उनको जगह जगह काम मिलने लगा। मुंबई के कोलाबा में लता मंगेशकर का एक बार कार्यक्रम था और वो उनके साथ बैठी जो ऑर्केस्ट्रा की टीम थी उसमें लक्ष्मीकांत जी भी शामिल थे। पहले तो किसी का ध्यान ही नहीं गया, लेकिन बाद में कान की पक्की लता ताई ने सबसे पहले गौर फरमाया। कार्यक्रम जब खत्म हुआ तो उन्होंने पूछा कि ये कौन लड़का है, इसका क्या नाम है, फिर उनसे पूछा कहाँ रहते हो, क्या करते हो, बहुत सारी चीज़ें पूछी और इन्होंने अपने बारे में सब कुछ उनको बता दिया। लता मंगेशकर जी के परिवार ऐसे होनहार बच्चों को सुरीला कला केंद्र में संगीत सिखाया करता था, तो लता ताई ने तुरंत लक्ष्मीकांत जी को भी वहीं भेज दिया। वहां लक्ष्मीकांत जी को संगीत के अलहदा गुर और सुर भी सीखने को मिले और साथ ही जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल हाथ लगा, और वो थी प्यारे लाल राम प्रसाद वर्मा की दोस्ती। और ये दोस्ती बाद में एक ऐसी जोड़ी के रूप में बन गई जिनके संगीत की चमक थमक आज भी सिनेमा जगत में छाई हुई है, यानी उनके बनाए गीत आज भी हम गुनगुनाते रहते हैं।

लता मंगेशकर और मुकेश की युगल आवाज़ में आपने सुना फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से ये गीत। इस गीत को लिखा था संतोष आनंद ने। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दो रास्ते से। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने और बोल आनंद बख्शी की।

दोस्तों, लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल की जोड़ी ऐसी बनी कि दोनों मिलकर संगीत सीखने लगे और उसके बाद इन्होंने बहुत मेहनत की और उनकी मेहनत देखकर लता मंगेशकर ने खुद उन्हें उस वक्त के तमाम बड़े संगीतकारों के पास भेजना शुरू किया। फिर चाहे वो मदन मोहन हो, शंकर जयकिशन हो, सचिन देव बर्मन हो या राहुल देव बर्मन या कोई और, लगातार उनके पास भेजने से हुआ यूं कि इन दोनों बच्चों की संगीत की प्रतिभा, संगीत की समझ उन्हें भी नज़र आने लगी और अब धीरे धीरे वे इन दोनों को अपनी ऑर्केस्ट्रा टीम में बजाने का, हुनर दिखाने का मौका देने लगे। और इस तरह करते करते 1960 का बरस बीत चुका था। अब लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल को काम करते करते ऐसा लगने लगा था कि अगर ये अपनी जोड़ी के साथ अपना अलग से संगीत दें किसी फिल्म में तो शायद काम अच्छा हो, और इसी सोच में वो कोशिश भी करने लगे। जल्दी ही सफलता भी मिली, दो फिल्में भी मिली, लेकिन जब तक वे अपना हुनर दिखाते या अपना काम लोगों को बता पाते, ये फिल्में बंद हो गईं। और उसके बाद उन्हें मिली फिल्म पारसमणि।

बाबू भाई मिस्त्री के निर्देशन वाली ये फिल्म पारसमणि 1963 में जब पर्दे पर आई तो किसी को यकीन ही नहीं था कि ये दो नए नवेले संगीतकारों की धुनें ऐसी चल पड़ेंगी। पर इस फिल्म के गीत जब बजे तो उनकी धुनें लोगों के कानों में गूंजने लगी, एक से एक गीत, और ये गीत हंसता हुआ नूरानी चेहरा सब पर अमिट छाप छोड़ गया और इस तरह से लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की जोड़ी भी हिट हो गई। इसके बाद कुछ फिल्में उन्होंने की और उसके बाद वक्त आया एक और हिट फिल्म का और वो थी मिलन। 4 साल बाद 1967 में जब सुनील दत्त के संपर्क में ये आए और आगूर्ति सुब्बाराव की फिल्म मिलन बनने लगी, तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को कॉन्टैक्ट किया गया और तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और सुनील दत्त ने तीनों ने मिलकर मिलन फिल्म में काम किया और वो फिल्म बहुत हिट हुई। अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, पारसमणि का गीत आपने सुना था लता मंगेशकर और कमल बरोट की आवाज़ में और इस गीत को लिखा था असद भोपाली ने, और अगला गीत है फिल्म दाग से। इस गीत में आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज़ को और बोल हैं साहिर लुधियानवी के।

मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में, और बोल हैं आनंद बख्शी की।

0: लक्ष्मीकांत तो प्यारेलाल ने अपनी जब वो संघर्ष कर रहे थे और जब उन्हें पहली फिल्म मिली उसके पहले उन्होंने कल्याण जी आनंद जी के साथ एक असिस्टेंट के रूप में काम किया। धीरे धीरे काम सीखते सीखते लोगों का उन पर विश्वास बनने लगा और जब उन्हें पारसमणि फिल्म मिली तो उन्होंने अपना काम करके फिल्मी जगत में अपना नाम भी कर लिया। कहते इस जोड़ी पर संगीत का ऐसा जुनून था कि बाबू भाई मिस्त्री की जब क्लासिकल फिल्म पारसमणि इनके हाथ लगी तो उन्होंने अपने हुनर का पूरा जादू दिखाया और अपना नाम हिट संगीतकारों की जोड़ी में लिख लिया और उसके बाद तमाम फिल्में इनके हाथ में आई और उन्होंने अपना हुनर उन फिल्मों में दिखाया जिनके गीत आज भी लोग गुनगुनाते हैं। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म एक दूजे के लिए से। इस गीत में आवाज दी है एसपी बाला सुब्रमण्यम और अनुराधा पौडवाल ने।
1: ये क्या

0: एक दूसरे के लिए फिल्म का ये जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, इसे लिखा है असद भोपाली ने। क्षमा कीजिएगा, इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। इस फिल्म के कुछ गीत असद भोपाली ने भी लिखे हैं।
1: जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर बोल इंग्लिश। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: भूल गए
1: जाने मेरा नाम
0: अच्छा
1: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडलबाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: चार का मौसम
0: बेशरम

आए दिन बहार की। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था। और दोस्तों, बात करें अगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, तो इन्होंने इतनी फिल्मों में गीत दिए हैं कि हमें सारे गीत आप तक पहुंचाने में एक अरसा लग जाएगा। हालांकि इनके गीत ऐसे थे जो लोगों की ज़ुबान पर आज भी हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अपनी सफल जोड़ी के साथ ऐसे बहुत सारे गीत इस दुनिया को दिए जो हम आप आजीवन सुनते रहेंगे। और सफलता का ये सफ़र पूरा करते हुए 25 मई यानी आज के दिन 1998 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की ये जोड़ी टूट गई, यानी लक्ष्मीकांत जी इस दुनिया से रुखसत हो गए। और इस तरह से इन्होंने जब तक थी तब तक अपने संगीत से फिल्मी दुनिया के हर सितारे को झूमने को मजबूर कर दिया और हम सबको भी झूमने को मजबूर कर दिया। उनके गाए बहुत सारे गीत हम आपको आगे भी प्रोग्राम में सुनवाते रहेंगे। फिलहाल कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, शागिर्द फिल्म से, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। और आज के हमारे लक्ष्मीकांत जी को दी गई श्रद्धांजलि इस गीत के साथ ही पूर्ण होगी। और अब कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए अपनी रेडियो दोस्त अंजू तिवारी को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडियम वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज़, वेव्स OTT पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। प्रस्तुत है आपके फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। और एक कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त अनुपम। आप सभी को हमारा नमस्कार।

ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। बिल्कुल दोस्तों, हमारे आपके बीच का जो मिलने और मिलाने का सिलसिला है बहुत पुराना है। और आकाशवाणी, जी हाँ, आकाशवाणी के माध्यम से हम सभी मिलते हैं और आकाशवाणी धीरे धीरे अपने 90 वर्षों को पूरी कर रही है इन्हीं मुलाकातों के साथ। और इस गीत को हमने लिया था फिल्म खानदान से, और आवाज़ थी लता मंगेशकर की, नक्सलाल पुरी ने लिखा था, खयाम का संगीत था। सुनने के ख्वाहिशमंद थे आप सभी। बड़ी गवी वाराणसी से अरुण कुमार मालवी, दर्द शशि मालवी, आकाश मालवी, हर्ष अनमोल मालवी, श्लोक यहीं से श्री त्रिभुवननाथ मालवी, मंजू मालवी। शिवाजी चौक कटनी से ये पत्र भेजा था अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संजीव वर्मा, रज्जन रजक, राजू ताम्रकार, दिलीप वर्मा, प्रकाश सोनी, यहीं से मनोज नामदेव, सुनील जैन, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, लालू सोना मोना, हनी एस सौम्या और इनके मम्मी पापा। करौता लोहता वाराणसी से अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिव प्रकाश प्रजापति, मोना प्रजापति, राहुल प्रजापति। मॉडल टाउन पानीपत से ये पत्र हमें भेजा है संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी, पूजा आन्या अनाया, नेहा सागर, गुम्बर, हिमांशु गुगलानी, इम्मू कुरैशी और सुधीर नूतन ने। इन्होंने लिखा अपने पत्र में सेव वाटर सेव लाइफ। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा एक लाइन में इन्होंने लिखा है, लेकिन बहुत बड़ा संदेश है कि सेव वाटर सेव लाइफ। कहते हैं ना, जल है तो कल है, तो पानी को तो बचाना है। और जो मौसम की स्थिति चल रही है, जिस तरह का तापमान है, उसमें तो पूरी तरह से जल ही जीवन है, तो पानी को बचाइए, पानी हमें बचाएगा। और कार्यक्रम में अगला पत्र हमें भेजा है बनारस

पीएमसीटी बनारस यूपी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती सिंह, विनायक सिंह, मोहनी सिंह, मोहित सिंह ने छोटी पीरी वाराणसी से काशी प्रसाद सिंह, मदन कुमारी, राधा रानी वर्मा, पुष्पा ताम्रकार, विजय लक्ष्मी, कुसुमलता सिंह, हर्षित पुलकित और इनकी दादी जी। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कस्मे वादे फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। इस गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीत आरडी बर्मन का। सुनने के लिए हमें खत भेजा है आप सभी श्रोताओं ने। नई सड़क वाराणसी से शाही सद्दू, मलका मुमताज, इंशा इली तारिक, खोदई चौकी देहलू गली से बेबी आलम, नफीस, अनवर भाई जरीवाला, कपड़ा मार्केट से गुड्डू, शमा, रूमा, इशरा, शालू, आमिर और सारिक, खमरिया बिलासपुर से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, प्रतीक कुमार, असालतपुरा मुरादाबाद से फरीद अंसारी, बलाल अंसारी, जुबैर अंसारी, करुला मुरादाबाद से मेराज अंसारी, वसीम अंसारी और डॉक्टर अख्तर हुसैन, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी और अल्ताफ अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से आशमा खातून अंसारी, राज एस टी अंसारी, महताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी और मेराज अंसारी, अस्तुपुरा मौनाथ भंजन से ये पत्र हमें भेजा है मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, अबू बकर अली अंसारी, सादिक, साजिद और सारिक ने, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, इरम परवीन, अजीमाबाद मऊ से आमिर अखलाक, अवनीश कुमार मिश्रा, कुमारी रानी मिश्रा, वलीदपुर मढ़ा से राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, सिराज अहमद फारूकी, नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से आप हैं, अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, नवासी हुमैरा नाज, नवासी सुमैरा नाज, नुजत जहां नाज, शाजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख, चीना शेख, तकिया मढ़ियाँ जौनपुर से जमील अहमद शाह, मोहम्मद अल्तमश शाह, मोहम्मद दानिश शाह, मोहम्मद साजिद शाह, अंसार टोला मढ़ियाँ जौनपुर से निगार बानो, रहनुमा बानो, राहत जहाँ, रोशन जहाँ और साहिस्ता नाज। तो सुनिए अपनी पसंद पर कस्मे वादे फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम में अगला पत्र भेजा है त्रिलोचन घाट वाराणसी से। रीता केसरी, संगीता केसरी, रंगोली केसरी, कशिश केसरी, टिया केसरी और इनके मम्मी पापा। गढ़नोखा लालगंज बिहार से राजकिशोर सिंह चौहान, संदेश कुमार चौहान, अनुराग कुमार चौहान, अनिल कुमार अकेला, बड़क चौहान। कुटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। पतली गली वाराणसी से मुश्ताक सुलेमानी, शाहिद मुश्ताक वाला, साजिद मुश्ताक वाला, नासिर मुश्ताक वाला, जावेद मुश्ताक वाला। अनारबाग बनारस से गुड़िया सुलेमानी, शाहिदा सुलेमानी, रजीना सुलेमानी, आयशा सुलेमानी, साकिब सुलेमानी, जाहिद सुलेमानी, हसीना सुलेमानी। गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। धनबाद से ये पत्र भेजा है प्रभात रंजन प्रसाद, शोभा रंजन प्रसाद, रितेश रंजन प्रसाद, स्वाति रंजन प्रसाद, प्रतिभा रंजन प्रसाद ने। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भातापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा। बीट शहर महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल, सरला प्रकाश। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, शुभम जायसवाल,

शिवम जायसवाल, जमनिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, राजेश जायसवाल, अवधेश जायसवाल, डिंपल जायसवाल, स्टेशन रोड जमनिया से आशुतोष जायसवाल, अभिनव जायसवाल, दिलीप जायसवाल, दुर्गेश जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से बिपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव जायसवाल, आर्य जायसवाल, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, जगवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद बजाज, करनाल से जग्गी दुआ। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में हीरा पन्ना फिल्म का गीत, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत आर डी बर्मन का।

हीरा की तमन्ना है कि इसे पन्ना मिल जाए, पन्ना की तमन्ना कि हीरा मिल जाए, और हमारी तमन्ना है कि आप धूप पे ना निकले और आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम घर में बैठकर सुने। और दोस्तों, जिस तरह से बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, तापमान 45 को लगातार टच कर रहा है, उसके इर्द गिर्द ही रह रहा है, कभी 45, कभी 45 प्लस, कभी 45 के नीचे एक आध दो डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऐसी स्थिति में हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि कम से कम दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक तो कतई घर से ना निकले, बहुत आवश्यक ना हो तो। और जब निकलना ही पड़ेगा, कोई बहुत ऐसी मजबूरी आई नहीं, जाना बहुत आवश्यक है, तो तैयारी के साथ निकले। तैयारी के साथ यानी कि सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने, बहुत चुस्त कपड़े ना पहने, और पानी पी कर निकलें, गमछा या टॉवेल सब ओढ़े रहें, छाता भी ले लें, और हो सके तो धूप का चश्मा भी लगाएं। तो ये सब कहने की बात नहीं है, इसको अपनाना होगा, और जब अपनाएंगे तो हम गर्मी का मुकाबला डट कर करेंगे। और अभी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं होटल फिल्म का गीत, गीतकार इंदिवर, संगीतकार उषा खन्ना, आवाज़ आशा भोसले और मनहर उदास की। सुनने के लिए ख्वाहिशमंद है आप सभी। ग्राम सोंगा मगरलोड जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शायना शर्मा, निवान शर्मा, करणवाला सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, राधा मन्नू प्रकाश, श्री प्रकाश चौहान, वेद प्रकाश चौहान, गाँव भड़बूजी आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवी, भंवर भाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, दुर्गा, मधुबाला, विनोद, विशाल, मिलन और ओम प्रकाश। दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पंचकुला सेक्टर 9 से आशुष चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी तिवान, लव तिवान, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, रुचि, विनीत आहूजा, निमित, विशाल गगनेजा, सुंदरपुर वाराणसी से ये पत्र हमें प्रेषित किया है प्रीति, सौरभ, कुमारी रितु, सान्याल, रिया, मिली, मेघना और लखी ने, मेहरनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवाहड़कर, राही, सरिता गवाहड़कर, सिद्धांत गवाहड़कर, बंटी, विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाहड़कर, वैशाली गवाहड़कर, कुमारी ध्वनि गवाहड़कर परी और प्रिंस एकांश। तो सुनिए अपनी पसंद पर होटल फिल्म का ये गीत।

0: कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक अंतराल का, आप कहीं मत जाइएगा, हम आपसे मिलेंगे इस अंतराल के बाद।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद

अंतराल के बाद आप सभी का फिर स्वागत है कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। कार्यक्रम में अगला पत्र भेजा है मसीता डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग। परमवीर हाउस आदर्श नगर भटिंडा पंजाब से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति प्रवीण और विक्रमजीत ग्रोवर। धरतीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा और अल्पना यादव। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, श्रीमती बबीता कांगड़ा, निखिल कांगड़ा, बबीता बोध, अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, एस आर कांगड़ा। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। रजानगर बजरडीहा वाराणसी से मोहम्मद नफीस अहमद अंसारी, मोहम्मद शमी, मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद अनीस अहमद अंसारी, मोहम्मद अजीज अहमद अंसारी, मोहम्मद रजा अहमद अंसारी, मोहम्मद शकील अहमद अंसारी, मोहम्मद सलाहुद्दीन अहमद अंसारी। सहावर टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, रमन साहू, पवन वर्मा, मुशीर खां, गीता नायक, अलका साहू, अंजलि वर्मा, शाहना शबनम। कनॉट प्लेस नई दिल्ली से डॉक्टर अर्चना और पुरुषोत्तम। चितबड़ागांव बलिया से जीसी गुप्ता, आराधना गुप्ता, नेहा, निधि, आयुषी और अनुष्का। लालगंज रायबरेली से ये पत्र हमें भेजा है के साहू, अमिता साहू, स्वस्तिका, रिशु, इला और वीनस ने। उबरा सोनभद्र से शुभम और आयुषी। आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं गंगा की सौगंध फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है अनजाने संगीत कल्याण जी आनंद जी का। और एक पत्र और भी हमारे हाथ में है, ये पत्र भेजा है पटेल नगर मुगल सराय से सुनील कुमार सिंह, शशि सिंह, आस्था सिंह और आकाश सिंह। दो दोस्तों, आपको गंगा की सौगंध फिल्म का गीत सुनवाने जा रहे हैं और इसका भी तो कुछ तो मतलब है। मतलब ये है कि कुछ लोग गंगा दशहरा आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मनाएंगे। और आज से आपको पता है ना नौतपा भी शुरू हो गया है। मतलब नौतपा बहुत 9 दिनों का होता है जिसमें ताप काफ़ी बढ़ता है, तो हमें बचना होगा इस ताप से, इस ताप लहर से। जाड़ों में शीत लहर बहती है और गर्मियों में ताप लहर बहती है, और हमारा शरीर ऐसा होता है कि हमको दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाना होता है। तो थोड़ा सा हम प्रकृति के साथ चलें, और गंगा दशहरा की बात हो रही है और गंगा का गीत हम न सुने तो फिर ये ठीक नहीं होगा। और निश्चित तौर पर अभी इस समय तो घाटों पर बहुत सन्नाटा सा होगा क्योंकि धूप बहुत तेज है, लेकिन सुबह शाम माँ गंगा के आँचल में तो सभी स्नान कर रहे हैं और वहाँ जाके नहा के और स्पर्श करके, कहते हैं गंगा का दर्शन करने से ही तमाम पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसी माँ गंगा के शहर में हम रहते हैं, हम सभी का बहुत सौभाग्य है कि हम गंगा के किनारे रहने वाले हैं। तो अभी सुनिए गंगा की सौगंध फिल्म का ये गीत।

बठिना से बलकर्ण अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चटोदा सारा गांव से ये पत्र भेजा है सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषीकृत वर्मा, टिकरापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार ध्रुवंशी, श्रीमती सरोज ध्रुवंशी, संजय कुमार ध्रुवंशी, कुमारी किरण लता ध्रुवंशी, नजर बत्ती ध्रुवंशी, मास्टर शानु ध्रुवंशी, दुर्गई सहलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता परभणी से सी आर कुलकर्णी, करवाड़ी प्रतापपुर प्रयागराज से रामप्रकाश गौतम, मंजू गौतम, प्रिया और सौरभ प्रभात, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद, गोला घाट बक्सर से विजय केशरी, गौरी शंकर केशरी, शंभू केशरी।

नया बाजार बक्सर से राजेश केसरी, पंकज केसरी, रोहन केसरी। ग्राम बेलखेड़ा जबलपुर मध्य प्रदेश से गणेश विश्वकर्मा, गुड्डू इंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, सुलेखा, रेखा, संगीता, मोना, सरोज, रिया, अनिल, अमित, प्राची, कार्तिक और समस्त विश्वकर्मा परिवार। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, रिया रीत, स्वीटी सागर, अंशु रितिका रिचि, चित्रंजन उमेश सरोज, रेखा ऋषभ रजावत और उनकी दादी जी। अहमदाबाद से भालचंद भटके, जतीन मेहता, विकास भटके, फुलवा मेहता और नीलेश भटका। आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं गंगा की लहरें फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत चित्रगुप्त का, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। तो बात कर रहे थे हम गंगा की। गंगा की लहरों पर हमारी संस्कृति के अक्षर अंकित है, इसे प्रदूषित न करें। जी हाँ दोस्तों, गंगा को प्रदूषित करने का अर्थ ये होगा कि हम अपनी संस्कृति को प्रदूषित कर रहे हैं। गंगा में स्नान करें लेकिन साबुन तेल ना प्रयोग करें, इससे जो उसमें रहने वाले जीव होते हैं उनको परेशानी होती है। तो हम और बहुत से लोग पूजा पाठ भी करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद जो भी सामग्री पूजा की होती है उसे गंगा में प्रवाहित करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा ना करें। आप यदि पूजा पाठ करते समय जो भी फूल आपके पास बच रहे हैं या अगरबत्ती बच रही है उसको अपने घर में किसी जगह एक मिट्टी का छोटा सा गड्ढा बना के उसमें रख दें, वो जैविक खाद का काम करेगी, न कि गंगा को प्रदूषित करें। तो बार बार हम ये कह रहे हैं गंगा हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम बनारस में रहते हैं और बनारस में माँ गंगा का आशीर्वाद हमको मिलता है। तो यदि हम सब माँ गंगा का ख्याल करेंगे तो गंगा माँ भी हम लोगों का ख्याल करेंगी, है ना दोस्तों। और जब ख्याल करेंगी तो गंगा की लहरों के साथ हम भी इसी तरह से मचल पड़ेंगे।

अब आइए सुनते हैं गंगा तेरा पानी अमृत, इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। सुनने के लिए पत्र भेजा है आप सभी श्रोताओं ने। कच्ची सराय दालमंडी वाराणसी से मोहम्मद नसी, मोहम्मद सैफी, मोहम्मद हसन, तबस्सुम बानो, नाजिया रहनुमा, चौराहट नई बस्ती पड़ाव से रोशन अली, से राज आलम, मोहम्मद समद, रोजी अलीसा, पटेल नगर मलोड पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन्निशा, शकील अहमद, डॉक्टर शाहबाज खान, डॉक्टर सलीम अहमद ने ये पत्र हमें भेजा है। संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लविश रास्तो, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, अनिल कुमार, अंशुलता, आदित्य कुमार और कृष रास्तो, सुंदरखेड़ा राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार और नई दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, पिंटू दीवाना, सुरेंद्र कुमार सुमन, जगमोहन सहनी। तो आज की तारीख में हम ये तो संकल्प लें कि हम गंगा को प्रदूषित नहीं करेंगे और गंगा की आंचल में हम पलते रहेंगे, बलते और आगे बढ़ते रहेंगे और हम निश्चित तौर पर गंगा की जो लहरें हैं हमें सुकून और शांति भी देती हैं और जो ताप लहर बह रही है उसमें भी गंगा की लहरें हमें कहीं ना कहीं से ठंडक प्रदान करती हैं। तो आइए सुनते हैं गंगा तेरा पानी अमृत फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनना चाहा है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डगला, हैप्पी डगला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डगला परिवार। राजा बाजार बिहिया से सुरेश केशरी, पूनम केशरी, प्रतीक केशरी, थाना रोड बक्सर से उमानंद केशरी, धनानंद केशरी, विनोद केशरी, नई सड़क वाराणसी से शाहिद सद्दू, मलका मुमताज, इंशा इली तारिक, कपड़ा मार्केट से गुड्डू शमारुमा अशरा, शालू आमिर सारिक, कुदई चौकी देहलुगली से बेबी आलम नफीस, अनवर भाई जरीवाला, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, मन्नू सुभाष, योगी सुशील, योगी बब्बू डब्बू, गांव फरांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये और पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह। आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं अख्तर रोमानी का लिखा हुआ गीत, संगीत कल्याण जी, आनंद जी का आवाज़, मोहम्मद रफ़ी की, फिल्म का नाम हसीना मान जाएगी। और इस गीत को सुनवाने के पहले आपको बताना चाहेंगे श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारा पता नोट कीजिए, pkldaarvaranasi@gmail.com। पता एक बार पुनः सुन लीजिए, pkldaarvaranasi@gmail.com। हमें रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार और कार्यक्रम के अंत में सुनिए हसीना मान जाएगी फिल्म का ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, साथ मिलकर चले थे और साथ मिलकर चलेंगे, ये अपना वादा है। और इसी ख्वाहिश के साथ की होगी फिर मुलाकात। आपके पत्र, आपके गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपने रेडियो दोस्त अनुपम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। अब आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
1: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
1: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
2: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं।

0: साथियों, अधिकांश वर्षावन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
0: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहाँ से कहाँ तक बनाया जाए।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
1: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
0: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।

0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
1: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
2: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
1: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर,
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको,
5: फेंको जनाब।
6: अरे अरे, ये क्या हुआ,
5: ये क्या हुआ? अरे बचो बचो बचो,
6: फट जाएगा, फट
5: जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट जाएगा, फट
6: जाएगा, फट जाएगा।
2: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
7: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
5: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
8: सही में
5: बहादुर सैनिक हो तुम।
2: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय

0: कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
1: May I come in, sir?
2: Yes, come in.
1: Sir.
2: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
1: सर।
2: Well done, Eddie. तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
1: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, कहो।
1: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
2: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
2: गो अहेड यंग मैन।
1: सर।
0: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
3: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
0: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
3: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
4: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
5: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
4: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
6: जी जनाब।
7: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
1: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
5: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर, वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
1: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
5: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
1: फायर।
5: सर, ये टैंक तो गया।
1: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
5: सर, ये टैंक तो गया।
1: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।

0: 一失。
1: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
2: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।
2: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
2: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निगल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
2: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए, किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोरजी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
3: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोरजी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें
3: 0542227658,
4: 0542227658।
5: अब आइए सुनते हैं सुगम संगीत और आज के कलाकार हैं मनोहर सिंह। इनके सर में पहले सुनिए तुलसीदास की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे मनोहर सिंह। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पशुपतिनाथ मिश्र का गाया राग मुल्तानी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे पशुपतिनाथ मिश्र का गाया राग मुल्तानी। मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन का 1 बजने को है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों

0: पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.56 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए कुछ खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ललिता पुत्री शिवपाल बिंद निवासिनी ग्राम महेशपुर थाना ड्रमंडगंज जनपद मिर्जापुर कहीं लापता हैं। ललिता के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 21 वर्ष, लंबाई 5 फीट 6 इंच, रंग गोरा, इकहरा बदन, चेहरा गोल है। ये जब लापता हुई थी उस समय मैरून लाल रंग की सलवार समीज और काले रंग की सैंडल पहने हुए थी। ललिता के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। यहीं से एक और भी सूचना प्राप्त हुई है। आकाश कुमार, पिता का नाम सूर्यबली, ये ग्राम पतलुकिया थाना चुनार जनपद मिर्जापुर के रहने वाले हैं। आकाश कुमार की उम्र है 18 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, इकहरा मजबूत शरीर है, चेहरा लंबा है। ये जब लापता हुए थे उसमें काले रंग की टी शर्ट और नीले रंग का जींस पहने हुए थे। आकाश कुमार के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो अपने समीप के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। एक और भी सूचना यहीं से आई है। रूपा पत्नी दिनेश कुमार गुप्ता, ये ग्राम रामपुर थाना जिगना जनपद मिर्जापुर के रहने वाली हैं, कहीं लापता हो गई हैं। रूपा के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 32 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, रंग सांवला है, इकहरा बदन, चेहरा गोल है। ये जब लापता हुई थी उस समय साड़ी पहने हुए थी। रूपा के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। आप सुन रहे थे खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। अब कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत सुने शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के गरिमामयी उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित पद्म पुरस्कार 2025 कार्यक्रम का सजीव प्रसारण आप सुनेंगे शाम 5 बजे से, जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे पशुपालन हेतु सरकारी सुविधाएं विषय पर डॉक्टर संतोष कुमार गिरी से सतीश कुमार यादव की बातचीत। इसी कार्यक्रम में हीरालाल यादव और साथी का लोकगीत भी होगा। इनका गाया लोकगीत आप दिन में 1:45 पर भी सुन सकते हैं। दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। इसमें चर्चा गीत संगीत के अलावा तनाव प्रबंधन है जरूरी विषय पर डॉक्टर ईरा त्रिपाठी से सुरेखा सिंह की बातचीत होगी। रात्रि 10 बजे आपसे मिले कार्यक्रम में कमांडेंट CRPF 95 बटालियन राजेश्वर बलापुरकर से आशुतोष की बातचीत होगी। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम अंजुमन आप सुनेंगे रात 9:30 पर। रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे पंडित सीताराम सिंह। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 7:31 पर रसरंग में। रात 8:15 पर रस माधुरी में। दिन में 2:30 पर व्हाट्सएप संदेश पर आधारित भोजपुरी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों

0: साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए रियासत के अमन व अमान और इंतज़ामी कामों का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने हर तरक्याती ब्लॉक की सतह पर हफ्ता वाराना चौपाल मुनक़िद करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि इन चौपालों में रेवेन्यू के तनाज़ात, घरेलू तशद्दुद, गैर कानूनी वसूली और मकामी सतह की शिकायात का मौके पर ही हल यकीनी बनाया जाए। IGRS और CM हेल्पलाइन के ज़रिए मौसूल होने वाली शिकायात के मेयारी और तसल्ली बख्श निपटाने पर जोर देते हुए जनाब योगी ने कहा कि शिकायात में किसी भी सतह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि गंगा दशहरा और बकरीद के सिलसिले में मज़ीद चौकस रहें। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल एक आला सतही जायज़ा मीटिंग में रियासत के पुलिस निज़ाम को मज़ीद महफूज, जदीद और तकनीकी बनाने के लिए पुलिस रेडियो यूनिट को मजबूत करने की हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस के मकाम नकलो हरकत और मवासलाती सरगर्मियों की राजदारी अव्वलीन तरजीह है। इसके अलावा कल शाम महकमा आयुष की एक जायज़ा मीटिंग में वज़ीर आला ने आयुष, सेहत और फलाह बहबूद की पॉलिसी 2026 को मुअस्सर तरीके से नाफिज करने की हिदायत दी। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने कल लखनऊ में वाक़ पार्टी सदर दफ्तर पर सभी सीनियर अहदेदारों, कोऑर्डिनेटर्स और ज़िला सदूर के साथ 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को लेकर मीटिंग की। इस दौरान BSP सरबराह ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि रियासत में एक बार फिर BSP की हुकूमत बनाने के लिए कारकुन अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क में नए नए चैलेंजेस के दरमियान जिस तरह इंतखाबात हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी को तैयारियों की हर सतह पर और भी चुस्त, दुरुस्त और मुस्तैद बनाने की ज़रूरत है। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में आज से गंगा दशहरा त्यौहार का इनेकाद हो रहा है। इसे देखते हुए पुलिस इंतजामिया ने कल डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला इलाके में सख्त चेकिंग की। वहीं अमरोहा में भी कौमी शाहराह पर कल से ही रूट डायवर्जन नाफिज कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर PSC, फ्लड PSC, फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेडिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की CCTV कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
0: पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए का इजाफा किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में यह गुज़िश्ता 2 हफ्ते में चौथा इजाफा है। अब लखनऊ में पेट्रोल 101.89 रुपए और डीजल 95.36 रुपए फी लीटर मिलेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 28 मई को मुजव्वजा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2026 मुलतवी कर दिया है। NTA के मुताबिक बकरीद की छुट्टी की तारीख में तब्दीली को देखते हुए ये फैसला किया गया है। 5 रोज़ा सालाना हज मगरबी एशिया में तनाव के दरमियान आज से शुरू हो रहा है। भारत समेत पूरी दुनिया से 1,60,000 से ज़्यादा आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा से हज का सफ़र शुरू करेंगे और मीना में क़याम करेंगे। मीना में रात गुजारने के बाद आज़मीन हज कल अलसुबह अराफात के लिए रवाना हो जाएंगे। इस साल हज में भारत से तकरीबन 1,75,000 हाजी शिरकत कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने रियासत में शदीद गर्मी और लू का असर जारी।

0: रहने का इंतबाह जारी किया है। लखनऊ के मौसम साइंस मरकज के सीनियर साइंसदान मोहम्मद दानिश ने बताया कि रियासत में गर्मी का कहर बढ़ने का इम्कान है।
1: जैसा कि पिछले दिनों में गर्मी का असर है, उसी तरीके से आने वाले दिनों में भी गर्मी का असर बनेगा। उसके बाद जैसा कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 28 तारीख से थोड़ा सा जो तराई बेल्ट है सेंट्रल पार्ट में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है, तो कहीं ना कहीं अगले 4-5 दिनों के बाद तापमान में धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना है।
0: महकमा मौसमियात ने मशरकी उत्तर प्रदेश में दिन के वक्त कुछ मकामात पर कल तक के लिए ज़बरदस्त लू का रेड अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
2: मीडियम वेव 241.5 आर्बिटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। प्रस्तुत बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, उसके पहले ये संदेश।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए
8: 0542227658।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें
9: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम
10: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: सखियों के साथ
1: सखियों की बात
2: सखियों के जज्बात
3: गृह लक्ष्मी।
4: स्वागत है आप सभी का सखियों आपके अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। मैं हूं आपकी सखी कंचन।
5: और मैं हूं सिम्मी। नमस्कार
4: सखियों। हमने हमेशा ये आशीष देते सुना है कि गंगा जमुना में जब तक पानी रहे बबुआ तोहरो तब तक जिंदगानी रहे।
5: यानी कि गंगा जमुना की अमृत धारा जब तक धरती पर बहती रहे तब तक हम सभी के जीवन में सुख रहे समृद्धि रहे। सखियों आज है मोक्षदायिनी माँ गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण का महापर्व यानी गंगा दशहरा। हर वर्ष ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि पर गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है।
4: भाई आज के दिन लोग गंगा में स्नान दान करके और दीप दान करके स्वयं को धन्य मानते हैं। भाई आज ही के दिन राजा भगीरथ जी ने कठोर तप किया था माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए और आज के दिन ही वो आई थी, है ना?
5: हाँ, और तभी तो आज के दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना करने से कहते हैं कि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए लोग आज के दिन वस्त्र फल फूल अनाज पंखे का दान करके जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं।
4: भाई हमारी भारतीय संस्कृति में हर चीज का महत्व है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, हमारी माँ गंगा यानी नदियों का भी महत्व है और इसे हम अपनी संस्कृति से शायद इसलिए भी पहले से जोड़ते आए हैं ताकि हम इसका अच्छे से संरक्षण कर सकें। और गंगा की साफ सफाई भी तो विशेष महत्व रखती है ना,
5: क्योंकि गंगा जब साफ रहेगी स्वच्छ रहेगी तभी तो हम उसमें नहा धो सकेंगे अच्छे से स्नान कर सकेंगे और माँ गंगा तो जीवनदायिनी है। इसीलिए गंगा दशहरा का जो पर्व है ना वो धार्मिक आस्था के साथ साथ स्वच्छता और पवित्रता की बात भी सिखाता है कि जिससे हम अपने आसपास नदियों को

0: साफ रख सके, शुद्ध रख सके।
1: आज के दिन घाटों पर विशेष चहल पहल देखने को मिलती है। सुबह के समय में तो बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं गंगा स्नान के लिए।
0: हाँ,
1: भीड़ भी होती है। और सिमी, शाम के समय जब गंगा आरती होती है उस समय भी बहुत भीड़ रहती है।
0: हाँ,
1: लोग गंगा आरती
0: तो
1: देखते हैं।
0: मनोरम होता है, देखते
1: हाँ,
0: ही बनता है।
1: और आज के दिन एक विशेष तैयारी भी होती है। अच्छे से जिन घाटों पर आरती होती है वहाँ साज सज्जा की जाती है, और जो एक कहा जा सकता है कि एक ड्रेस कोड होता है उनकी, जो आरती करते हैं वो भी, और उनकी सहायिका
0: हाँ,
1: जो
0: ताकि
1: होती है।
0: गंगा आरती और भी ज्यादा भव्य हो सके रोज के दिनों से।
1: तो भाई जब हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, गंगा की साफ सफाई कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जब जैसे मोक्षदायिनी गंगा अपने अविरल भाव से बह रही हैं, वैसे ही हम सभी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, और तभी तो हम ये आशीष दे पाएंगे ना कि जब तक गंगा जमुना में पानी रहे, बबनी तोहरो तब तक जिंदगानी रहे।
0: तो गंगा की अमृत धारा अविरल बहती रहे और हम भी इसके साथ साथ हमेशा चलते रहें, कुछ इस गीत की तरह।

0: अकेले कहाँ हैं हम भाई,
1: हम्म,
0: प्रकृति हमारे साथ ही तो है, लेकिन तभी जब हम इसका संरक्षण और संवर्धन कर पाए।
1: और तभी गंगा और पर्यावरण दोनों स्वच्छ रहेगा, शुद्ध रहेगा।
0: भाई आजकल का जो दौर है सिमी, वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी का दौर है।
1: बिल्कुल।
0: हम सब कुछ बिल्कुल स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं, चाहे हमारी वो किचन की बात हो, हमारे घर की बात हो, होम डेकोर या होम मेकओवर की बात हो, सब कुछ हम स्मार्ट तरीके से कर रहे
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: तभी तो आजकल हमारे रिश्ते भी ना कुछ ऑनलाइन हो गए हैं है ना। देखो, पर्व त्योहार हो या छुट्टियां हो, तब तो रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो भी जाता है, वरना किसी के पास फुर्सत के दो पल नहीं है कि आमने सामने बैठकर हालचाल पूछ ले या बातचीत कर ले। लेकिन मोबाइल पर, सोशल साइट्स पर, ऑनलाइन रहते हुए लाइक्स करने, रील्स देखने के लिए ना हमारे पास समय की बिल्कुल भी कमी नहीं है।
0: भाई ये तो तुमने बहुत ही सही बात कही है, आजकल के ज़माने पे बिल्कुल फिट बैठ रही है। मैंने देखा है कि घर पे परिवार में कई सारे लोग हैं,
1: हाँ,
0: लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कोई बात कहनी है तो हमने उनको मैसेज कर दिया, फ़ोन पर हमने उन्हें मैसेज कर दिया। भाई वो बात तो हम उन्हें सामने से भी जाके कह सकते हैं।
1: बिल्कुल। क्योंकि अब घर में अगर पता है इकट्ठे सभी लोग बैठे भी हैं ना, तो आपस में बातचीत नहीं करेंगे, अपने अपने मोबाइल पर, अपनी अपनी डिजिटल दुनिया में ना व्यस्त हो जाएंगे, अपना अपना फोन लेके। और इस वजह से क्या है, आज हमारे पास ऑनलाइन फ्रेंड्स तो बहुत हैं, पर जरूरत के समय काम आने वाले दोस्त, सुख दुख बांटने वाले लोग ना ना के बराबर हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारी कनेक्टिविटी तो बहुत बढ़ गई है, पर असल जिंदगी में देखा जाए ना, तो जो भावनात्मक जुड़ाव था, अपनापन था, आपसी विश्वास था, वो बहुत कम हो गया है।
0: और इसका जो प्रभाव है वो हमारे घर में हमारे बच्चों पर भी तो पड़ रहा है।
1: हाँ,
0: भाई जब हम पूरी तरह से फोन पर निर्भर हो गए हैं और अपना थोड़ा सा भी खाली समय है तो फोन को ही दे रहे हैं, बच्चों को कहाँ दे रहे हैं।
1: बच्चों को
0: तो
1: कहाँ।
0: जब बच्चों को हम समय नहीं देंगे तो बच्चे भी तो अपना समय फोन पे गेम्स खेल के बाकी चीजें देख के
1: और
0: बिताना
1: पता है
0: चाहेंगे।
1: इसका नतीजा क्या निकल रहा है, जो हमारे आपसे संबंध थे ना, वो कमजोर होते जा रहे। पहले क्या होता था कि शाम के समय या छुट्टी वाले दिन हम साथ में बैठते थे, बातचीत करते थे, कोई परेशानी होती थी तो उसको सुलझाते थे, बच्चों के साथ खेलते भी थे, दिन भर की गतिविधियां भी साझा करते थे, जिससे आपसी संबंधों में सम्मान भी बना रहता था। पर आज इस डिजिटल दुनिया की वजह से, कह लीजिए, या हमारे ऑनलाइन रहने की वजह से, हमारे रिश्ते धीरे धीरे ऑफलाइन से होते जा रहे हैं।
0: तो असल जिंदगी में अपने रिश्तों को संभालना बहुत जरूरी है, उन्हें समय देना उतना ही जरूरी है। भाई जो ऑनलाइन रिश्ते हैं उसमें कई लोग तो अपने पहचान छिपाते भी हैं
1: हाँ,
0: और दिखाते हैं कि वो भावनात्मक रूप से आपसे जुड़े हैं।
1: लेकिन वो एक तरह से ना आभासी दुनिया जिसे
0: हाँ,
1: कहते हैं ना, बिल्कुल वही है।
0: और उसमें कई बार आपको धोखेबाजी भी मिलती है और साइबर ठगी भी बहुत तेजी से प्रचलन में आ रही है। तो ऐसे में पूरी सावधानी के साथ अपनी चीजों को ऑनलाइन करें आप, और पूरी सावधानी अपनी जिंदगी में असल रिश्तों को निभाने में भी रखें।
1: अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ताकि जीवन में हमारे रिश्तों में संतुलन बना रहे और आपसी प्यार बना रहे। और सखियो, मोबाइल की तरह अपने रिश्तों को भी ऑनलाइन रखें, ताकि जीवन में आने वाले धूप छांव में हमारे साथ हमेशा वो निभाते रहें। वरना क्या होगा ना, कि लाइफ में स्ट्रेस कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लगता है। ऐसे में तनाव मुक्त होने के लिए तनाव प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है।
0: तो चलिए सखियों को सुनवाते हैं एक बातचीत।

0: विषय है तनाव प्रबंधन है जरूरी। डॉक्टर इरा त्रिपाठी से सुरेखा सिंह ने बात की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, मनुष्य का जीवन बहुत सारे उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जीवन है और जीवन में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। पर जब किसी कार्य की सफलता हमें मिलती है तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और जब असफलता हाथ लगती है तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव ले लेते हैं। यहाँ तक डिप्रेस हो जाते हैं कि कई बार बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो समझ में नहीं आता कि ये तनाव क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इन्हीं सब विषय पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर इरा त्रिपाठी को। डॉक्टर साहब, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में मनोसामाजिक परामर्शदाता कबीर चौरा मंडलीय हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे यहाँ मौका दिया तनाव पे बात करने का।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा ये जो जीवन है बहुत सारे उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, लेकिन क्या करें, ये तनाव और समस्या, या ये कह लें कि ये जो चिंता है ना, वो कभी खत्म ही नहीं होती। कभी एक चिंता समाप्त होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है, यानी पूरा समय हम किसी न किसी चिंता में ग्रस्त रहते हैं और वो कहीं ना कहीं तनाव का कारण बन जाती है। तो आप ये बताएं कि ये तनाव आखिर है क्या?
2: ये जान लीजिए कि तनाव जो है हमारे दैनिक दिनचर्या का एक प्रक्रिया ही है, उसको हमको कैसे हैंडल करना है ये कोपिंग हम लोगों को आनी चाहिए। तो तनाव एक प्रकार का समझिए मनोवैज्ञानिक और शारीरिक जो है आपकी प्रक्रिया है, जो आपको डे टू डे लाइफ में घटनाएं होती हैं, चुनौतियां होती हैं और जो योजनाएं होती हैं उसको शो करने का आपका शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है।
1: और ये होता क्यों है?
2: जब आपको ऐसे चुनौती मिली आपको जीवन में, जिंदगी में कोई घटनाएं हुई, अच्छी हुई बुरी हुई, या चुनौती हुई अच्छी या बुरी हुई, या कोई योजनाएं हैं, जब आप किसी उसके प्रति उसको करने आते हैं तो आपके शरीर की कुछ रिस्पॉन्सेज होते हैं, आपके मन के कुछ रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो तनाव हमें आगे बढ़ने के लिए भी आवश्यक होते हैं, इसलिए शरीर हमारी प्रक्रिया प्रदर्शित करती है।
1: अच्छा, तो अब ये तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जो है अलग अलग अवस्था से गुजरता है, यानी उसके अलग अलग उम्र होते हैं, कभी वो बच्चा होता है, फिर किशोर होता है, युवा होता है, वृद्ध होता है। तो क्या इन सभी उम्र में तनाव अलग अलग प्रकार के होते हैं, या जो वो तनाव लेता है क्या उसके रिस्पॉन्स शरीर को अलग अलग मिलते हैं?
2: बहुत सही क्वेश्चन किया है मैम आपने, क्योंकि तनाव वाकई आप अगर हम लोग जो हम इतने बड़े हो गए हैं, पुराने हमारी जो परिस्थितियां थी उसमें तनाव हम लोग महसूस तो करते थे लेकिन कभी इतना बड़ा उसका महत्व नहीं समझ में आया या इतना बड़ा उसका दर्द समझ में नहीं आया। आप ये देखिए कि एक छोटा बच्चा होता है तो जन्म लेने के बाद वो आपने जब उसको कभी क्राउलिंग करते देखा है, लुढ़कते हुए देखा है, कभी चलते हुए देखा है, तो आपने कभी उसके चेहरे के उसके फेस को महसूस किया है? वो जब नहीं चल पाता है या सीधे होके टेढ़ा होना चाहता है, उसमें नहीं सक्सेसफुल होता है, तो उसमें भी एक तनाव का वो देखा गया है। लेकिन वो उसके अगर मोटा मोटी मानिए तो एक तरीके का यू स्ट्रेस है, या बोलिए सकारात्मक स्ट्रेस है, कि वो फिर से प्रयास करता रहता है और अल्टीमेटली वो उस गोल को या उस व्यवहार को अचीव कर लेता है। इसी प्रकार हमारे जन्म की अवस्थाएं, जन्म से हमारी किशोरावस्थाएं, वयस्क अवस्थाएं, मध्यवायु, ये सारे जीवन में जो हमारी चीजें आती हैं मनोसामाजिक, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी घटनाएं और चुनौतियां होती हैं उनके अनुसार उनके उम्र के हिसाब से भी उनको तनाव जो है झेलना होता है या उससे उभरने की प्रक्रिया करनी होती है।
1: अच्छा, एक विशेष बात आपसे जानना चाहूंगी कि महिला और पुरुष के शारीरिक स्ट्रक्चर में तो बहुत अंतर होता है, ये हम सभी ऐसे देख पाते हैं, और ये पता भी है कि बहुत सारे स्टेजेस महिलाओं के जीवन में ऐसे आते हैं जब उनका शारीरिक बदलाव तो होता ही है, उसके साथ ही साथ मानसिक बदलाव भी होता है। तो क्या पुरुष में होने वाले जो तनाव होते हैं वो और महिला में होने वाले जो तनाव होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं?
2: मोटा मोटी मानेंगे तो बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि दोनों के हार्मोन में भी थोड़े चेंजेस होते हैं। हालांकि कॉर्टिसोल जो तनाव का मुख्य हार्मोन है वो दोनों में बराबर पाया जाता है, दोनों ही उसमें होता है शरीर में। लेकिन जैसे बच्चे, पुरुष बच्चे हुए तो वो किशोरावस्था में जब प्यूबर्टी से आगे बढ़े तो उनमें टेस्टोस्टेरोन होता है, ये सारे हार्मोन होते हैं, जबकि स्त्रियों में आपका

0: एस्ट्रोजन और आपका प्रोजेस्ट्रॉन वगैरह होता है, तो ये रोल प्ले करते हैं कि किस तरीके से वो शरीर के विभिन्न शरीर के कॉर्टिसोल्स को मैनेज करें जिससे उनको तनाव का कम से कम जो है आघात हो।
1: यानी कहने का मतलब ये है कि तनाव को क्रिएट करने का जो हार्मोन होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है,
0: सेम होता है वो
1: लेकिन
0: एंड्रोनिल, नॉन एंड्रोनिल और कॉर्टिसोल, या आपके सब दोनों

0: एंड्रोनिल और कॉर्टिसोल या आपके सब दोनों के शरीर में एक जैसा ही होता है।
1: अच्छा, एक और सवाल है, वो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो बाहर काम करती हैं, घर तो सभी बहनों को काम करना पड़ता है, लेकिन बहुत सी बहनें हैं जो बाहर काम करती हैं, हाउसवाइफ भी हैं और वर्किंग वुमेन भी हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या जो तनाव है वो दोनों समय में अलग अलग होता है?
0: नहीं मैम, तनाव का तो जो हार्मोन है वो आप कॉर्टिसोल ही मानो, लेकिन वो जो उबरने का है स्थिति उनका, वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके की उनके उबरने की प्रक्रिया या फिर बोलिए कि स्किल होती है। तो हार्मोन तो सेम है, लेकिन हम उस हार्मोन को कैसे एडजस्ट कर पा रहे हैं अपनी परिस्थिति के हिसाब से, अपनी चुनौतियों के हिसाब से, अपनी योजनाओं के हिसाब से, ये डिफर कर, ये अंतर लगता है।
1: और मैंने कहीं पढ़ा था कि ये स्ट्रेस के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं।
0: जी आपने सही सुना है मैडम, हम लोग हमेशा तनाव की बात करते हैं तो हम लोग एकदम से घबरा जाते हैं, हमारी शारीरिक संरचनाएं बदल जाती हैं, हमारे अंदर बहुत सारे विकार आने लगते हैं। लेकिन आप ये मानिए कि जो हमारा तनाव है वो कई प्रकार के विभिन्नताएं लिए हुए है, जिसमें हम लोग मेन जो मुख्य तनाव मानते हैं वो दो तरह के मानते हैं, एक तो सकारात्मक तनाव जिसको हम लोग यू स्ट्रेस कहते हैं, और एक है नकारात्मक तनाव जिसको हम लोग डिस्ट्रेस कहते हैं। अब मैडम ये भी मान लीजिए कि अगर यू स्ट्रेस नहीं होगा तो आप जीवन में आने वाली योजनाओं को अंजाम नहीं दे पाएंगे, आगे आने वाली चीजों को ध्येय जो पूरा करना है उसको नहीं कर पाएंगे,
1: चुनौतियों का सामना जिसे कहते हैं।
0: जी, क्योंकि फिर आप उसके लिए मोटिवेट होते हो। यू स्ट्रेस में एक्चुअली होता क्या है कि वो एक तरीके से ऐच्छिक तनाव होता है, जिसमें आप किसी कंपटीशन में भाग लेना मान सकते हैं, शादी विवाह मान सकते हैं। आप यू स्ट्रेस को ये मानिए कि आप कोई किसी परीक्षा की तैयारी में हैं और उसमें जाना चाहते, जैसे आप IAS बनना चाहते हैं या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए लिया गया जो तनाव है वो आपका यू स्ट्रेस में आता है, क्योंकि आपका ऐच्छिक है और उसको एक आपको पॉजिटिव परिणाम देगा।
1: लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो स्ट्रेस है कि आपको कुछ ना कुछ करना है, और बहुत महिलाएं या बच्चे जो हैं बहुत प्रयास भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती है, तो ऐसे समय में उन्हें क्या करना चाहिए?
0: नहीं, सफलताएं और असफलताएं दोनों ही निर्धारित हैं। हम किसी भी चीज में जब आगे बढ़ते हैं तो हम बिल्कुल एश्योर नहीं होते, हम अपना कर्म करते हैं और बेस्ट से बेस्ट कर्म करते हैं कि हम जो है पॉजिटिवली परिणाम पाएं, लेकिन कभी कभी हम उसमें असफल भी होते हैं। तो हम लोग ये भी, आप भी जानती होंगी कि जब हम लोग कभी कभी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि जो सफलता का वो है जो कर्म है वो थोड़ा कहीं छोटा मोटा रह गया होगा, जिसकी वजह से नहीं प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर जो डिस्ट्रेस चल रहा है हम लोगों के जीवन में दैनिक दिनचर्या में, उसमें अगर हम कुछ प्रबंधन कर लें तो हम तनाव को अच्छे से अच्छा मैनेज कर पाएंगे, प्रबंध कर पाएंगे और अपने अकॉर्डिंग अपने जीवन के मनोसामाजिक और व्यक्तिगत जो है परिणाम प्राप्त कर पाएंगे।
1: अच्छा, ये बताएं डॉक्टर साहब कि इसके लक्षण क्या है तनाव के, या जैसे जो स्ट्रेस लेते हैं उसके क्या लक्षण हैं?
0: जी मैम, तनाव आपको जो है दो तीन प्रकार के लक्षण मेनली दिखाता है, शारीरिक लक्षण होते हैं, मानसिक लक्षण होते हैं और कुछ सामाजिक आ जाते हैं लक्षण, जिसमें शारीरिक लक्षण में जब भी आप किसी तनाव से गुजरते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि आपके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाता है, सुन्नता होनी शुरू हो जाती है। ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है कि किस प्रकार का उसका बॉडी स्ट्रक्चर या किस तरह की उसकी कोपिंग स्किल है या किस प्रकार की उसकी प्रतिरोधक क्षमता है। सर दर्द या पेट में गड़बड़ाहट होना या फिर गला सूखना या फिर जो है बोलचाल में हकलाना, ये सारी चीजें उनमें सामान्यतः देखी गई हैं। कभी कभी व्यक्तियों में डरा डरा महसूस होना, उनमें आत्मविश्वास की कमी लगना या नकारात्मक सोचते रहना, ये इस तरह के का मनोवैज्ञानिक उनमें चिड़चिड़ापन और खुशी या बहुत ज्यादा खुशी महसूस ना कर पाना, जो रुचिकर कार्य थे उनके जिसमें उनका आनंद आता था वो उनमें भी आनंद नहीं ले पाते हैं। तो ये सारे लक्षण जो हैं आपको व्यक्ति टू व्यक्ति विषमताएं मिलेंगी, लेकिन मोटा मोटी जो है ये लक्षण आपको दिखेंगे लोगों में।
1: तो अब सवाल ये उठता है कि तनाव से आखिर बचा कैसे जा सकता है?
0: बिल्कुल मैम, बचाव के भी बहुत रास्ते हैं, लेकिन हम उससे पहले मैं आपका थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे कुछ आंकड़ों पर कि आप ये समझ लीजिए कि तनाव इतना भयावह हो गया है कि विश्व स्तर पर दैनिक दिनचर्या में वयस्क लोगों को कम से कम 37% तनावग्रस्त लोग महसूस करते हैं, जिसमें महिलाएं जो है 36% ज्यादा है पुरुषों की अपेक्षा। पुरुषों की जो तादाद है वो 33.6% ही है, ये वर्ल्ड वाइड
1: है, ज्यादा तनाव में
0: जी
1: रहती है।
0: और आप समझ लीजिए कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसमें 85 देश में ऐसे आंकड़ों में पाए गए हैं कि 85 से 90% जो देश हैं वहां के नागरिकों में तनाव पाया।

0: गया है। हमारे भारत में भी शहरी आबादी में जो है 53 से 90 तक जो है तनाव पाया गया है, जिनमें महिलाओं का रेशियो बहुत ज्यादा है जो कि 63% है, और पुरुषों में जो है मोटा मोटी जो है आप समझ लीजिए कि 53% ही पाया गया है, और जिसमें 72% जो वर्किंग फीमेल है उनमें बहुत पाया गया है।
1: तो अब ये बता दें कि हम बहनों को तनाव से बचने के लिए आखिर क्या करना चाहिए।
0: बिल्कुल मैम, उससे पहले ये भी जानना जरूरी कि तनाव प्रबंधन जरूरी क्यों है। भाई तनाव प्रबंधन आप समझ रहे हैं कि तनाव इस स्थिति में आपको पहुंचा देता है जहां पे आप शारीरिक और मानसिक दोनों समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। तो ये जो है प्रबंधन इसलिए भी जरूरी है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, मानसिक संतुलन बना रहे आपका, सामाजिक रिश्ते मधुर रहे आपके, और उच्च कोटि की दक्षता जो आपकी कार्य दक्षता है वो परफॉर्म हो सके, वो कर सके। तो हम कह सकते हैं कि तनाव प्रबंधन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब भी तनाव आता है तो वह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है, जिससे हमारे व्यवहारिक सोना, खाना और निर्णय लेना, कार्य करने की क्षमताओं में कमी आ जाती है। कभी कभी ये क्षमताएं इतनी ज्यादा हम लोगों को डिस्टर्ब कर देती हैं कि हमारी मनोसामाजिक स्थिति को भी परेशान कर देती हैं।
1: इससे बचा कैसे जा सकता है?
0: तनाव प्रबंधन के लिए आप बहुत सारे उपाय हमारे पास, शारीरिक व्यायाम है, आपका ध्यान है, आपका ब्रीथ एक्सरसाइज है, आपका मेडिटेशन है। उसके अलावा आपकी जो हम लोग का सबसे ज्यादा हम लोग तनाव में इसलिए आ जाते हैं कि हम जिंदगी की उसमें इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि हम अपने रुचकर कार्यों को भी दरकिनार कर देते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आपकी अपनी हॉबी है उनको वापस लाइए, आप अपनी नई स्किल डेवलप कीजिए, उससे भी तनाव खत्म होता है, और आपका कोई ना कोई ऐसा इष्ट मित्र या घनिष्ठ रिश्तेदार ऐसा जरूर होगा कि जब आप तनाव में हो, किसी प्रकार के उलझन में हो, तो उनसे अपनी बातें डिस्कस करके भी आप अपने तनाव के प्रबंधन कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारी सखियों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: संदेश यह है कि जिंदगी में उलझने, घबराहट, बेचैनियां वगैरह आती रहेंगी, नए नए चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन आपको अपने प्रति भी समय निकालना है। परिवार के प्रति जितना आप समय देते हो आप बिल्कुल समर्पित हो, लेकिन आपको अपने प्रति भी समर्पित होना है। अपने लिए ध्यान के लिए, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए समय निकालना है, और यहाँ पे कोई बहाना नहीं चलेगा। आप कृपया इस पे ध्यान दें और अपना कम से कम 5 से 10 मिनट का समय सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपने ध्यान के लिए निकालिए। देखिए अगर आप करेंगे तो आपका तनाव आराम से प्रबंधित हो जाएगा।
1: डॉक्टर इरा, आप हमारे स्टूडियो में आई और ज्ञान भरी बातें आपने हमें और हमारी बहनों को बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
0: थैंक यू मैम।
2: सखिया भी सुन रही थी बातचीत, तनाव प्रबंधन है जरूरी। डॉक्टर इरा त्रिपाठी से बातचीत कर रही थी सुरेखा सिंह।
3: सिमी, कितनी गर्मी है, धूप भी कितनी ज्यादा हो रही है ना।
2: हाँ, और कंचन, गर्मियों में पसीने की वजह से ना घमोड़ियाँ भी होने लगती हैं और फिर वो परेशान भी बहुत करती है, तो इससे बचने के लिए इस मौसम में सूती और ढीले कपड़े पहने, हो सके तो दिन में 2 बार ठंडे पानी से भी नहा लें और धूप में कम से कम निकलें।
3: और जहाँ घमोरियाँ हो गई हैं वहाँ एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें, इससे आपको ठंडक मिलेगी। और मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का प्रयोग भी आप मिश्रण बना के कर सकते हैं।
2: हाँ, इससे त्वचा को ठंडक मिलती है। और कंचन, अगर नीम की पत्तियाँ मिल जाए ना, तो नीम के पत्तियों को पानी को उबाल लें और फिर जब वो पानी ठंडा हो जाए तो उस पानी से नहाते हैं ना, तो घमोरियों का संक्रमण काफी हद तक कम हो जाता है।
3: और अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं।
2: भी डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी काम ना करें।
3: भाई गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों की भी छुट्टियां हो गई हैं, तो ऐसे में दादी नानी का घर बिल्कुल गुलजार रहता है। इन गर्मियों में नाती पोतों से उन्हें गर्मी सर्दी का तो एहसास नहीं होता।
2: हाँ, घर में रौनक भी लगी रहती है। और कंचन, हमारी जो संस्कृति है ना, उसमें तो अतिथि जो होते हैं ना, वो भगवान का रूप होते ही हैं, इसलिए इस गर्मी में जब भी कोई मेहमान आए तो उसका स्वागत ठंडे पानी पिलाकर करें, दिल से करें, मुस्कुराते हुए करें। साथ ही बच्चों को भी सिखाएं कि वो मेहमानों का स्वागत करें और उन्हें ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि हम उनके आने से परेशान हो गए हैं, बल्कि हमारा व्यवहार ऐसा हो कि वो उस व्यवहार के साथ जल्दी से घुल मिल जाएं।
3: भाई हमने आज बहुत सारी बातें की अपनी सखियों से, और ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें, विषय, नए नए गीत लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार सखियों।
2: नमस्कार।

0: के साथ
1: सखियों के बाद
0: सखियों के जज्बात
1: गृह लक्ष्मी।
2: अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम और आज के कलाकार हैं हीरालाल यादव और उनके साथी। इनके स्वर में पहले सुनिए ये निर्गुण।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे हीरा यादव और उनके साथी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 2 बजने को है, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। श्रोताओं कीजिए कुछ पलों का इंतजार और सुनिए समाचार।

0: Odisha and Telangana. And Norway Chess 2026 tournament to begin in Oslo this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा बिहार मध्य प्रदेश ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
3: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना

0: अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमरीका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका रिजर्व

0: इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। यीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी और नॉर्वे शतरंज 2026

0: क्विज टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 241.5 चार मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH जरम 1233 किलोहर्ट्स वेव्स OTT पर हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और आज कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त अनुपम। आप सभी को हमारा नमस्कार। इस कार्यक्रम में व्हाट्सएप संदेश भेजने के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 7905519981 यानी कि 7905519981। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप संदेश भेजना है। और श्रोताओं, फिर वही निवेदन हम करेंगे आपसे कि जो श्रोता एक बार संदेश भेज देंगे आज, अगला संदेश अगले कार्यक्रम में भेजेंगे, रिपीट संदेश नहीं भेजेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाएंगे बलमा नादान फिल्म से। बलमा नादान फिल्म के गीत के लिए हमारे पास संदेश आने शुरू हो गए हैं। ये संदेश भेजा है महरे और जौनपुर से आशीष कुमार ने। श्री गोपाल गिरी, रमेश गिरी, इंदु गिरी, विकास गिरी, विशाल गिरी ने ग्राम मड़ई जिला गाजीपुर से संदेश आपने भेजा है। जिला पश्चिम सिंह भूमि चाईबासा झारखंड से आप हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। चोचकपुर बाजार गाजीपुर से हैं रामसकल चौधरी। और भी संदेश हम सर्च कर रहे हैं क्योंकि संदेशों की आने की गति थोड़ी सी धीमी है, तो हो सकता है कुछ नेटवर्क का भी इशू हो सकता है, लेकिन गर्मी तो बहुत पड़ रही है और इस गर्मी में लगता है कि इंटरनेट भी थोड़ा सा तप रहा है। और ये संदेश भेजा है ग्राम बहुरा पोस्ट दिलदार नगर जिला गाजीपुर से अकलू राम, केदार राम और दीनानाथ सिंह ने। पटेल नगर मुगल सराय से शशि सिंह, आस्था सिंह और आकाश सिंह का भी संदेश मिला है अभी अभी। और ये संदेश भेजा है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखे लाल वर्मा। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी वोडके, श्रीमती नंदा वोडके, हनुमान वोडके, उत्तम चंद ताड़े। तो आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन इस बीच पे अभी और भी संदेश आ गया। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश मिथिलेश वर्मा। पद्मा टाकिच नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह, राजेंद्र जी शाह। अभी संदेश नहीं आ रहे थे और सब संदेशों की जिसे झड़ी सी लग गई है। तो ये संदेश भेजा है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद शाह, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, विभयदास मानिकपुरी। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय का भी संदेश मिला। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। गांव फरन से जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। काली माता मंदिर दिलदारनगर गांव जिला गाजीपुर से किशुन सिंह कुशवाहा और छविनाथ शर्मा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। नवागढ़ कटई जिला बेमतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत

मयंक जीत पुष्पांजलि वर्मा। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी और अल्ताप अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और वसीम अंसारी। सारिमपुर बक्सर से राजेश टी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफताब अंसारी, महताब अंसारी, मेराज अंसारी, कल्लू और मल्लू अंसारी। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशुल कुमार राही, बेगम रुखसार, रकीबा जहैन, तूबा आफरीन। जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी ने संदेश भेजा है पोफाली जिला यवतमाल से। राजेश कुमार वर्मा जी का संदेश रिपीट हो रहा है। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदनी कुमारी। ग्राम पीपल रोड गांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।

0: और साई गायकवाड़, नंदगंज जिला गाजीपुर ग्राम बागी से अच्छे लाल बिंद, ये संदेश भेजा है भीमपुर भदोई से महेंद्र कुमार, सरिता सानवी, आशीष पूजा, सतीश नीतू, प्रद्युम्न, रट्टू, नंदलाल और लालू ने, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। तो सुनिए अपनी पसंद पर राजपति का लिखा हुआ गीत संगीत, नदीम श्रवण का आवाज, दिलराज कौर और महेंद्र कपूर की फिल्म का नाम गंगा घाट। इसके बाद आप सुनेंगे पिया के गांव फिल्म का गीत।
1: ए हो बसिया, ए हो चलिया, कदर कैला, अरे तनी कदर कैला ना।

0: हाय मार दहलू
1: गुजर कैला हो कदर कैला हम दिल लच केला हम दिल

इसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। अब आप सुनेंगे एक पिया के गांव फिल्म का गीत और इसके लिए हमें संदेश भेजा है आप सभी श्रोताओं ने। घमापुर वाराणसी से शंकर प्रसाद, आदर्श कुमार, अमित कुमार, स्नेहा कुमारी, श्वेता कुमारी और रुद्र कुमार ने, और ये संदेश हमें भेजा है। शाहकुटी मुगलसराय से सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगलसराय से डब्लू जायसवाल, माया जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा जायसवाल, पूनम जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद जायसवाल, पिंकी जायसवाल, सहारनपुर चंद्रनगर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल, अभिनव जायसवाल, पटेल नगर मुगलसराय से आप हैं सुनील कुमार सिंह, शिवपुर बागान हावड़ा से अब्बास अंसारी, पीर मोहम्मद अंसारी, रज्जा खातून, सबाना खातून और प्यारी नवासी हयात मोइन अंसारी, इटाड़ी रोड बक्सर से असलम अकरम, मंटू और कल्लू, सदर बाजार मारवाड़ बिलारा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान, दादाबाबू रोड गिरदी झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया, मुबारकपुर पुरानी बस्ती से शाहिद अनवर, शाहिद जमाल, राशिद जमाल, दानिश जमाल और आसिफ जमाल, गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, सचिन शर्मा, नंदिनी शर्मा, प्रियंका शर्मा और रोहित शर्मा, मुबारकपुर रुचि तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन का भी संदेश हमें मिला है। रामसकल चौधरी मौनी बाबा धाम चोचकपुर बाजार जिला गाजीपुर से आपने संदेश हमें भेजा है। तो आप सभी को ये संदेश भेजा है चितबड़ा गांव बलिया से जीसी गुप्ता, आराधना गुप्ता, नेहा निधि, आयुष अनुष्का ने, लालगंज रायबरेली से के साहू, अमिता साहू, स्वस्तिका, रिशु, इला और विनस, कनाड प्लेस नई दिल्ली से डॉक्टर अर्चना और पुरुषोत्तम, दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम शाह। तो आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर पिया के गांव फिल्म का गीत जिसे लिखा है डॉक्टर रामनाथ पाठक ने, संगीत चित्रगुप्त का, आवाज सुरेश पाटकर और अलका याग्निक की। श्रोताओं आज से नौ तपा शुरू हुआ है और दोपहर 12 से 4 आप कहीं ना निकले, हम ये आपसे गुजारिश करेंगे और चुपचाप बैठ के घर में आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम को सुनिए और आराम कीजिए। बहुत आवश्यक ना हो तो घर से ना निकलिए और अभी सुनिए अपनी पसंद पर पिया के गांव फिल्म का ये गीत। इसके बाद आप सुनेंगे लागी नाही छूटे राम फिल्म का गीत।

0: अरे गजब कैलू रानी,
1: उमर कैला हो कदर कैना, हमरी लटकेला।

आप सुन रहे थे पिया के गांव फिल्म का ये बहुत खूबसूरत सा गीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें लगता है कि ये शायद कार्यक्रम का आखिरी गीत हो जाएगा, क्योंकि अब इस टूटे की घड़ी में 2:52 और 40 सेकेंड हो चुके हैं और फरमाइशें भी हैं। तो ये हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं लागी नाही छूटे राम फिल्म का गीत। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार चित्रगुप्त, आवाज़ लता मंगेशकर और तलत महमूद की। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंतु जायसवाल। पोटिया कला दुर्ग से ये संदेश हमें भेजा है संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू ने। जौनपुर से रुचिरा ने संदेश भेजा है। इनका संदेश मुझे लगता है एक सबसे छोटा संदेश है। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलबीर सिंह का भी संदेश मिला। चोचकपुर गाजीपुर से भास्कर दुबे ने भी संदेश भेजा है। और श्रोताओं, हम ये भी बताना चाहेंगे कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। अपनी प्रतिक्रिया भी आप ज़रूर लिखिएगा और प्रतिक्रिया लिखने के लिए हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है pkldairvaranasi@gmail.com। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा पता है pkldairvaranasi@gmail.com। तो बार बार हम कह रहे हैं कि अपने खुद भी गर्मी से बचिए, अपने लोगों को बचाइए, अपने पालतू पशुओं को और जो सड़क पर भी घूम रहे हैं उन्हें भी पानी जरूर से दें, क्योंकि तापमान बढ़ता जा रहा है। लगभग लगभग 45 के ऊपर तापमान चल रहा है, तो हम सबको इससे बचना होगा और इससे मुकाबला करना होगा। और हो सके तो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी अपने घर में ही रहने दें। और सबके साथ बैठ के रेडियो सुनिए, आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम सुनिए। अभी सुनिए लागी नाही छूटे राम फिल्म का ये गीत, जो कि है कार्यक्रम का अंतिम गीत।

इस गीत के लिए संदेश भेजा है कठौली लालगंज आजमगढ़ से, जैनब खान, आमिर खान, अरहम खान, इंशाल खान और अनस खान ने ये संदेश भेजा है। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदनी कुमारी ने संदेश भेजा है। पद्मपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा ने। तो लगभग आज मैंने सभी के संदेश शामिल किए। तो ये कार्यक्रम कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। पता एक बार पुनः सुन लीजिए, pkldarvaranasi@gmail.com। तो अब इस बीच में और भी संदेश आया है। ये गांव नारी पच देवरा से अजय सिन्हा, कैलाश सिन्हा, भोले सिन्हा, सचिन और उनके मम्मी पापा का भी संदेश प्राप्त हुआ। और अब भोजपुरी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस समाप्त करने की अपने रेडियो दोस्त अनुपम को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडियम वेव 241.54 मीटर, यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन EIR, DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं, संपन्न हो रही है आज की हमारी पहली सभा। शाम 5 बजे दूसरी सभा आरंभ होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, DTS DRM 1233 किलोहर्ट्स और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजने वाले हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। कुछ ही पलों में आरंभिक कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

0: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
1: नमस्कार, राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू,
2: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी एज वी ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द गणतंत्र भवन एट राष्ट्रपति भवन इन द ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ डिग्निटरीज and the proud recipients of the prestigious awards and their family members. And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
1: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार। हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के

पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी। ठीक यहां पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे पांचवी शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहां पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतिकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: श्री धर्मेंद्र सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द 14th लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान फ्रॉम 2004 टू 2009 and he was known for his emotional bond with his constituents.
1: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
0: 87 वर्षीय डॉक्टर श्रीमती एन राजम भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
1: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
2: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू हिज क्रेडिट।
1: भगत सिंह कोश्यारी लोक कार्य।
0: भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता हैं।
2: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश वेयर ही वर्क्स टू इम्पार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
1: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक व्यापार एवं उद्योग।
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
2: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर 4 decades एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को चेयरमैन ऑफ इंडो यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप।
1: विजय कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
0: बीती 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते
2: हैं। प्रोफेसर मल्होत्रा सर्व्ड ओवर 40 इयर्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
1: रामास्वामी पल्लीस्वामी चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
0: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनी स्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
2: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form guidelines.
1: श्री पीयूष पांडे मरणोपरांत कला विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी।
0: पीयूष पांडे, कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर

0: 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हैं।
1: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया।
2: पद्मश्री श्री विश्व बंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
0: विश्व बंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की खासतौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
1: श्री विश्व बंधु वॉज अ फाउंडर ऑफ सुरंगन वन ऑफ बिहार मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशन एंड रिमेन सो ओवर 6 डेकेड्स।
2: श्री भरत सिंह भारती कला लोक गायन।
0: भरत सिंह भारती 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खास तौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
1: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987 व्हेयर हिज एल्बम पुरबिया तान वाज रिलीज्ड। ही हैज आल्सो गाइडेड अ न्यू जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट्स एज अ जज एंड मेंटर।
2: श्री तगाराम भील कला अलगोजा वादन।
0: जैसलमेर के तगाराम भील अलगोजा बजाते हैं, कितना सुंदर साज जो कि शीशम और कैर की सूखी लकड़ी से बना होता है। इन्होंने जैसलमेरी पट्टू पहना है और ऊपर जैसलमेरी साफा चुंदड़ी का।
1: श्री तगाराम इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स। ही हैज रिसीव्ड अ महरावाल गिरधर अवार्ड इन 2013 बाय महरावाल गिरधर ट्रस्ट जैसलमेर एंड मेनी मेनी अदर अवार्ड्स। ही गॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज।
2: हरमनप्रीत कौर भुल्लर खेल क्रिकेट।
0: कौन नहीं जानता हरमनप्रीत कौर को, जिन्होंने राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
1: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket but have also contributed significantly to the growth.
2: Shri Ratilal Mohanlal Borisagar Sahitya evam Shiksha।
0: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर जिन्होंने मुस्कान पैदा की है क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
1: Yes, he has received many awards and honors and after 36 years his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Neelkant.
2: Shri Kumar Bose कला तबला।
0: कुमार बोस तबले में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
1: श्री बोस क्वाइट डिग्निटी एथिकल इंटेग्रिटी एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट टू क्लासिकल वैल्यूज हैव अर्नड हिम टॉप ग्रेड स्टेटस इन ऑल इंडिया रेडियो विद संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एंड पंडित दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड अलोंग विद इमेंस रिस्पेक्ट।
2: श्री जनार्दन बापूराव बोथे समाज सेवा।
0: मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं बोथे जी, 77 साल के हैं और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
1: श्री बोथे कंपनी राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा राष्ट्रपति भवन मेजर कुंभ मेला साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई। He has also served as full-time personal secretary
2: Swami Brahmadev Samaj Seva।
0: Swami Brahmadev 82 साल के हैं आप, श्रद्धेय हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने

0: राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है।
1: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
0: केसरिया रंग का आपने साफा पहना है और केसरिया ही परिधान है। राष्ट्रपति जी के सामने उन्हें अभिवादन करते हुए इस संत पद्मश्री से सम्मानित होता हुआ
2: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी, कला फिल्म अभिनय।
0: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें गुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है।
1: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ थ्रू हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जुबली, सूप एंड थाकी।
2: श्रीमती देवकी अम्मा जी, समाज सेवा।
0: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं लेकिन दुखी नहीं है, वन दादी नाम से जानी जाती है। 3000 से ज्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अल्लपुआ से आती हैं।
1: श्रीमती देवकी अम्मा relied on traditional knowledge and close observation of soil and climate conditions for growing plant saplings and used mulching, organic manuring from home cattle, careful retention of leaf litter and thoughtful water management. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
0: People,
2: Dr. Ramchand Godbole evam Shrimati Sunita Godbole, Chikitsa.
0: Dr. Ramchand Godbole aur unke saath Sunita Godbole, aap ek
2: Dr. Ramchand Godbole.
0: 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है।
1: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Shrimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
2: Shrimati Sunita Godbole.
0: ये भी कितना गौरव का क्षण है, उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले। एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ, आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और खास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है।
2: श्री पेची गुबिन, समाज सेवा।
0: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर, जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का, नमस्कार करते हुए पेची गुबिन 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए।
1: श्री गोविंद ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021, विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना, म्यांमार एंड भूटान। ही आल्सो लेड अ टीम ऑफ डेलीगेशन टू मीट द वाइस प्रेसिडेंट टू रिपोर्ट।
2: डॉक्टर एच वी हांडे, चिकित्सा।
0: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है। मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण, जो कि तमिल में है मूल रूप से, उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है। राष्ट्रपति जी की एडीसी उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए।
1: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr. B.P. Roy Award.
2: Shri Gafruddin Mevati Jogi, Kala, Bhapang Vadan.
0: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं, इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं, जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं, और खास तौर पर महाभारत और कृष्ण

0: लाली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं.
1: Well, through his sustained artistic practice, Shri Ghafruddin has contributed significantly to the preservation of nearly 20 endangered folk musical instruments and oral narrative traditions. His work has supported academic research including PhD level studies.
2: Mir Hazi Qasim, Kala Dholak.
0: 75 साल के मीर हाजी कासम इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं. आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं. 75 वर्ष के हो चुके हैं लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और खास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं.
1: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएई, ओमान एंड सेवरल अदर्स. ही हैज आल्सो रिसीव्ड मेनी स्टेट लेवल ऑनर्स including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya Puraskar.
2: Shri Raghuveer Khedkar, Kala Theatre.
0: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं. आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं.
1: During the COVID-19 pandemic, when public performances halted and many artists faced hunger and unemployment, Shri Khedkar stood up as a staunch advocate. He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
2: Shri R. Krishnan Kitna Mannoprant, Kala Kurumba Tribal Painting, Unki Patni Srimati Sushila Krishnan.
0: आर कृष्ण किटना जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था. आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए. सुशीला कृष्णन उनकी पत्नी पद्मश्री प्राप्त करती हुई.
1: श्री आर कृष्णन किटना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर. ही इज
2: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच, कला म्यूजिकोलॉजी.
0: एथनो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और खास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है. बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे.
1: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शन इन द स्टेट आर्ट कलेक्शन सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025.
2: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार, साहित्य एवं शिक्षा.
0: 66 वर्षीय जगदीश कुमार, आपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
1: वेल, प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार फ्रेम्ड एंड ऑपरेशनलाइज्ड मॉडल्स अंडर एनईपी 2020 एंड द 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विद फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट.
2: श्री प्रवीण कुमार, खेल एथलेटिक्स दिव्यांग.
0: और अब बारी इस वर्षीय खिलाड़ी की. T44 ऊंची कूद में विश्व में आप नंबर वन हैं और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार.
1: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू क्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड. एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल.
2: श्री के विजय कुमार, सिविल सेवा.
0: विजय कुमार जी सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
1: एज कमिश्नर ऑफ चेन्नई श्री के विजय कुमार रिफॉर्म्ड क्राइम कंट्रोल प्रैक्टिसेस, क्रैक्ड डाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स एंड एनहांस्ड पब्लिक सेफ्टी एंड रिड्यूस्ड रोड फैटलिटीज बाय 40%. एज एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर ही स्ट्रेंथन्ड पब्लिक सेफ्टी.
2: देवबा लाड, दादा लाड, कृषि.
0: देवालाल किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है. परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्मे हैं, 79 वर्ष के हैं.
1: Sri Rangdeva Lar invented new technology in cotton cultivation, which was used by farmers in all cotton producing states of India.

0: India. He had done research work in Jawar and Tur as well.
1: Shri Anke Gowda M, Samaj Seva.
2: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है.
0: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 इयर्स यूजिंग हिज एंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पस. And his collection includes books in Kannada, English, Hindi, Tamil, Telugu, and several other Indian languages, and diverse subjects such as literature, history, art, culture, and philosophy.
1: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa Cardiology.
2: 69 वर्षीय Dr. Mandal, interventional cardiologist. आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है.
0: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
1: Professor Budh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
2: Bharatiya Puratattva Vigyan ke ek mahatvapurna hastakshar Professor Budh Rashmi Mani, Rashtriya Sangrahalaya ke महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में.
0: वाइल वर्किंग इन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोफेसर मणि कंजर्व्ड अबाउट 150 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स इन महाराष्ट्र गोवा दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड डिस्कवर्ड 200 आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड ही डायरेक्टेड 20
1: श्री निलेश विनोद चंद्र मांडले वाला समाज सेवा.
2: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खासतौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है.
0: श्री मांडलेवाला, he has a long term vision that by 2047 no citizen should lose life because of the non availability of organs. For that he has traveled extensively across India.
1: डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, साहित्य एवं शिक्षा.
2: लुप्त प्राय जनजातीय आवाजों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाजों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने.
0: इंटरनेशनली डॉक्टर मिश्र हैज एडवाइज्ड नेपाल्स एमएलई पॉलिसी लेक्चर्ड एट चाइनाज कैस हानयांग यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया थाईलैंड महिडॉल यूनिवर्सिटी एंड रशियाज एकेडमी ऑफ साइंसेज.
1: श्रीमती तृप्ति मुखर्जी कला कंथा एम्ब्रॉयडरी.
2: कंथा ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है.
0: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. शी हैज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल by conferring on her the Bangashri Award.
1: Hari Madhav Mukhopadhyay, Kala Theatre, unke putra Shri Krishnendu Mukhopadhyay.
2: आप मशहूर थिएटर निर्देशक नाटककार और अभिनेता थे. 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया. उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय.
0: श्री
1: सत्य नारायण नंदलाल नुवाल व्यापार एवं उद्योग.
2: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं. आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से.
0: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition.
1: श्री के पजानीवेल खेल सिलंबम.
2: सिलंबम 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है. इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल.
0: Well, Shri Pajanivel has was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy presented by the Honorable President of India in 2023. And he also founded the Mamalan Silambam and Folk Arts Development Club.

0: in Pondicherry. He has also trained youth who were interested in Silambam.
1: Shri Dharnik Lal Sunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
2: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आगे आकर श्री पंड्या का सम्मान।
0: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
1: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
2: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है।
0: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1988 as Secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine, Akshar.
2: Rashtrapati ji swam ek seedhi utar ke niche aati hui aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtra ऐसे सेवकों का ऋणी है।
0: His work earned him the Vishwa Hindi Samman.
1: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार।
2: अनिला कुमार उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार। गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए, लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
0: Over a career spanning six decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
1: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
2: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खासतौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
0: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज़ द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
1: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa, Gastroenterology.
2: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
0: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also
1: Shrimati Deepika Reddy, Kala Nritya.
2: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
0: श्रीमती रेड्डी वाज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
1: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
2: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी। 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
0: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications, and organized numerous international conferences to bring cutting-edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
1: Shri Hari Charan Shaikia, Kala Satriya Nitya.
2: Satriya, Assam ki ek suprasiddh kala. Aur हरिचरण शैकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं व्हील चेयर पर जाते हुए, आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रीय कला का प्रशिक्षण भी दिया।

0: माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हुई।
1: श्री हरिचरण सैकिया परफॉर्म सत्रिया डांस बिफोर इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकेंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑल्सो ही परफॉर्म द भरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948।
2: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री,
0: 86 साल के शास्त्री जी,
2: साहित्य एवं शिक्षा
0: विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हैं।
1: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री has authored and edited 15 books and more than 50 research papers. He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
2: Professor Shafi Shauk, Sahitya Evam Shiksha.
0: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं, और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है, प्रोफेसर शफी शौक।
1: Translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
2: Shri Baldev Singh Khel, hockey coach.
0: Baldev Singh ji ne bahut sare hockey khiladi is rashtra ko diye hain. Ek anubhavi coach hain aur aaj inhe milta hua Padma Shri. और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
1: श्री बलदेव सिंह जी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग द शहबाज मारकंडा हॉकी नर्सरी इनटू वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोडक्टिव सेंटर्स फॉर हॉकी टैलेंट।
2: श्री यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत कला नट संकीर्तन, उनके पुत्र श्री यमनाम बिशन भोर सिंह।
0: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत।
1: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
2: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan Evam Engineering.
0: अशोक जी ने भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
1: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
2: श्रीमती शिव शंकरी, साहित्य एवं शिक्षा।
0: अबारी श्रीमती शिव शंकरी जी की। आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया है, और खास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में, खासतौर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज्यादा उपन्यास, 40 से ज्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज्यादा लघु कथाएं, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है।
1: Shrimati Shiv Shankari completed her Bachelor of Science degree as a university rank holder, reflecting her early academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
2: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
0: श्रीधर जी आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।
1: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन मानव का विकास, broadcast in 18 Indian languages simultaneously through 200 radio stations. He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour education.

0: educational television channel.
1: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kala Azar.
2: Aap Kashi Hindu Vishwavidyalay ke Institute of Medical Sciences mein medicine ke manak professor hain. संक्रामक रोगों खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है.
0: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड कालाजार फ्रॉम द ईयर 20

0: आपने कार्य किया है, 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफेद साड़ी इन्होंने पहनी है और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई।
1: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
2: श्री एन स्वामीनाथन, कला भक्ति संगीत।
0: तंजावुर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है।
1: He became a master of the art and served as authorer in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
2: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurveda.
0: Dr. Thakral, Ayurvedic Padhati ke Shalya Chikitsak hain aur Bharat mein Kshar Sutra Chikitsa ke madhyam se कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है।
1: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव्ड टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन। ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो।
2: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
0: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी।
1: डॉक्टर त्रिवेदी सिंस द लास्ट 5 years ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल इनिशिएटेड अ प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज।
2: श्री अरविंद वैद्य, कला थिएटर।
0: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है।
1: श्री वैद्य
0: काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ है।
1: Shri Vaidya founded the Natya Sampada, his own production company, through which he produced, directed and acted in more than 75 full-length plays. Each work carried the quiet weight of dedication, gathering recognition along the way. In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
2: Professor
1: very adaptable.
2: Jujal Vasi, Vigyan Evam Engineering.
0: Professor Jujal Vasi, IIT बॉम्बे में प्रोफेसर एमेरिटस हैं और आपने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर और सोलर फोटोवोल्टिक्स क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर वासी थ्रू आउट हिज करियर इन बोथ सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर फोटोवोल्टिक्स ही स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव रिसर्च व्हिच ही थॉट वाज नेसेसरी स्पेशली ऑन मेजर नेशनल मिशन। He has published about 200 papers in leading journals.
2: Dr. Narayan Vyas, Puratattva Vigyan.
0: Dr. Narayan Vyas, विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है।
1: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the Government of Madhya Pradesh in
2: Professor 2019. Gambir Singh Yonzan, Sahitya Evam Shiksha.
0: Gambir Singh Ji, Darjeeling Pahadiyon ke ek pratishthit वनस्पति शास्त्री, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया।

0: Professor Yonzon's contribution to educational and intellectual advancement of Darjeeling Hill region are pioneering and far-reaching. A passionate advocate of scientific temper and environmental awareness, he led a six-year conservation movement that was a huge, huge success.
1: Shri Halley War Samaj Seva.
2: अब बारी हेली वॉर जी की. आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम है.
0: श्री वॉर हैज स्पेंट मोर देन 50 इयर्स नर्चरिंग एंड बिल्डिंग द आइकॉनिक लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ द ईस्ट खासी हिल्स. सिंस द एज ऑफ 10 ही हैज मेटिकुलसली गाइडेड द एरियल रूट्स ऑफ द फिकस इलास्टिका ट्री टू क्रिएट ड्यूरेबल लिविंग स्ट्रक्चर्स. His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
2: और अब सचिव महोदय आते हुए, चूंकि ये अंतिम सम्मान था आज का, और
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए. धन्यवाद.

0: can see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: There is a palpable excitement in the hall which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Award. It is indeed a moment of pride.
2: So please may I have attention please. I request all the award winners to move towards your right side. Second part of this
1: ceremony. तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार
3: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे विवरण दे रहे थे महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: Akashwadi at 90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप भोजपुरी में समाचार सुनेंगे जिसे हमारे गोरखपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। सर्वोच्च न्यायालय नीट परीक्षा में बेर बेर हो रहल चूक पर चिंता जतावत कहले हवे कि ई खेदजनक हो कि राष्ट्रीय परीक्षा जांच एजेंसी एनटीए पछिला पेपर लीक विवाद से कौनो सबक नाही सीखलस। एगो रिपोर्ट।
1: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: एह बीचे एनटीए 28 मई से होखे वाले संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के तारीख आगे बढ़ा देले हो। एजेंसी कहलस की बकरीद के तारीख में बदलाव के नाते ई फैसला लेहल गईल। संशोधित परीक्षा के तारीख का सूचना जल्दी देहल जाये। पेट्रोल के दाम में आज 2.61 रुपया और डीजल के दाम में 2.71 रुपया प्रति लीटर का बढ़ोतरी कैल गई हो। बढ़ोतरी के बादे अब लखनऊ में पेट्रोल 101.89 रुपया और डीजल 95.36 रुपया प्रति लीटर के रेट से मिलत बा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग बैठकी के जरिए प्रशासनिक कार्यन, कानून व्यवस्था, आयुष विभाग और राज्य कर विभाग के कामकाज को समीक्षा कैले। एगो रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन चौपालों में राजस्ववाद, घरेलू हिंसा, अवैध वसूली और स्थानीय स्तर की शिकायतों का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। श्री योगी ने IGRS और CM हेल्पलाइन से मिली शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण तथा संतुष्टि परक निस्तारण पर बल देते हुए कहा कि शिकायतों में किसी भी स्तर की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने एक अन्य उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, सुरक्षित एवं तकनीक आधारित बनाने के लिए पुलिस रेडियो यूनिट को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस की लोकेशन, मूवमेंट और संचार

0: व्यापार गतिविधियों की गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं कल शाम को ही आयुष विभाग की एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस नीति 2026 को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: मुख्यमंत्री आज राज्य कर विभाग के शासन मुख्यालय और फील्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कई के राजस्व संग्रह कर प्रशासन आ व्यापारिक सुविधों के स्थिति का समीक्षा कैलें। यह मौका पर मुख्यमंत्री कहलें कि राज्य कर विभाग के राजस्व बढ़ोतरी के साथ विश्वास आधारित प्रशासन का मॉडल प्रस्तुत करे के होई। अमेरिका का विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज अपने पत्नी आएगो उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आगरा पहुंचले। ओजा वहां के ताजमहल देखनी आ अपने पत्नी के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन करौनी। ए दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री गाइड से ताजमहल का इतिहास निर्माण आ पच्चीकारी के बारे में जानकारी लेने। आज गंगा दशहरा मनावल जा रहा हो। यह मौका पर प्रयागराज वाराणसी आ अयोध्या में भारी संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियन में आस्था का डुबकी लगा के प्रमुख मंदिरन में पूजा अर्चना कर रहा हवें। हापुड़ को तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर में अजुए से 3 दिन का गंगा दशहरा मेलो शुरू हो गई बा। प्रदेश में तेज घाम भीषण गर्मी या लू का प्रकोप जारी बा। मौसम विभाग बिहने तक खातिर दिन के समय में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी कर ले हो। लखनऊ के मौसम विज्ञान केंद्र का वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश बतौलें कि प्रदेश में गर्मी का प्रकोप अबहिन जारी रही।
2: जैसा कि पिछले

0: की संभावना है।
1: ए बिच्चे भीषण गर्मी नौतपा का आज से शुरुआत हो गई। ये अगला महीना के 2 तारीख ले जारी रही। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे पशुपालन हेतु सरकारी सुविधाएं। इस विषय पर डॉक्टर संतोष कुमार गिरी से सतीश कुमार यादव की बातचीत, साथ में हीरालाल यादव और साथियों का लोकगीत भी किसान भाई सुनेंगे। रात्रि 8 बजे से सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित सीताराम सिंह के स्वर को। रात्रि 10 बजे से कार्यक्रम आपसे मिलिए में आप सुनेंगे 95 बटालियन कमांडेंट राजेश्वर बलापुरकर से आशुतोष की बातचीत। और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा गायन, कलाकार होंगे पशुपतिनाथ मिश्र। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। कार्यक्रम विवरण में अब सुनिए कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 7:31 पर और कल रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे ध्रुपद गायन, कलाकार होंगे आशुतोष भट्टाचार्य। कल दोपहर 12:45 पर सुनिएगा सितार वादन, कलाकार होंगे पंडित शिवनाथ मिश्रा। कल सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम और कल रात्रि 10 बजे से सुनिएगा कार्यक्रम खेल दर्पण। ये दोनों कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे। कल सुबह 9:50 पर और कल दोपहर 1:45 पर सुनिएगा लोक संगीत का कार्यक्रम, कलाकार होंगे महेंद्र सिंह यादव और साथी। फरमाइशी गीत

0: एक्सप्रेस कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दिन में 11 बजे से। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे कल दोपहर 12:30 पर। कलाकार होंगे ताहिर सईद और कल रात्रि 8 बजे से कलाकार होंगी आबिदा परवीन। कल दोपहर 1:15 पर महिलाएं सुनेंगी कार्यक्रम अंगनैया। कल शाम 5 बजे से धरती के गीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी गीत। कल शाम 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे रोजगार सूचना, इतिहास में आज का दिन, यूथ डायरी और भी अन्य रोचक जानकारियां। कल शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे बैंकिंग कार्य में सावधानी। इस विषय पर डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव से बातचीत, साथ में महेंद्र सिंह यादव और साथियों का लोकगीत भी किसान भाई सुनेंगे। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म 3 इडियट से। आवाजें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे और संगीत है शांतनु मोइत्रा का। फिल्म 3 इडियट्स।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। आवाजें हैं नीरज श्रीधर और सुजैन डिमेलो की, गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है प्रीतम का। फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने पद्म पुरस्कारान् प्रददाति। प्रशासनेन उक्तं यत् सर्वकारः देशे पेट्रोलियम उत्पादानां सुगमतया आपूर्तिं सुनिश्चेतुं प्रयतमानः अस्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन नीट परीक्षा पत्र लीक प्रकरणे केन्द्रस्य एनटीए सीबीआई इत्युभाभ्यां प्रतिक्रिया याचिता। अपि च भारत ऋतु विभागेन आगामिषु त्रिषु दिनेषु दिल्ल्यां उष्णतरंगस्य स्थित्यै पीतवर्णीया सञ्चेतना प्रदत्तास्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रपति भवने आयोजिते कार्यक्रमे पद्म पुरस्कारान् प्रदत्तवती। पद्म पुरस्काराः देशस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारेषु अन्यतमाः सन्ति, यस्मिन् पद्मविभूषणः, पद्मभूषणः, पद्मश्रीः च अन्तर्भवन्ति। अद्य 26,000 वर्षे प्रथम नागरिक निवेश समारोहे राष्ट्रपतिना कलाक्षेत्रे अभूतपूर्व योगदानाय मरणोपरान्तं चलचित्र अभिनेतारं धर्मेन्द्र सिंह देओलं, वायलिन वादकं डॉ एन राजम वर्यं च पद्म विभूषण पुरस्कारौ, 6 पद्म भूषण पुरस्काराः, 58 पद्मश्री पुरस्कारैः सह 66 पुरस्काराः प्रदत्ताः। अवशिष्टाः पद्म पुरस्काराः पश्चात् नागरिक निवेश समारोहस्य द्वितीये चरणे प्रदीयन्ते। अस्मिन् वर्षे सर्वकारेण आहत्य 31,00,000 पद्म पुरस्काराणां घोषणा कृता अस्ति। सर्वकारः देशे पेट्रोलियम उत्पादानां सुगमतया आपूर्तिं सुनिश्चेतुं प्रयतमानः अस्ति। पश्चिमेशियायाः वर्तमानस्थित्याम् अद्य नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीयसंवादं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य संयुक्तसचिवा डॉ सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे एलपीजी इत्यस्य शोधनागारस्य उत्पादनं प्रतिदिनं 50,000 टन परिमितं यावत् अस्ति।
2: ये रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् भारतीय दूतावासः, वाणिज्य दूतावासश्च भारतीय प्रवासीनां कल्याणाय निरन्तरं सम्पर्करतौ स्तः। श्री जायसवालः अवदत् यत् मंत्रालयः गल्फ क्षेत्रे बृहत् संख्यायां स्थितस्य समुद्रीय समुदायस्य सर्वविध साहाय्यं प्रददाति। उर्वरक विभागस्य अपर सचिवा अपर्णा शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे उर्वरकानां समग्र भण्डार स्थितिः अपि सुखकरः।

0: पंचो राम
1: राम राम।
0: राम। का हो
1: और
0: भैया?
1: हाँ सुधु भैया, और अपन का हाल चाल बा?
0: और हाल चाल तो भाई देखा ठीक बा। इस समय तो अपन जो खेत खाली रहल
1: हाँ
0: वो तो भाई देखा जोत के छोड़ दिले ही
1: अच्छा
0: जल। और बाकी साग सब्जी देखा जो लगल रहल है ना
1: हाँ
0: वह संभलले बा और निकलत है समय हमारे खेती से बढ़िया
1: अच्छा। एक बात कहीं भैया,
0: भैया।
1: सुधु भैया, जो ना बात आप कहला है कि खेत जोत के छोड़ देली बड़ी, तो वो कमवा हमहू के लिए है।
0: भाई वह करही के बाद अगले फसल के तैयारी बदे के माटी
1: हाँ
0: सोनाना से जरूरी बा ना।
1: अच्छा, जोन गर्मी की जुताई उताई जोन हो जाले भैया ना, तो जवन वो हानिकारक जोन कीड़ा मकोड़ा बाण
0: हाँ।
1: वो नष्ट हो जाना,
0: बहुत सा अंडा
1: जिससे
0: मंडा रहला ना।
1: हाँ अंडा वंडा रहे ना तो खत्म हो जाना, आवा वाली फसल जोन होले भैया ओकरे बदे तनी सा बढ़िया हो जाला।
0: और का और ओकरे साथ साथ ना देखा भाई जब माटी सुनहल रहले तो ओकर उलट पलट जब हो जाला नीचे ऊपर ना
1: हाँ
0: तो भाई मिट्टी के जो उर्वरा शक्ति हो ना वो भी
1: हाँ
0: भाई एक बराबर हो जाला हर जगह।
1: अच्छा, माने कहे का मतलब ये बा कि जो नीचवा के पियरकी मटिया बा ऊपर आ गई, ल ऊपर के जो करियाई मिट्टिया बा वो नीचे चल
0: और नीचे
1: गई,
0: चल गए दोनों मिल गए एक करे
1: मिल
0: ना।
1: गए मिल गए। हाँ
0: तो उसे उर्वरा शक्ति देखा ऊपरी जो सतह होला ना माटी का विज्ञानी भैया लोग कहा ना कि भाई देखा वो मलाईदार माटी होले
1: हाँ
0: चल तो वो माटी जब नीचे के साथ मिल गई तो भाई वहां तक ओकर स्तर बन गल ना।
1: बिल्कुल बन गल भैया। अच्छा, उसे जो मट्टी के जोन अलट पलट हो जाला ना, तो जोन भी हमन फसल लगावल जाला, जैसे किसान भाई जोन हमारी फसल लगाओ ना, चाहे वो धान के फसल होए, चाहे गेहूं के फसल हो, चाहे कौनो सब्जी, अब देखा सब्जी इसमें होत बा ना,
0: खूब होत बाकी
1: तो जोन फसल हो रही ओकर जड़ तनी कायदे के वृद्धि कर ले
0: या
1: अंदर तक जाले।
0: बिल्कुल
1: अच्छा,
0: बिल्कुल
1: कहल जाला भैया कि ने जब जड़ें मजबूत हुई ना तब बैन कौनो फली भैया।
0: अरे भाई हम कहें कि जड़ मजबूत हुआ के बात करते हो जैसे अपने भारत देश के ले लें
1: हाँ
0: जल्ला
1: हाँ
0: एकर जड़ कहाँ हो हम तू जो सबसे छोटी इकाई
1: बिल्कुल
0: अपने देश कही
1: हाँ, माने छोटी
0: और
1: इकाई बड़ी जाए जिससे हम से समाज के निर्माण होला, वही समाज से देश के निर्माण होला।
0: एकदम
1: बिल्कुल
0: तो हम तो हैं अपने आप के देखा मजबूत करे के हो सशक्त करे के हो है ना आत्मनिर्भर बने के हो
1: बिल्कुल, ये तो बड़ा
0: है।
1: बढ़िया बात कह रहा भैया।
0: और आत्मनिर्भरता के जब बात आवे तो देखा अपने भारत में एक आत्मनिर्भर भारत अभियान भी चलत हो जो प्रधानमंत्री के द्वारा 1920 में हो 2020 में
1: 2020
0: चलावल गल रहा है
1: हाँ
0: ना।
1: अच्छा, ये एकर फायदा भी बहुत मिलत बा।
0: अरे काहे ना
1: अच्छा,
0: फायदा
1: एक चीज
0: मिली।
1: और जो आप कहना है ना कि ऐसे अपन सशक्त होए के चाहिए, मजबूत होए के चाहिए,

0: अपने अंदर ऐसा व्यवस्था ऐसा हुनर उत्पन्न कैले कि अपन ज्यादा से ज्यादा काम अपने स्वयं कैले।
1: भाई यह तो उद्देश्य हो ना,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ये अपने योजना जो ये अपन अभियान हो,
0: हाँ
1: एकर उद्देश्य यह है। और देखा तब एकर शुरुआत कैल गई जबकि भारत अपन देश जो है बड़े संक्रमण काल से दौड़ गुजरत रहल
0: मने
1: है,
0: कोरोना
1: जो
0: काल में।
1: कोरोना काल में जो मंदी के समय हो गए, त्राही त्राही मचल
0: अरे
1: रहे
0: भैया वो
1: है
0: दिन तो सबके आमों के याद बा भैया।
1: भैया। याद बा तो हम कही कि ये जो ये अभियान बा, इमन भाग लेकर के अपने देश के मुख्य समझ ला कि गति में ले आवे के जरूरत है, मुख्य धारा में जोड़े के जरूरत हो
0: बिल्कुल
1: है।
0: जोड़े की जरूरत है। एक चीज और है सुधु भैया, जानत हुआ हम तो लखत है कि एकदम जोन जोन बतिया वाला तू बहुत शुद्ध है शुद्ध और फरीचे फरीच बतिया वाला।
1: अरे भाई तो तू का समझ, हम कहानी कहा यहाँ आई ला भाई, पंच भैया लोग रहे ना तो उनके सामने तो देखा कामे के बात कही होवे के चाहिए,
0: बिल्कुल होए के
1: जानले
0: चाहिए
1: समय के सबकर कीमत हो
0: बिल्कुल
1: जानले।
0: कीमत भैया। अच्छा भैया ऐसा ना देखा हमहन के जोन देश रहा ना, चाहे खेती बाड़ी हो चाहे कला हो चाहे कोनो संस्कृति हो, ये पर बहुत पहले ही से अपने अपने में स्वयं आत्मनिर्भर रहल बा।
1: एकदम बिल्कुल सही कहा
0: अच्छा
1: भाई।
0: सरकार भी एक योजना लिया दिलस आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसे और हमहन के किसान भाइयों के चाहे यहाँ की जनता के काफी बल मिलल बा।
1: बहुत बल मिलल हो। और देखा ये जो कौशल योजना हो, कौशल विकास योजना, एकरे तहत सरकार के द्वारा जो प्रशिक्षण देवल जाला कि
0: बिल्कुल
1: भाई अगर रोजी रोजगार तू कह लेत हुआ ना तो उसे कहा हो कि अपन स्वयं का रोजगार कर सकल है
0: अच्छा
1: और प्रशिक्षण प्राप्त कर लेला तो तुम्हें जानकारी हो गल
0: बिल्कुल
1: जौने
0: बिल्कुल
1: क्षेत्र में तुम्हारा रुचि बा है ना,
0: हाँ
1: वो क्षेत्र में जा करके अपन जो हो का प्रशिक्षण लेकर के जानकारी लेकर के ओकरे आधार पर तुम्हार जो हो ना बैंक से ऋण भी हो जाए।
0: अच्छा
1: हाँ ओके लेकर के अपने आप के आत्मनिर्भर बन सकल है।
0: ये
1: और
0: सब
1: जौन
0: सुधु
1: देश
0: भैया
1: पर हमार निर्भर है, जौन
0: हाँ
1: सामान बहुत सा हमान आयात करीला
0: हमारे दूसरे
1: ओके
0: देश से जो नौत बाय
1: खावत बा
0: हाँ
1: ओके अगर अपने देश में हमारे बनावल जाए तो
0: हाँ
1: हमान विदेशी मुद्रा कितना हमार बचा सकीला।
0: बिल्कुल बचा सकेला, ऐसे काफी लाभ भी हो सकेला
1: अरे
0: और
1: ला
0: देश मजबूत भी हो सकेला
1: बिल्कुल
0: और साथे
1: बिल्कुल
0: साथे अपन समाज और हम लोग भी मजबूत हो सकेला।
1: एकदम
0: भैया यही से
1: एकदम
0: कहल जाला ना कि अपने थाली का खाना और अपने गीत गाना माने अपने बल पर कोनो काम करब बड़ा बढ़िया रहेला।
1: बिल्कुल रहा लाया यही के आत्मनिर्भरता कहल जाला ना। और ये हर क्षेत्र में देखा केहू भैया लोग जैसे अब मत्स्य पालन करे चाहत हूँ
0: हाँ
1: है, चाहे तो समझ ला कि रोजी रोजगार कामगार रहूँ है ना, तो जौने भी क्षेत्र में उजाल चाहत हूँ, केहू जौन हो मान ला कि उद्योग रोजगार कुछ करल चाहत हो, क्यों पशुपालन करल चाहत हो, मुर्गी पालन है ना, तो सब बदे के प्रशिक्षण का व्यवस्था देखा सरकार की तरफ से बा, प्रशिक्षण प्राप्त करके ओके तू अपन करा रोजी रोजगार, ऋण भी ले अगर पैसा नहीं बात है। और
0: अच्छा भैया ऐसे बेरोजगारी दूर हो जाले।
1: अरे ला कहे ना भाई हम कहे थे बहुत से दिखा ऐसा देखा में आवला कि पढ़ले लिखले के बाद भैया लोग ना अपने दिमाग में ये लेके घूमन ना कि भैया हमारे जो है नौकरी नहीं मिलल तो का करें, ये सोचे की जरूरत नहीं हो है।
0: अच्छा एक चीज और है सुधु भैया, जानत हुआ ये जो आत्मनिर्भर योजना बा सबके बदे बा, इसे व्यक्ति जो ना स्वावलंबी बनेला चाहे आर्थिक तरीके से हो चाहे सामाजिक तरीके से हो
1: बिल्कुल
0: कोनो भी तरीके से चाहे तकनीकी तरीके से हो अपने आप में काफी मजबूत होला।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा हुआ। तो भाई हम कहे कि अगर अपने देश में ई अभियान बा है और हमारे तोहरे बदे बा, जो नवयुवक लोग हुआ उनके बदे भी बा
0: हाँ
1: है,
0: हाँ
1: हर स्तर के व्यक्ति बदे बा, महिला लोगन बदे भी हो, जो
0: बिल्कुल
1: स्वयं
0: बिल्कुल
1: सहायता समूह वगैरह देखा बनावल गल है, यही वजह से कि अपने गांव के जो महिला लोग हैं वो लोग भी आत्मनिर्भर बनत हैं है,
0: बिल्कुल बनत
1: और
0: हैं।
1: समिति बनाए के देखा कितना विकास करत हैं है। और ड्रोन दीदी देखा जो ड्रोन उड़ाए करके समझ ला कि छिड़काव करे के काम खेते में करत हैं या और तरह का समझ ला कि उसे काम करत हैं है ना, प्रशिक्षण प्राप्त करके, तो वो भी आत्मनिर्भर होते हैं।
0: वो आत्मनिर्भर भी होते हैं। एक चीज और भैया ना, जब कभी अपने देश में या अपने समाज पर या अपने पर कोनो बहुत बड़ा संकट आ गया तो वही समय जौन अपने हाथे में हुनर बा जौन कौशल बा जौन सरकार आपके प्रशिक्षण देले बा सिखोले वो समय भैया बहुत काम देवेले।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहला भाई, कोनो जरूरी ना कि देश सेवा जो हो खाली सीमा पर जाके गोली चलवले से बा, बंदूक लेके
0: हाँ
1: पहरा देले से है ना,
0: हाँ बिल्कुल
1: जे जहाँ हो जौने स्तर पर हो जौन प्रशिक्षण प्राप्त कैले हुआ है
0: हाँ
1: वहां से तू अपन कर्मठता के साथ अगर वो करत हुआ काम सेवा करत हुआ तो वो भी एक देश सेवा हो।
0: बिल्कुल सेवा भैया
1: तो हे बुझाओन भैया
0: हाँ सुधु भैया
1: हम कही हम कर दी तू ढेर बुझौला, अब कुछ संदेश पंच भैया लोग सुन लें ओकरे बाद अपनी खेती किसानी की तरफ चल जाए।
0: बिल्कुल भैया।
2: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक

0: दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
1: ओ
0: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
0: 0542227658।
4: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह!
5: अनजान ऐप से बचें।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: जान भैया।
8: हाँ सुधु भैया।
7: सनेस्त पंच भैया लोग सुन लेना।
8: बिल्कुल सुन लेना।
7: अब देखा हमन अपने खेती किसानी में बतख ही करीला की जोन की बागवानी से संबंधित, कृषि से संबंधित है या पशुपालन से संबंधित, जोन भी अपने समझला कि आवन विज्ञानी भैया लोग।
8: हाँ,
7: तो हमन का प्रयास यह रहा कि हर स्तर से अपने किसान भैया लोगन के जानकारी का वृद्धि हो।
8: बिल्कुल हो, चाहे फसल के जानकारी हो, चाहे पशुपालन के जानकारी हो।
7: तो हम आज जोन हो जानकारी जोन बा अपने पंचायती में न कि पशुपालन बदे जो सरकारी सुविधा मिलत हो।
8: अच्छा।
7: हाँ, एकर जानकारी बत कही हुई डॉक्टर संतोष कुमार गिरी से सतीश कुमार यादव भैया का।
8: तो बिल्कुल सुनवा दे भैया।
9: आज हमने उनके बीच में आयल हैं डॉक्टर संतोष गिरी, जे की पशु चिकित्सा अधिकारी हुए जमालपुर मिर्जापुर में। आज हमने लोग इनसे जानल जाई कि पशुपालन बदे सरकारी सुविधाएं कौन कौन है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हमन की कार्यक्रम कृषि जगत में स्वागत है।
10: सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार।
9: तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप हमारी किसान भैरों के ई बताई कि जे भी किसान भाई अगर पशुपालन कैल चाहत है या पशुपालन कैले है, तो जो सरकार का कुल योजना है ओकर मूलभूत संरचना का है, ये बारे में आप हमारी किसान भैरों के बताई।
10: देखिए, पशुपालन विभाग की जो मूलभूत संरचना है, इसके अंतर्गत प्रत्येक विकासखंड ग्राम स्तर पर एक राजकीय पशु चिकित्सालय एवं पशु सेवा केंद्र उपस्थित है, और इन पशु चिकित्सा राजकीय पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सा अधिकारी नियुक्त होते हैं।
9: अच्छा।
10: और पशु सेवा केंद्र पर पशुधन प्रसार अधिकारी। और इसके अलावा जब अगर जनपद मिर्जापुर की बात करें, तो हमारे जनपद में कुल 27 राजकीय पशु चिकित्सालय हैं एवं 27 पशु सेवा केंद्र भी हैं।
9: अच्छा।
10: और इन्हीं दो संस्थानों में पशुपालक अपने पशुओं के संपूर्ण इलाज, बधियाकरण, चिकित्सा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण आदि इतनी सेवाएं यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं।
9: जैसे कि आप बतावत हैं कि तमाम सुविधा और तमाम जोन की पशुपालन बदे हमनी के जरूरत है, ये सब तो सुविधा हमनी के सरकार की तरफ से मिलत ही है। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहब अपने किसान भैया लोग बदे कि अगर वो लोग पशुपालन कल चाहत हो, तो वो लोग सबसे पहले क्या करें?
10: देखिए, पशुपालन के लिए आपको सबसे पहले अपने जो निकटस्थ पशु चिकित्सालय है वहाँ पर जो नियुक्त पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क करें, और जो सरकार द्वारा चल रही जो योजनाएं हैं उनके विषय में पूरी तरह से जानकारी हासिल करें। अब जैसे इस समय पशु पंजीकरण पर जोर दिया जा रहा है।
9: अच्छा।
10: जैसे फार्मर रजिस्ट्री के बारे में लोग बात करते हैं, उसी तरह से पशु पंजीकरण भी बहुत ही एक अनिवार्य चीज़ है। इसके अंतर्गत सभी पशुपालकों को अपने पशुओं का पंजीकरण कराना चाहिए। एक ऐप है जिसका नाम है भारत पशुधन ऐप, इस पर पशुओं का पंजीकरण होता है। तो जो हमारे विभाग के पैरावेट्स या पशु मित्र होते हैं, ये पशुपालक के द्वार पर पहुंचकर उनके पशुओं के कान में 12 अंक का एक टैग होता है, उसे ये लगाते हैं, और उसके बाद पशु का विवरण और पशु के स्वामी का विवरण, इन दोनों चीजों को पशुधन ऐप पर फीड किया जाता है।
9: अच्छा।
10: तो एक तरह से ये समझिए कि पशुओं की जन्म कुंडली तैयार हो जाती है हमारे ऑनलाइन, और जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं ये जब तक आपका पशु पंजीकृत नहीं होगा ये सुविधाएं से आप वंचित हो जाएंगे।
9: अच्छा, तो मतलब कोनो सुविधा लेबे कहा तो सबसे पहले अपने पशु को पंजीकरण करा। अच्छा, पंजीकरण के बाद वो लोग क्या करा?
10: जैसे पशु

0: पंजीकृत हो जाते हैं।
1: हम्म,
0: तो इसके बाद जैसे हमारे विभाग द्वारा अन्य टीकाकरण कार्यक्रम समय समय पर चलाए जाते हैं, जैसे कि खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण हो, गला घोंटू लंपी स्किन डिजीज का रोग हो, फिर छोटे पशुओं में जैसे बकरियों में PPR का टीकाकरण हुआ। तो ये टीकाकरण निःशुल्क तभी पशुपालक प्राप्त कर सकते हैं जब तक जबकि उनका पशु पूरी तरह से पंजीकृत हो।
1: अच्छा,
0: इसके अलावा भी जैसे कृत्रिम गर्भाधान होता है, तो इसमें भी

0: कृत्रिम गर्भाधान होता है, तो इसमें भी निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान का प्रावधान है उन पशुओं के लिए जिनके कान में टैग लगे हैं।
1: अच्छा।
0: और इसके अलावा जो हमारी सरकारी दरों पर कृत्रिम गर्भाधान होती है, जैसे कि एक तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान होता है, और एक अगर आपको बछिया के लिए अगर आप सीमेन चढ़वाना चाहें तो इसके लिए सेक्स सीमेन का उपयोग किया जाता है, और ये सरकारी दर जो 100 रुपये है उस पर ही जो पंजीकृत पशु हैं उनको ही ये सुविधा दी जाती है।
1: तो डॉक्टर साहब, जो ना आप ये सुविधा लेवे के बात कहते हैं हमारे किसान भेल उनके, तो ये बताएं कि जैसे आप कृत्रिम गर्भधारण के बात कहते रहनी है कि ओकरी बदे जोन बछिया बदे 100 रुपया का टीका है, तो ऐसे ही का हर टीका कुछ अलग से शुल्क लगा था कि बस यही बदे है?
0: नहीं, देखिए विभाग द्वारा जितनी भी ये सेवाएं हैं वो पूर्णतः निःशुल्क है, टीकाकरण पूर्णतः निःशुल्क है। इसके अलावा जो पशु चिकित्सा होती है, जो आप सरकारी संस्थाएं जैसे हमारी राजकीय पशु चिकित्सालय हैं या पशु सेवा केंद्र हैं, वहां पर सरकारी दर बड़े पशुओं के लिए 5 रुपये निर्धारित की गई है, छोटे पशुओं के लिए 2 रुपये है, और अगर कुत्ते बिल्ली का इलाज कराते हैं तो वहां पर 10 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा गर्भ परीक्षण निःशुल्क है, बधियाकरण निःशुल्क है, और ये जो मैं बात कर रहा था सेक्स सीमेन की, ये तो बाहर में लोग इसके लिए 1500 या 700-800 रुपये शुल्क देकर इसका सेवा लेते हैं प्राइवेट पे, पर सरकारी दर पर मात्र 100 रुपये में ये सेक्स सीमेन का उपयोग किया जाता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मान ली कोनो पशु बीमार हो जाता है, कुछ पशुपालन के लिए बीमार हो जाता है, तो जिसन की आप बताते नहीं कि अपनी नजदीकी चिकित्सक भाई लोग उनके यहाँ जाए के है, का कोनो ऐसन भी योजना या कोनो आप जो ऐप का बात करते नहीं है वैसा कोनो सुविधा है का जो ना से कि डॉक्टर साहब लोग उनके घर पे भी बुलावल जा सके?
0: जी जी बिल्कुल, अभी हमारे विभाग में हर पशु चिकित्सा अधिकारी को एक बहुउद्देश्य सचल पशु चिकित्सा वाहन दी गई है, और जिसमें दवाएं उपलब्ध हैं, और पशु चिकित्सक स्वयं उस वाहन के माध्यम से पशुपालक के घर जाकर वहां पर शिविर लगाकर या जो भी आवश्यक दवा सामग्री है वहां पर उनका वितरित करते हैं और उनका इलाज करते हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा मोबाइल वेटनरी यूनिट,
1: अच्छा,
0: ये एक तरह का एम्बुलेंस है जिसे कि आपातकालीन सेवाएं पशुपालक को दी जाती है। अगर कोई भी पशुपालक के पशु बीमार है या गंभीर स्थिति में है और वो काफी पशु चिकित्सालय से काफी दूरस्थ जगह पर स्थित है, तो वो 1962 नंबर पर, टोल फ्री नंबर है ये, 1962 नंबर पर ये कॉल करके आप अपनी समस्या का ब्यौरा दे सकते हैं, और कुछ ही घंटों में पशु चिकित्सक पूरी टीम के साथ उस एम्बुलेंस के माध्यम से पशुपालक के द्वार पहुंचेंगे और पशु का इलाज करते हैं।
1: तो जो ना आप नंबर बताइए टोल फ्री नंबर,
0: जी ये 1962 टोल फ्री नंबर है,
1: तो ये पर कब्बू काल का कल जा सकेला या कर कोनो समय निर्धारण है?
0: आपातकालीन सेवाएं जो होती हैं ये सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक उपलब्ध है।
1: अच्छा।
0: और इस पर आप कभी भी सेवाएं ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रदेश भर से इसमें कॉल जाती है तो थोड़ा सा समय लगता है, तो पशुपालक को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, हो सकता है 5 मिनट या 10 मिनट का समय लगे, लेकिन कॉल लगती जरूर है और पशु चिकित्सक अवश्य जाते हैं।
1: अच्छा, सरकार द्वारा कोनो ऐसन भी योजना है जो अगर मान ली पशुपालक भाई लोग पशुपालन कैले हुए लोग, तो लोग अगर दूध बेचल चाहत हुए या उससे और कोनो फायदा लिहल चाहत हुए, तो उनमें ओकरी बदे का का सुविधा है ये बारे में?
0: इस समय देखिए सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है नंद बाबा दुग्ध मिशन। ये नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत कई सारी योजनाएं हैं, इसमें पशुपालक 2 पशु से लेकर 25 पशु तक का एक डेयरी खोल सकता है। अब जैसे एक माननीय मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना के अंतर्गत कोई भी पशुपालक उत्तर प्रदेश के राज्य से बाहर, जैसे आप पंजाब हरियाणा से 2 स्वदेशी नस्ल की गाय का क्रय कर सकते हैं, इसकी जो कुल लागत है ये 2 लाख रुपए की है, और स्थलीय सत्यापन होने के पश्चात इसमें 40% का अनुदान मिलता है, यानी कि 80,000 रुपए वापस हो जाती है। तो मात्र 2 पशु जैसे साहिवाल हुई या गिर नस्ल की गाय हुई, थरपारकर हरियाणा, गंगा तेरी, ये स्वदेशी नस्ल के गाय के संवर्धन के लिए ये योजना बनाई गई है। इसके अलावा हमारे पास अभी कृषक समृद्धि, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना एवं मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना भी संचालित हो रही है। जैसे मिनी की बात करें तो इसमें पशुपालक 10 स्वदेशी नस्ल की गाय के साथ एक अच्छा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, और ये इसकी कुल लागत है 23,60,000 की एक यूनिट है।
1: अच्छा।
0: इसमें 50% का अनुदान है, यानी 11,80,000 इसमें छूट मिलती है, और जो शेष रकम है इसका कुल लागत का जो 15% है ये लाभार्थी का अंश होता है, और 35% जो है ये बैंक ऋण से ले सकते हैं।
1: अगर ये योजना के लोग कल चाहते हों तो एक बदे कोनो रजिस्ट्रेशन या
0: इसके आवेदन के लिए

0: ये आप पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें, जो ब्लॉक स्तरीय पशु चिकित्सालय है वहाँ के पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, और या फिर ऑनलाइन माध्यम से भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। जी
1: डॉक्टर साहब, जैसे अपने गांव गिराव में देखे कि मिलेला कि भाई कुछ कृषक भाई लोग थोड़ा कहल जाओ कि आर्थिक रूप से कमजोर हुआ, थोड़ा गरीब हुआ, तो उन लोगन बदे भी कोनो सरकार का योजना है का?
0: हाँ, देखिए ऐसे पशुपालक जो बैंक ऋण सस्ते दर पर लेना चाहते हैं, उनके लिए एक पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना है।
1: अच्छा
0: इसके अंतर्गत कोई भी पशु पालक दो दुधारू गोवंश पर 1,60,000 तक बैंक ऋण ले सकता है, और इसके लिए मात्र 4% ब्याज बैंक ऋण द्वारा उपलब्ध की जाती है। और अगर ये 3 लाख तक की लिमिट ये पशुपालक इसको अपने क्रेडिट पर बढ़ा सकता है।
1: अच्छा तो
0: जी
1: एक अरब दे का जो नजदीकी डॉक्टर लोग हों
0: जी
1: उनसे
0: इसके लिए
1: मुलाकात
0: भी
1: करे कोई?
0: आपको पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करेंगे, और बैंक से जो संबंधित बैंक है, मैनेजर हैं जिनसे आप ऋण लेना चाहते हैं, उनसे एक सहमति पत्र लेकर पशु चिकित्सा अधिकारी को दें, और वो एक आवेदन करके एक नियमबद्ध तरीके से वो जिले पे जाता है पहले पशु मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में, फिर वहाँ से वो अनुमोदित होकर LDM के माध्यम से संबंधित बैंक मैनेजर में आते हैं। इसके लिए भी फिर मैं वही कहना चाहूँगा कि पशुओं के कान में वो टैग लगा होना जरूरी है, क्योंकि बैंक लोन के लिए पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते हैं, और जब तक कि पशु का कान में टैग न लगा हो, पंजीकृत न हो, और उसका पशुधन ऐप पर अगर वो रजिस्टर्ड न हो, तो उसको लोन की सुविधा नहीं मिलेगी।
1: अच्छा सरकार द्वारा कोनो ऐसन भी योजना है जैसे कोनो गांव में या कहे परिवार में कुछ बच्चा कुपोषित हो जाते हैं
0: जी
1: या
0: जी
1: कोई लोग भी कुपोषित हो जाते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उन
0: जी
1: लोगों बदे भी कोनो सरकार अपनी योजना चलावत है
0: जी
1: का?
0: जी जी देखिए इसके लिए सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में अस्थायी गोआश्रय स्थल खोले गए हैं, बृहद गो संरक्षण केंद्र है जहाँ पर आवारा पशु को संरक्षित करके रखा जाता है। तो इन आवारा पशुओं में भी कुछ ऐसे पशु निकल जाते हैं जो दुधारू होते हैं, जो कम दूध देते हैं, जो देसी नस्ल की गाय है। अब मान लीजिए कोई पशुपालक उसको भ्रमवश छोड़ दिया है, पर वो गौशाले में जाकर वो अच्छा दूध देने लगी है, तो ऐसे गोवंश को हम लोग पोषण मिशन के तहत सैम परिवार जो होते हैं उनको ये हम लोग सुपुर्द करते हैं,
1: अच्छा
0: और इसके बदले में सरकार द्वारा प्रति पशु प्रतिदिन 50 रुपये के दर से ये धनराशि उस पशुपालक को उपलब्ध कराते हैं।
1: अच्छा
0: यानी कि एक व्यक्ति अगर 4 पशु को गोद लेता है, जैसे कि एक और योजना है इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना,
1: अच्छा
0: इसके अंतर्गत कोई भी पशुपालक गौआश्रय स्थल से 4 पशु को गोद ले सकता है,
1: अच्छा
0: और इसके लिए सरकार उसे 50 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से DBT के माध्यम से उनके खाते में बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यानी कि एक व्यक्ति अगर 4 पशु लेता है तो महीने के अंत में उसे 6,000 रुपये की राशि मिलती है उस पशु के भरण पोषण के लिए।
1: तो ये जो आप पशु बताओ थे ये कहाँ मिली है पशु लोगन
0: ये
1: के?
0: पशु गोआश्रय स्थल पे उपलब्ध मिलते हैं, जो
1: अच्छा
0: भी गोआश्रय स्थल हैं, जो अस्थायी अस्थायी गोआश्रय स्थल हैं या बृहद गो संरक्षण केंद्र हैं, ये यहाँ पर जो भी पशु हैं इनका आप चयन कर सकते हैं पशुपालक अपने स्तर से।
1: अच्छा अब मान ली कि अगर पशुपालन के संगे संगे कुछ लोग बकरी या भेड़ पालन भी कर चाहते हो, तो ये
0: जी
1: बते भी कोनो योजना है का?
0: जी बकरी पालन और सूकर पालन के लिए भी, भेड़ पालन के लिए भी कई कई सारे योजनाएं हैं। एक
1: काका
0: हमारे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, इसके अंतर्गत जितनी भी योजनाएं हैं इसमें सरकार द्वारा 50% अनुदान दी जाती है, और इसके साथ साथ में इस समय सूकर पालन के लिए देखिए जहां पर राज्य सरकार द्वारा 90% राज्यांश है और लाभार्थी का मात्र 10% राज्यांश है, इसकी एक यूनिट की कुल लागत 1,47,000 है, और इसमें जो राज्यांश 90% की बात कर रहे हैं तो ये 1,32,660 रुपये ये सरकार की तरफ से अनुदान है। लाभार्थी को केवल अपने स्तर से 14,740 रुपये ही लगाना पड़ता है। तो ये अनुदान संख्या 83 के अधीन विशेष घटक योजना 11 सूकर पालन की योजना है ये। तो इसके ऐसे भी कर ये भी है, और इसके तहत में जो बकरी पालन है या फिर भेड़ पालन है इसके लिए भी 50% अनुदान मिलते हैं, जिसे पशुपालक ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन कर सकते हैं।
1: अच्छा तो मतलब कि अगर कोई के पशुपालन या बकरी पालन,
0: जी
1: भेड़ पालन या सुकर
0: इसके
1: पालन
0: साथ
1: करे
0: ही
1: के है?
0: कुक्कुट पालन, जो मुर्गी पालन होती है,
1: अच्छा
0: उसमें खासकर जो अनुसूचित जाति के जो निर्बल वर्ग की जो महिला होते हैं या दिव्यांग जन हैं, उनको वरीयता देते हुए एक बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम संचालित की जाती है, जिसके अंतर्गत इन्हें 3,000 की लागत की है ना ये एक 50 चूजे इनको उपलब्ध कराई जाती है, और इसके साथ में इन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, और चूजों के साथ में इन्हें स्टार्टर राशन

0: और कुछ जो आवश्यक दवाएं हैं वो भी उपलब्ध कराई जाती है। जी
1: तो मतलब कि एक तरह से हमारे किसान भैया लोग अगर पशुपालन करत हों
0: जी
1: या कैले हों तो वो लोग सरकारी सुविधा का लाभ उठा सके ना। तो डॉक्टर संतोष गिरी जी, आप हमने के कार्यक्रम कृषि जगत में इनी एकरा बदे बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बुझावन भैया
3: हाँ सुधु भैया,
2: बड़ी नगद के देखा बात कही रहा भाई, इतनी सुविधा सरकार के तरफ से मिलत हो पशुपालन बदे
3: बिल्कुल
2: हैं
3: भैया,
2: और मुर्गी पालन बदे।
3: कृषि जगत के माध्यम से जानकारी भी मिलत बा
2: बिल्कुल
3: किसान भाइयों के।
2: डॉक्टर संतोष कुमार गिरी भैया देखा इतनी अच्छी जानकारी देना, सतीश कुमार भैया वैसे पूछबो कहीं ना फरिया
3: खूब फरिया
2: फरिया
3: फरिया की पूछना भैया की।
2: तो हम कहे कि जानकारी के बात तो नगद को हो गई, अब एक साथ ही जो है ना कुछ नगद का गौना ही भी हो जाए पंचायती में मन मन साहब लोग।
3: बिल्कुल भैया
2: तो हीरालाल यादव और उनके साथी भैया लोगों के गावल गीत हो पंच भैया सुने आनंद ले।

0: पंचो देखा भाई, हीरालाल यादव उनके साथी भैया लोगन का ई देशभक्ति के गीत रहल है। और बुझाओन भैया,
1: हाँ सुधु भैया,
0: चला चलावत हम कही कि अब काल का सुनो भैया, अपने पंच भैया लोगन के बताए दा।
1: ये भैया कल सवेरे 6:05 खेती की बातें में विषय रही धान की उन्नत प्रजातियों की जानकारी दी है अपने दिनेश कुमार सिंह।
0: असांझी के ना दिखाई जो ना अपन बैंक का काम धाम हमन करी लाने, जो पैसा रखी लाने, तो
1: बिल्कुल
0: ये बैंक का कार्य करे में का का सावधानी रखें, ये विषय पर जानकारी दी है प्रमोद कुमार श्रीवास्तव भैया, बती हैं देखा रामकृष्ण मिश्र भैया, है ना।
1: अच्छा भैया,
0: अब एक साथ चल के बेला होता तो पंचो भैया लोगों से आज्ञा लेवल जाए। तो पंचो
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म अतरंगी रे से। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और शशा तिरुपति की। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है ए आर रहमान का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म बागी 2 से। आवाज है आतिफ असलम की, और गीतकार और संगीतकार हैं आरको।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का आखिरी गीत है फिल्म ब्रह्मास्त्र से। आवाजें हैं श्रेया घोषाल और तुषार जोशी की, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत है प्रीतम का।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिसे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: rgovin पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी?
3: अरे
2: और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
3: और ये
4: मेरी बड़ी की नाम।
5: पर दादी,
2: हाँ,
5: आपके नाम?
6: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
5: क्या
6: आरबीआई कहता है?
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
8: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों समेत 66 लोगों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत 6 अन्य लोग पद्मश्री से अलंकृत। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए 5 भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान, लखनऊ से अवनीश कुमार सिंह उम्मीदवार। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में लू का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 विभूतियों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। आज के समारोह में उत्तर प्रदेश की डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जबकि अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के 6 अन्य लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
9: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों आज 66 लोगों को पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। उत्तर प्रदेश से आज 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें कला के क्षेत्र में डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
10: डॉक्टर श्रीमती एन राजम, कला वायलिन।
9: डॉक्टर केवल कृष्ण ककराल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्याम सुंदर को चिकित्सा, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि को पुरातत्व विज्ञान और प्रवीण कुमार को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
10: श्री प्रवीण कुमार, खेल एथलेटिक्स दिव्यांग।
9: शीर्ष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
8: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज आगरा पहुंचकर ताजमहल का दीदार किया। उनके साथ उनकी पत्नी और उच्च प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। आगरा पहुंचने पर उनका स्वागत जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने किया। एक रिपोर्ट।
11: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने करीब 40 मिनट तक ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल भ्रमण के दौरान उन्होंने पत्नी के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन कराया, साथ ही गाइड से ताजमहल के इतिहास, निर्माण और पच्चीकारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने स्मारक की खूबसूरती की जमकर प्रशंसा की। श्री रूबियो ने विजिटर बुक पर इस इमारत की खूबसूरती देखने का अवसर दिए जाने पर आभार जताया। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
8: पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में यह पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 101.89 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 95.36 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की सूची में मेरठ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से श्रीचंद शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें। पीएम सूर्य

0: रेली मुरादाबाद शिक्षक सीट पर डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों को प्रत्याशी बनाया गया है। लखनऊ में स्नातक सीट पर अवनीश कुमार सिंह जबकि शिक्षक सीट पर उमेश द्विवेदी को मैदान में उतारा गया है। आगरा की स्नातक सीट पर डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह पार्टी प्रत्याशी होंगे। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों और पावन नदियों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। फर्रुखाबाद में भी गंगा दशहरा के पावन पर्व पर श्रद्धालु गंगा तट पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। जिला प्रशासन ने गंगा तट को 4 सेक्टर में बांटा है। गंगा नदी में 50 नाव और करीब 50 गोताखोरों की भी तैनाती की गई है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में भी आसपास के जिलों और राज्यों से लोग गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में सभी प्रमुख घाटों पर भोर से ही भक्त गंगा में स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा दशहरे के पावन पर्व पर श्रद्धालु त्रिवेणी संगम सहित रामघाट दारागंज और वीआईपी घाट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस पवित्र पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए कल रात से ही आसपास के जनपदों और राज्यों से भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। भक्तों ने गंगा यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर प्रार्थना दान और भेंट अर्पित कर समृद्ध और खुशहाली की कामना की। भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के लिए घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर कल विशेष अनुष्ठान होंगे। इस अवसर पर भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराने के साथ 56 भोग लगाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: पिछले वर्ष गंगा दशहरा के मौके पर शेषावतार व परकोटे में बने 6 मंदिरों की स्थापना हुई थी, जिसकी कल पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके पर राम मंदिर यज्ञशाला में विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। साथ ही भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे और 56 भोग लगाए जाएंगे। इस अवसर पर वाल्मीकि रामायण का पारायण भी होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप जारी है। बीते 24 घंटों में बांदा 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश के सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। वहीं झांसी, प्रयागराज, जालौन, उरई, आगरा और हमीरपुर में पारा 45 डिग्री के पार रहा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अमरोहा में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने हीटवेव से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है, साथ ही अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए हैं।
3: जिले के सभी अस्पतालों में बेड आरक्षित करने के साथ साथ दवाइयों का इंतजाम किया गया है। ORS घोल को सभी आशा वर्कर के माध्यम से गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है और यदि किसी को किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए तत्काल इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।
0: तेज गर्मी के मद्देनजर वाराणसी में जिला प्रशासन ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में अर्बन हीट एक्शन प्लान को सक्रिय कर दिया गया है ताकि बढ़ते तापमान के प्रभाव को कम किया जा सके।
4: 42-43 डिग्री से ज्यादा जो है वो टेम्परेचर चल रहा है, उसके दृष्टिगत जो अर्बन हीट एक्शन प्लान है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। विद्यालयों में भी चोटियां कर दी गई हैं, जो चौक चौराहे हैं जहां पे ट्रैफिक लाइट है, जहां पे ट्रैफिक में लोगों को मोटरसाइकिलों पे वेट करना पड़ता है, वहां पे भी शेड के लिए ऊपर से कवर किया गया है। वो अलग अलग जगहों पे कोल्ड रूम्स बनाए गए हैं। जो CHC PHCA डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पे कोई हीट स्ट्रोक का अगर पेशेंट आता है तो इमीडिएटली उसके लिए रिस्पॉन्ड किया जा सके, इसके लिए वहां ट्रेनिंग्स दी गई है।
0: मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश भर में लू को लेकर चेतावनी जारी की है। हालांकि हाथरस, मथुरा, मैनपुरी समेत पश्चिमी संभाग के जनपदों में आज रात बिजली गिरने और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। नौतपा की शुरुआत के साथ श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान श्री विश्वेश्वर का आज फलों के रस से विशेष अभिषेक किया गया। बाबा विश्वनाथ का अभिषेक गुलाब, लीची और आम के रस से संपन्न हुआ। मंदिर प्रशासन के अनुसार नौतपा के सभी 9 दिनों तक प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के फलों के रस से भगवान का अभिषेक

किया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इस विशेष अनुष्ठान का उद्देश्य भीषण गर्मी के दौरान भगवान विश्वनाथ को शीतलता अर्पित करना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों समेत 66 लोगों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत 6 अन्य लोग पद्मश्री से अलंकृत। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए 5 भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान, लखनऊ से अवनीश कुमार सिंह उम्मीदवार। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में लू का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग।
2: At 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग, और इस कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म लाल सिंह चड्ढा से। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत है प्रीतम का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग, और इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म रांझणा से। आवाजें हैं जावेद अली, कीर्ति और पूजा की। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है ए आर रहमान का। फिल्म रांझणा।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग, और इस कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से।

रसरंग कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म एनिमल से। आवाज हरिजीत सिंह की, गीतकार हैं सिद्धार्थ गरिमा और संगीत है श्रेयस पुराणिक का।

रसरंग कार्यक्रम का आखिरी गीत है फिल्म पीके से। आवाजें हैं शान और श्रेया घोषाल की, गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे और संगीत है शांतनु मोहित्रा का। फिल्म पीके।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंग। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं पंडित सीताराम सिंह, रचना है राज की।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में पंडित सीताराम सिंह के स्वर को। अगली रचना है फैज अहमद फैज की, स्वर एक बार फिर से पंडित सीताराम सिंह के।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार थे पंडित सीताराम सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी, और इस कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म जो जीता वही सिकंदर से। आवाजें हैं उदित नारायण और साधना सिंह की, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, और संगीत है जतिन ललित का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी, और इस कार्यक्रम का अगला गीत है 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से। आवाज है कुमार सानू की, गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत है आरडी बर्मन का।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम रस माधुरी का अगला गीत है फिल्म दिल है कि मानता नहीं से। आवाजें हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की, गीतकार हैं फैज अनवर और संगीत है नदीम श्रमण का।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम रस माधुरी का अगला गीत है फिल्म रंग से। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की, गीतकार हैं समीर और संगीत है नदीम श्रवण का।

रस माधुरी कार्यक्रम का आखिरी गीत है दिल तो पागल है फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत है उत्तम सिंह का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस माधुरी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई U23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शिल्पधानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
3: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
4: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
3: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
5: रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 196,000 सेल हुए हैं।

0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
1: Several key agreements were signed.
2: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूप रेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
3: अगेंस्ट द असेसमेंट ऑफ
4: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
5: Like metric tons of imports have reached our shores.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश

0: मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
2: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमान गिल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Sairam Mujtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan.

आज कई सैयाह वहां फंस गए थे। एक बयान में भारतीय फौज ने कहा है कि मकामी हुक्काम की तरफ से मिली इत्तला के बाद राहत और बचाव टीमें जाए मौका पर फौरन पहुंच गईं। भारतीय फौज के मुताबिक तकनीकी खराबी के बाइस कुल 65 केबल कारें मुतासर हुई थीं। इसमें मजीद कहा गया है कि बचाव टीमों ने सभी 300 सयाहों को बहिफाजत महफूज मकाम तक पहुंचा दिया है। इधर तकनीकी टीमें इस खराबी का जायजा ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट इम्तिहान मुनक्किद किए जाने के सिलसिले में बार बार होने वाली गलतियों पर तश्वीश का इजहार किया है और कहा है कि यह अफसोसनाक बात है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक के इससे पहले के तनाजों से कोई सबक नहीं लिया। जस्टिस पीसी नरसिम्हा और आलोक आराधे पर मुश्तमिल एक बेंच ने मरकज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA और CBI से उन दरख्वास्तों पर जवाब तलब किए हैं जिनमें इस टेस्टिंग एजेंसी की जगह मेडिकल दाखिले का इम्तिहान मुनक्किद कराने के लिए किसी ज्यादा वसी तजर्बे वाले और खुद मुख्तार इदारे को मुकर्रर किए जाने का मुतालबा किया है। अदालत ने NTA को हिदायत दी है कि वह जुमेरात तक एक हलफनामा दाखिल करे जिसमें एजेंसी के कामकाज को चुस्त दुरुस्त करने से मुतालिक इसरो के साबिक सरबराह के राधाकृष्णन की सदारत वाली एक कमेटी की जानिब से पिछले साल दाखिल करदा सिफारिशात पर अमल आवरी की तफसीलात पेश की जाएं। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को NEET UG 2026 के अगले माह की 21 तारीख को होने वाले दोबारा इम्तिहान को महफूज सिक्योर और कामयाबी के साथ मुनक्किद कराने के सिलसिले में एक खत लिखा है। जनाब प्रधान ने मुल्क भर के तमाम वज़राए आला लेफ्टिनेंट गवर्नरों और एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखकर इस सिलसिले में उनका तआवुन तलब किया है। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने इबोला वायरस से होने वाली बीमारी की रोकथाम के सिलसिले में तैयारियों और निगरानी के इकदाम का आज नई दिल्ली में जायजा लिया। वजारत के सीनियर एहलकारों के साथ मीटिंग के दौरान जनाब नड्डा ने हिदायत दी कि दाखिले के तमाम पॉइंट्स जिनमें हवाई अड्डे बंदरगाहें और जमीनी सरहदें शामिल हैं पर जांच पड़ताल के इंतजाम होने चाहिए। उन्होंने एहलकारों से यह भी कहा कि वह पूरी तरह मुस्तैद और चौकस रहें। आलमी सेहत तंजीम WHO ने इबोला वबा को बैन अवी तशवीश की अवामी सेहत से मुतालिक एक इमरजेंसी करार दिया है। मरकजी वजारत सेहत ने वजाहत की है कि अब तक मुल्क में इबोला के किसी मामले की कोई इत्तला नहीं है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने आज जम्मू कश्मीर में कलदम जमात इस्लामी तंजीम से मुंसलिक दहशतगर्दी की माली मुआवनत के एक मामले में 3 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की। कश्मीर के श्रीनगर और शोपियां जिलों में 3 मकामात पर की गई तलाशी की कार्रवाई के दौरान कई काबिल एतराज दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद हुए जिसके बारे में शुबा है कि इनका ताल्लुक रियासत में जमात इस्लामी और इसके मुतअद्दिद ट्रस्ट और तंजीमों की सरगर्मियों से है। एजेंसी के मुताबिक अब तक की तफ्तीश से यह इंकशाफ हुआ है कि ममनुआ तंजीम वादी कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी के लिए फंड इकट्ठा करने और दहशतगर्दी को फरोग देने में सरगम रही है। यह तंजीम तालीम और सेहत जैसी फलाही सरगर्मियों के नाम पर अंदरून और बैरून मुल्क से चंदा इकट्ठा करने के काम में मुलव्वस थी। ये आकाशवाणी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर नई दिल्ली में कल क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पैनी वॉन्ग, जापान के वजीर खारजा तोशी मिस्सो मोतेगी और अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रोबियो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वज़रा तमाम तरजीही शोबों में क्वाड तआवुन को फरोग देने, इन दिनों जारी क्वाड स्कीमों की पेशरफ का जायजा लेने और भारत बहरुल काहिल खित्ते में रूनुमा होने वाली हालिया तब्दीलियों पर इजहार ख्याल समेत बाहमी नौयत के दीगर बैनुल अक्वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। एक आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल के क्वाड तसव्वुर के पेश नजर वज़रा पिछले बरस 1 जुलाई को Washington DC में हुई तबादले ख्याल को आगे बढ़ाएंगे। हमारे नुमाइंदे ने इस सिलसिले में ये रिपोर्ट पेश की है। इस बरस वज़राए खारजा की मीटिंग आलमी गैर यकीनी और मगरबी एशिया के बहरान के वक्त मुनक्किद हो रही है। भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल क्वाड एक अहम ग्रुप के तौर पर उभरा है जिसकी ज्यादातर तवज्जो भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम है। इत्तेहाद के मौजूदा सदर की हैसियत से भारत ये मीटिंग मुनक्किद कर रहा है। क्वाड मुल्क इस अज़्म के साथ यकजा हुए हैं कि पूरी दुनिया की बेहतरी और एक खुले, आज़ाद और सबकी शमूलियत वाले भारत बहरुल काहिल खित्ते को ताउन देने की गरज से एक ताकत के तौर पर काम करेंगे और इसे एक ऐसा खित्ता बनाएंगे जो खुशहाल और मुजाहिम हो।

कुछ लोग जमाने की आवाज में खो जाते हैं, राहें चाहे धूप लिखे या सायों का सिलसिला रख दें, राहें चाहे धूप लिखें या सायों का सिलसिला रख दें, तू साथ हो तो सफर भी अपनी मंजिल का पता रख दे।

कुछ लोग जमाने की आवाज में खो जाते हैं, कुछ लोग जमाने की आवाज में खो जाते हैं, कुछ अपनी ही धुन में नया एक जहां बना जाते हैं।

दुआ यही है कि हर खुशी तेरे दर पर ठहर जाए। दुआ यही है कि हर खुशी तेरे दर पर ठहर जाए। जो हमसे छूट गया वो तुझको मुकम्मल नजर आए, वो तुझको मुकम्मल नजर आए।

ढलती हुई शाम ने फिर दिल को उदास कर दिया। ढलती हुई शाम ने फिर दिल को उदास कर दिया। तेरी याद के धुएं ने हर सू धुंधला सा कर दिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंजुमन। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। आपसे मिलिए कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं कमांडेंट सीआरपीएफ 95 बटालियन राजेश्वर बालापुरकर से आशुतोष की बातचीत।

0: आपसे मिलिए कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र आशुतोष का नमस्कार। श्रोताओं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जो आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। वर्ष 1939 में इस बल की स्थापना की गई थी। भीड़ प्रबंधन, दंगा नियंत्रण, चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, आतंकवाद और विद्रोह विरोधी अभियानों के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव और राहत कार्य जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने वाला ये बल देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की मजबूत कड़ी है। आज इस कार्यक्रम में CRPF 95 बटालियन के कमांडेंट श्री राजेश्वर बालापुरकर जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। नमस्कार सर।
1: नमस्कार।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार, थैंक यू।
0: पहले अपने शुरुआती दिनों के बारे में कुछ बताएं, आपका बचपन कैसा था, आप क्या बनना चाहते थे, आपके सपने क्या थे?
1: बचपन में की बात करें तो हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं और अकोला डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, तो उसमें एक गाँव है बालापुर करके, हमारा बचपन गया वहाँ पर।
0: अच्छा।
1: और वहीं पर हम नगर परिषद के स्कूल में 1 से 4 तक पढ़े हैं और आप जैसे भी एक गांव का जो माहौल था वही माहौल होता है, खेल कूद करना, नदी, दो नदी के बीच में हमारा गांव है तो दो नदियों के बीच आपने वहां जाना है, नहाना है और मस्ती करना, हर चीज़ें जो है बचपन में जो करते हैं सब लोग, आम

0: लड़के वही होता है, ये सब हम लोगों के साथ हुआ है। उसके बाद फिर मैं, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट अकोला है
1: जी
0: वहाँ से 5वीं से आगे पढ़ने के लिए फिर मैं वहाँ पर गया था।
1: अच्छा, तो अब मतलब एक तरह से देखा जाए तो जैसे एक सामान्य भारतीय होता है, एक सामान्य बच्चा होता है, उसी तरह आपका भी बचपन रहा।
0: हाँ, क्योंकि हमारा परिवार एक साधारण परिवार था।
1: जी
0: पिताजी हमारे तहसील में सर्विस करते थे,
1: जी
0: और इसके अलावा घर में हमारी खेती बाड़ी भी है, और बहुत कोई ज़्यादा इनकम का सोर्स हमारा नहीं था, लेकिन एक जो सामान्य परिवार के तरह ही मेरा परिवार रहा
1: तो
0: है।
1: क्या बचपन से ही आप इस क्षेत्र में आना चाह रहे थे?
0: बचपन से तो इसका क्षेत्र का या फोर्स का नहीं था, लेकिन जब हम 8th 10th में गए थे तब मुझे पहली बार एनसीसी में जाने का मुझे बड़ा इच्छा था कि मैं
1: जी
0: एनसीसी में जाऊं।
1: जी
0: तो पहली साल जब एनसीसी में गया तो मुझे बुलाया कि नहीं, आपका फ्लैट फूट या नौकरी इस किस तरह से कारण से मुझे निकाल दिया गया था, नहीं जा पाया। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर फिर एनसीसी में अपना कोशिश किया कॉलेज में जाने के बाद, तो फिर ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट तीनों भी हमने एनसीसी में किए।
1: वाह,
0: उसके बाद फिर मुझे ऐसे लगा कि चलो फोर्स के प्रति जो है जाना चाहिए। उसके बाद जब हम 12th कर लिए हैं, हमारा फर्स्ट बैच था इसका कंप्यूटर साइंस का, तो हमने BSc कंप्यूटर साइंस से किया है अकोला से, और फिर लगातार कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते रहे हैं। जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते थे तो मैंने LIC, स्टेट बैंक और रेलवे और का स्टाफ सिलेक्शन के काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं।
1: अच्छा,
0: फोर्स में आने का हमारा यही एक उद्देश्य रहा है कि हमको जब NCC में से पहले साल जब निकाला गया, उसके बाद हमको ये मन में हुआ कि नहीं, अब फोर्स में जाना चाहिए। हमारा गांव में एक लड़का था, वो हमारे पहले असिस्टेंट कमांडेंट के टेस्ट में सबसे पहले पास हो गया था। तब उसने मुझे बताया था कि हम असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट में पास हो गए और ये डिप्टी कमांडेंट का पोस्ट है। फिर मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा इच्छुक होने लगी कि चलो मैं भी फोर्स में जाता हूँ, क्योंकि बचपन में हमारे फादर का जो एक सपना था कि मैं इंजीनियर बनूँ। तो इंजीनियर में क्या था कि मुझे वो एक गांव से थे तो
1: ज्यादातर माता पिता का
0: हाँ
1: सपना होता है कि डॉक्टर या इंजीनियर
0: हाँ
1: बने
0: डॉक्टर
1: बच्चे।
0: इंजीनियर तो नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग में क्या था कि उनका सपना था कि भाई बेटा इंजीनियर बने। इंजीनियर की फीस नहीं हम अकॉर्ड नहीं कर पाते, तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं हो पाएगा हमसे, तो हम BSc स्टार्ट किए है। तो
1: अच्छा,
0: BSc कंप्यूटर साइंस हमने उस वक्त किए थे।
1: तो सर BSc कंप्यूटर साइंस में आपने किया, पिताजी का सपना था इंजीनियर और आप बने यहाँ कमांडेंट,
0: हाँ,
1: तो इसके पीछे कुछ कारण, कोई कहानी, कोई
0: उसमें एक बार
1: किस्सा?
0: क्या हो गया कि हम लोग 10th में एयरमैन का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें पिताजी मेरे साथ आए थे, नागपुर में हमारा टेस्ट था, लाखों लड़के उस वक्त आए थे, उसमें से फिर हमारा सिलेक्शन हो गया है। फिर जब मैं 12th में गया तो उसका मेन एग्ज़ाम हुआ एयरफोर्स का, फिर मैंने वो भी पास कर दिया था, फिर मेरा एयरमैन करके सिलेक्शन हो गया है। फिर जब मैं मेडिकल गया, मेडिकल का हुआ सब कंप्लीट हो गया, मैं 12th में मुझे होप थी कि मुझे अच्छे मार्क आएंगे और मुझे अच्छी जगह कहीं मिल जाएगा, ऐसा ही था 12th के बाद में।
1: जी
0: तो मार्क हमारे अच्छे ठीक ही आए हैं, 55% 60% के आसपास मार्क मिले थे, बहुत, क्योंकि
1: उस
0: उस वक्त
1: समय
0: सिक्सटी
1: सर वो
0: परसेंट भी
1: बहुत
0: बहुत होता था,
1: बहुत होता था।
0: जब 60% को फर्स्ट क्लास बोला
1: जी
0: जाता था
1: जी
0: उस
1: जी
0: वक्त।
1: जी
0: अभी तो बच्चे 99.9 लेकर आ रहे हैं,
1: जी जी
0: तो उस वक्त जो 70 एंड अबो होता था उसको डिस्टिंक्शन मिल जाता था।
1: बिल्कुल
0: एयरफोर्स में जब फिर हमको घर पे वो आ गया है अपॉइंटमेंट लेटर, मुझे फिर फादर और मदर दोनों ये हो गया कि बच्चा बाहर चला जाएगा, तो फिर उन्होंने मना कर दिए कि नहीं एयरफोर्स में नहीं जाना है। फिर हमने ग्रेजुएशन स्टार्ट किए। हाँ, फिर उसके बाद फिर क्या हो कि ग्रेजुएशन हो जाएगा, 3 साल ग्रेजुएशन किया है, फिर 1 साल उस ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने LIC का, AA का एग्ज़ाम
1: जी
0: दिया
1: जी जी
0: है, SSB के एग्ज़ाम दिए है, सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम दिए, और ये असिस्टेंट कमांडेंट वाला मुझे नहीं आइडिया होता था, तो फिर मेरा पहले सिलेक्शन हो गया है इसमें ITPP में,
1: जी
0: ITPP में
1: जी
0: एज ए सब इंस्पेक्टर मेरा
1: जी
0: SSB से सिलेक्शन हो गया है। तो फिर क्या हुआ कि 1 साल तक उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया है, सिलेक्शन होने के बाद कोई ज्वाइनिंग लेटर वगैरह कुछ नहीं आया है। फिर मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया है, फिर दोबारा भी मैं सिलेक्ट होकर फिर BSF में सिलेक्ट हो गया हूँ। तो BSF का कॉल लेटर आने से पहले मुझे ITPP का कॉल लेटर आ गया।
1: जी
0: जब मैं कॉल लेटर आ गया तो फिर हमने मैसूर में ITPP ज्वाइन कर लिए सब इंस्पेक्टर,
1: अच्छा,
0: और फिर हम बीच में घर गए, जब मिड टर्म होता है 6 मंथ के बाद में, तो घर जाके देखा तो घर में भी मुझे रेलवे का जो अकाउंट ऑफिसर का जो है अपॉइंटमेंट लेटर घर में आ रखा था, लेकिन उसके ज्वाइन करने का वो समय निकल गया था। फिर वापस जो है हम ITPP पे
1: काफी
0: ट्रेनिंग के लिए चले गए।
1: अप एंड डाउन्स रहे हैं
0: हाँ
1: सर। बड़ा अच्छा, एक आपसे यहाँ प्रश्न पूछना चाहेंगे, जब आप पहली बार वर्दी पहन के और
0: हाँ
1: तैयार होके ड्रेस में अपने घर गए, तो घर
0: हाँ
1: में क्या माहौल था, क्या अनुभव था?
0: ITPP पे में आने के बाद छोड़ने के लिए मुझे

0: जीजा जी साथ में आए थे कि चलो बहुत दूर है, मसूरी बहुत दूर है, तो वो छोड़ने के लिए आए थे। उसके बाद फिर जब हमारा पासिंग आउट होता है,
1: जी।
0: पासिंग आउट परेड में मुझे, मैंने अपने माता पिता को दोनों को बुलाया था, और उन्हीं के द्वारा फिर उन्हीं के सामने जब हम वर्दी पहन के लगे, और उन्होंने जो ट्रेनिंग के बाद हमारे जो स्टार चढ़ते हैं
1: जी,
0: वो उन्होंने लगवाए थे, तो वो बहुत एक अलग आनंद
1: भावुक
0: था।
1: कर देने
0: वाह
1: वाला।
0: हाँ, और एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी
1: जी,
0: उसके।
1: प्रत्येक माता पिता का एक
0: हाँ
1: सपना होता है कि बेटा कुछ बने, और
0: जी
1: जब इस तरह की वर्दी देश सेवा की बात होती है तो गौरव का पल होता
0: हाँ,
1: है।
0: और गांव में भी ये, जब भी मैं जाता था तो सब लोगों को तो मालूम था कि सब इंस्पेक्टर एक गांव के लिए बहुत बड़ी पोस्ट होती है,
1: जी
0: तो वहाँ मुझे उसी तरफ से वो देखते थे, उसी तरफ से वो रिगार्ड करते कि भाई ये सब इंस्पेक्टर है, ये सब इंस्पेक्टर है, और बड़े चाव मतलब आदर से लोग हमारा आई कार्ड देखते थे कि
1: जी
0: दिखाइए जरा आई कार्ड कैसा रहता है।
1: जी सर,
0: तो
1: अपने ट्रेनिंग के दिनों के बारे में कुछ बताएं। सबसे टफ ट्रेनिंग आपको कौन सा लगा?
0: सब इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग तो मैंने ITBP मसूरी में किया है,
1: जी
0: एकेडमी में, और उसके बाद फिर जब मैं ITBP में 3 साल सर्विस किया, उस वक्त मैं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में रहा हूँ,
1: जी जी
0: उस
1: जी
0: वक्त TN शेषन, मुरली मनोहर जोशी, इन लोगों के साथ में चला हूँ। तो फिर ITBP से फिर मैंने क्या किया कि UPSC का ये एग्ज़ाम दिया है, स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड होता था उस वक्त, अभी तो UPSC
1: अच्छा
0: करती है,
1: जी,
0: उस स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड में मैंने डायरेक्ट एग्ज़ाम दिया, तो मेरा इसमें CRPF में सिलेक्शन हो गया है। तो 1 साल की ट्रेनिंग तो मैंने ITBP में किया है पूर्णा,
1: जी
0: उसके बाद सेम ट्रेनिंग 1 साल की मैं इसमें किया है CRPF में आने के लिए।
1: जी
0: तो बेसिक ट्रेनिंग क्या होता है कि हमारा पूरा चेंज हो, घर से जो आते हैं हम एक रॉ बनकर आते हैं, और बेसिक ट्रेनिंग हमको एक पूरा सा आकार दे देता है,
1: जी
0: डिसिप्लिन सिखाता है, बातचीत का तरीका सिखाते हैं, और जिस आप वेपन्स में है या उसमें अपना कौशल है उसको आपको सिखाते हैं कि आप क्या बनना है, और सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग में ये होता है कि आपको एक बर्दाश्त करने का मादा सिखाते हैं। हम आपको एक वाक्या बताते हैं,
1: जी सर, बिल्कुल।
0: चलो 26 जनवरी में हम लोग माउंट इसे मसूरी में थे, हम लोग थोड़ा सा पहुंचने में लेट हो गए हैं, 26 जनवरी की समय थी, और जब परेड के लिए हमको बुलाया तो नेचुरली हमको 1 घंटा पहले ही बुलाया जाता है जब भी कोई फंक्शन होता है, तो थोड़ा सा हम लेट पहुंचे थे। तो जब परेड ख़त्म हो गई 26 जनवरी की, तो हमें जो डड्डू चाल होती है ना, ऐसे सिर के ऊपर होकर जम जम करते हैं,
1: जी
0: ऐसे करते करते लगभग हमको नीचे के गेट से ऊपर के गेट तक लेकर गए, क्योंकि हम लोग
1: लेट हो
0: लेट
1: गए
0: हो गए थे, वो भी तो आज तक हमको याद है वो चीज़ जो
1: सर।
0: है।
1: एक बात कही जाती है कि यदि किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफल होना है तो एक बार आर्मी की ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए। इसके आलोक में आप इस ट्रेनिंग के इम्पोर्टेंस को कैसे देखते हैं?
0: आर्मी की ट्रेनिंग सिर्फ इसीलिए लेना चाहिए कि उसको एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है,
1: जी
0: अनुशासन में रहना हर भारतीयों को, हर जवान को, हर कार्मिक या हर आदमी का एक फ़र्ज़ है कि वो एक डिसिप्लिन में, चाहे वो किसी भी प्रकार का डिसिप्लिन रहे,
1: जी
0: आप अपने
1: जी
0: घर में अपने माता पिता का किस तरह से आदर करते हैं वो भी एक डिसिप्लिन में आता है, आप सोशल में कैसा व्यवहार करते हैं वो भी आपके डिसिप्लिन में आएगा, और मान लीजिए कभी ज़रूरत पड़ी आपको देश सेवा के लिए भेजने की, तो उस हिसाब से आप तैयार रहोगे। इसके लिए 1 साल की ट्रेनिंग जो है वो, साल भर की नहीं तो कम से कम 6 महीने का ट्रेनिंग भी जो है
1: जी
0: कंपलसरी होना चाहिए।
1: तो मतलब सर,
0: हम
1: कहने का कि जीवन में यदि सफल होना है तो अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, चाहे
0: अनु
1: वह किसी भी तरह का अनुशासन हो।
0: अनुशासन और एक बर्दाश्त करने का मादा, जो आप
1: जी
0: सहन करने की जो सहन शक्ति होती है, वो आपको बेसिक ट्रेनिंग या पुलिस का कोई भी ट्रेनिंग आपको सबसे पहले वही सिखाता है कि आप सहन कीजिए। आपको उस्ताद इतना प्रोपोगेट करते हैं, इतना आपको सजा देते हैं, फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर एक वो तैयार हो रहा है, बर्दाश्त करने की शक्ति तैयार हो रही है,
1: अनुशासन और संयम,
0: अनुशासन और संयम जिसको
1: संयम।
0: कहेंगे,
1: जी।
0: दोनों चीज़ों।
1: काम के दौरान कोई ऐसा अनुभव जिससे आपको कुछ बहुत जबरदस्त सीखने को मिला हो, आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें?
0: काम के दौरान हमारा जो वर्किंग जो स्टाइल है या हमारे जो कार्य प्रणाली है
1: जी
0: उसमें हमें हमारे जवानों के साथ साथ रहना पड़ता है।
1: जी
0: जब हम कंपनी कमांडर थे तो हमारे अंदर 135 जवान काम करते थे, उन्हीं को लेकर हमको चलना है,
1: जी
0: और जब हम साथ चलते हैं तो 135 लोगों के जो दिमाग है, सबके अलग अलग दिमाग होते हैं,
1: जी
0: हमको उनको लेकर चलना है। उसके अलावा ऐसा कोई चीज़ हम ना करें कि वो हमको देख रहे, उनको लगे कि हमारे जो कमांडर है या हमारे साहब जो है गलत कर रहे हैं
1: जी
0: या ठीक नहीं कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको उनको सजा भी देना पड़ता है, किसी डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन अगर कोई काम कर लेता है तो उनको सजा भी देना पड़ता है, तो एक बार हमने ऐसी

0: ये हमारे जूनियर अफसर का सुनकर किसी को सजा दी। बाद में पता चला कि नहीं, उसको तो वो तो सही था, उसने नहीं किया था, उसको सजा नहीं देना चाहिए था। वही बड़ा लगा कि इसके बाद फिर हम अपना अपने विवेक से जो है काम करना शुरू किए।
1: तो ये एक मतलब कहने का कि जीवन में विवेकवान होना भी जरूरी है,
0: हाँ,
1: जैसा आपने कहा,
0: अपने
1: अनुशासन,
0: जी
1: संयम और विवेक।
0: विवेक, अपने विवेक का इस्तेमाल हमको करना।
1: तो सर, जवानों की जो स्थिति है, हमेशा सीमा पर हैं, चाहे ड्यूटी पर हैं, घर से दूर रहते हैं ज्यादातर टाइम, ऐसे समय में उनको काम करने की प्रेरणा कैसे मिलती है? कोई तीज त्योहार हुआ, कुछ हुआ, हम अपने घरों में बैठकर खुशी खुशी मना पाते हैं, क्योंकि कहीं हमारे जवान सेक्रिफाइस कर रहे
0: अच्छा,
1: हैं।
0: काम करने की प्रेरणा तो वो देशभक्ति का एक तो जज्बा उसके अंदर होता है, क्योंकि उसको पता है जिस दिन वो ज्वाइन करता है। आजकल की हम जवान नौजवान में हमने वो नहीं देख पाते हैं कि वो सोचते हैं कि हमको कहीं कंपनी में मिल जाए, बेंगलोर सिटी मिल जाए, ना पुणे मिल जाए, और ऐसा जॉब मिल जाए कि मैं इसी कमरे में जाकर बैठ कर आ जाऊँ।
1: जी
0: जो
1: जी
0: सिपाही भर्ती होता है उसको ये प्री माइंडेड है, उसको मालूम है कि उसने जंगल में चलना है, 1 साल का कठिन ट्रेनिंग करना है, और ये ट्रेनिंग के बारे में तो पूरा देश को मालूम है कि पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है, फोर्सेस
1: जी
0: की ट्रेनिंग
1: जी
0: होती है,
1: जी
0: वो
1: जी
0: अत्यंत कठिन होती
1: सबसे
0: है। और
1: कठिन।
0: जब इसमें वो करके आता है तो हमें बताया गया था पहले कि आपकी 2 शादियां होती है, तो जैसे भी हम ट्रेनिंग जब कंप्लीट होता है तो पहली शादी हमारी हथियार के साथ होती है, क्योंकि वो आपके साथ जब तक आप सर्विस में हैं तब तक
1: तब
0: रहेगा,
1: तक है।
0: आप सोएंगे तब भी आपके पास रहता है, नक्सल इलाका हो चाहे जैन के इलाका हो, टेररिस्ट इलाका, वहाँ पर हम अपना उसको साथ लेकर सोते हैं हथियार को। तो इसलिए वो हमारे उस्ताद हमको बोलते थे कि आपकी पहली शादी हथियार के साथ होती है, तो उसको एक अलग जज्बा देता है। और फिर उसके बाद एक यूनिफॉर्म, हमारे
1: जी
0: यहाँ आज भी
1: जी
0: जो है यूनिफॉर्म पर्सनल को बड़े आदर से देखा जाता है,
1: जी
0: और क्योंकि वो बहुत सेक्रीफाई करता है, हर आदमी जानता है, सिविलियन भी जानता है कि वो बहुत सेक्रीफाई कर रहा है। घर में शादी है, नहीं जा पा रहा है,
1: जी जी
0: वो एक फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन वो इतना डिसिप्लिन में है कि उसको उजागर नहीं करता है।
1: जी
0: वो जो संयम हम बात करते हैं, संयम ही उसको इस शक्ति देता है कि आपके घर में कोई समस्या भी है तो भी वो वहां पर रहकर दूर। अभी पहले क्या होता था कि
1: जी
0: घर की कोई भी समस्या है तो आपको पहले चिट्ठी आती थी,
1: जी जी जी
0: चिट्ठी आने में आपको कम से कम 10-15 दिन लगते
1: बिल्कुल
0: थे, उस जवान के पास पहुंचने तक वो कहीं बॉर्डर पर है 2-4-5 दिन और लगते थे, तो ऐसे 10-15-20 दिन से अंदर पहले उसको चिट्ठी नहीं मिलती थी। उससे क्या होता है कि उसकी जो ग्रेविटी थी वो अपने आप कम हो जाती है। अभी क्या है कि वो बच्चा खा नहीं रहा है, तुरंत वीडियो कॉल करके देखो,
1: जी जी
0: उसको
1: जी
0: मार पीट रहा है या उसकी वाइफ मार रही है या बच्चा कुछ कर नहीं रहा, तो वो वहां से अग्रेसिव हो जाता है
1: जी
0: कि तुरंत आकर हमारे पास आएगा कि सर देखिए सर मेरे घर में ऐसे ऐसे हो गए, मेरी बीवी को मार दिया है हमारे, और मुझे अभी तुरंत जाना है। तो
1: जी
0: ये थोड़ा सा फर्क पड़ गया अभी डिसिप्लिन में।
1: सर, डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने युवाओं के लिए ही, बहुत सारे युवा आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर
0: जी
1: रहे हैं, फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं और सिविल्स की भी तैयारी कर रहे हैं, क्या पैटर्न होना चाहिए उन्हें परीक्षाओं में सफल होने के लिए?
0: एक्चुअल आपको जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो 2 सब्जेक्ट में आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ता है, एक तो मैथमेटिक्स में जो है और एक अंग्रेजी में जो है। उससे क्या होता है कि मैथमेटिक्स में ही ज़्यादातर बच्चे फेल होते हैं,
1: और
0: और
1: मैथमेटिक्स को ही एक बचपन से बच्चे बहुत
0: डर
1: टफ
0: के, हाँ,
1: सब्जेक्ट, और हाँ
0: टफ सब्जेक्ट मानते हैं,
1: जी
0: जबकि इतना टफ वो नहीं है। अगर आपको उसके थॉट्स जो है अगर क्लियर हो गए हैं
1: जी
0: तो
1: थ्योरम्स क्लियर
0: इतना
1: है
0: टफ नहीं है, वो आपको 100 100 मिलते हैं। और
1: जी
0: मुझे मुझे जहाँ तक मतलब आइडिया है, मुझे अपने इस पर विश्वास है, वो उस एग्ज़ाम में ज़्यादा सबसे ज़्यादा मार्क मैंने अपने मैथ्स में से ही पाए होंगे,
1: मैथ्स में
0: तभी
1: एक चीज़
0: मुझे,
1: तो है, सही है
0: हाँ
1: तो पूरा नंबर
0: हाँ
1: मिलेगा,
0: पूरे के पूरा नंबर मिलता है। पढ़ाई का
1: कंपटीशन बहुत
0: ज़्यादा हो,
1: ज़्यादा
0: कंपटीशन
1: है।
0: बहुत ज़्यादा हो गया है।
1: जी तो इसमें क्या सर आपको लगता है, ऐसे बहुत बच्चे कहते हैं कि हर वक्त पढ़ते रहना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं एक फिक्स्ड आवर्स पढ़ाई बहुत है, आपका क्या पैटर्न था, कैसे
0: मैं
1: पढ़ते थे?
0: अभी एक आईएएस है प्रकाश,
1: जी
0: वो भी रिटायर्ड अभी गए हैं, उनसे जैसे संपर्क में आया था, उन्होंने कहा कि अगर आपको आईएएस आईपीएस का कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो 999 आवर्स जो है आपने पढ़ना है। देखिए अगर आप उतना करोगे तो आप निश्चिंत जो है उसको क्रैक कर जाओगे एग्ज़ाम को।
1: सर, यदि आज का युवा फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता है तो आपके अनुसार उनके अंदर कोई तीन खूबियां क्या होनी चाहिए?
0: एक तो सबसे पहले उसको ये चाहिए कि वो घर से बाहर रहने का इश्यू हो, परिवार से दूर रहने का,
1: होम सिकनेस ना
0: हाँ,
1: हो,
0: उसको होम सिकनेस
1: क्योंकि
0: नहीं आनी चाहिए।
1: जी
0: होम सिकनेस तो बाद में आती है, जब आप जाते हो तब आती है वो, लेकिन पहले ही आपके इच्छा है, आपका मादा हो कि मैं घर से बाहर जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसको मालूम है कि फोर्स में वो जाएगा तो उसको ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग करने के बाद हार्ड ड्यूटी करनी है, ड्यूटी भी

0: ऐसी है कि उसका समय नहीं है,
1: जी जी
0: खाने का
1: जी
0: समय नहीं होता है, वो सोने का समय नहीं मिलता है ड्यूटी में। जब हम छत्तीसगढ़ जी वाले ड्यूटी में जब जाते हैं तो दो दो तीन तीन चार चार दिन के ऑपरेशन में चले, एक बार गए हैं अपना ड्रॉ राशन लेकर जाते हैं, अपना बनाकर खाते हैं रास्ते में जो भी है। तो एक तो वो है कि उसको घर से बाहर रहने की उसकी इच्छा होनी चाहिए,
1: जी
0: और दूसरा है कि वो ट्रेनिंग जो भी कठिन ट्रेनिंग होती है वो करने का इच्छुक हो। हम अपने बेसिक ट्रेनिंग के दौरान देखे कि बहुत सारे लोग जो है छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो नहीं कर पाते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: आपकी जो आदतें होती है 8-9 बजे उठने की, वहाँ पर 5 बजे उठना पड़ता है, और फिर खाने का समय नहीं होता है, ब्रेकफास्ट का समय, ब्रेकफास्ट के लिए आपको 20-25 मिनट दिया जाएगा, फिर आपको तुरंत कपड़ा चेंज करके आना है, खाने के बाद आपका आधा घंटा भी रेस्ट करने के लिए मिलेगा, तब तक और आपको बॉलिंग कर लिया जाता है।
1: जी
0: वो बर्दाश्त करने का उसको होना चाहिए कि मैं बर्दाश्त कर लूँ।
1: सर, बहुत देर से हम लोग बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा मनोरंजन की भी बात हो जाए।
0: हाँ,
1: आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष,
0: हम भी बचपन से
1: और
0: जानते हैं आकाशवाणी को जो
1: हमारे
0: है।
1: जवानों के साथ आकाशवाणी का बड़ा संबंध रहा है। कुछ
0: हाँ,
1: अपनी आकाशवाणी से जुड़ी यादें साझा करेंगे हमारे साथ?
0: आकाशवाणी से हम लोगों का जो हम संदेश देते हैं 15 अगस्त को, ये
1: जी जी
0: अभी तक तो हम लोग इंटीरियर इलाके में होते थे। मेरी जो भी फॉर सर्विस रही है पिछले 10-12 साल से कंटिन्यू मैं नक्सल एरिया में रहा हूँ, तो वहाँ पर रेडियो और आकाशवाणी का बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। तो अभी बनारस में आने के बाद हमको सबसे पहले जब मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ 30 जून को,
1: जी
0: 24 को, तो 15 अगस्त को ही मुझे बुलाया गया कि सर आपका
1: जी
0: संदेश हमको भेज दीजिएगा।
1: जी
0: तो मैंने अपना संदेश रिकॉर्ड करके 4-5 बार उसको देखा है, फिर आपको यहाँ भेजा था।
1: जी
0: वो जब उस प्रसारण होने के बाद जब उस आवाज़ सुनी तो वो हमको
1: अनुभव
0: सबसे अच्छा, मतलब वो
1: लगा।
0: अनुभव बहुत मेमोरेबल रहा है
1: जी
0: वो चीज़
1: जी
0: जो अभी
1: जी
0: तक जो
1: जी
0: है
1: हाँ, एक
0: आकाशवाणी
1: चीज
0: के
1: को सुनते
0: साधन की जो
1: सुनते
0: है।
1: बड़े होना, फिर एक बार
0: जी
1: हाँ करके बोलना, तो
0: हाँ,
1: निश्चित रूप से।
0: कि आज मेरी आवाज़ जो है पूरे बनारस में सुनाई दी
1: जी
0: है,
1: जी
0: और इसके अलावा फिर बनारस के भी जो हमारे कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं सोशल वर्क करते रहता हूँ, तो वो लोग भी बोले कि सर आपका आज संदेश हमको सुनने के लिए मिला, सो वो FM पर भी आता है,
1: जी सर, अब
0: तो
1: तो आकाशवाणी अपना खुद का ऐप न्यूज़ ऑन
0: हाँ
1: AIR है, पूरे वर्ल्ड में अब इसके
0: हाँ
1: कार्यक्रम से कभी भी
0: कभी भी
1: सुने
0: सुन
1: जा
0: सकते
1: सकते
0: हैं।
1: हैं। जी
0: जी
1: तो सर, कुछ ऐसा कोई गीत आपका पसंदीदा जो आप हमारे श्रोताओं के साथ सुनाना चाहेंगे आज?
0: गीत तो हमको पूरा नहीं आता, 4 लाइन ही
1: हाँ
0: आती है
1: हाँ
0: उसकी,
1: वही सर।
0: लेकिन हमारे बेसिक ट्रेनिंग के दौरान जो एक हमारे आज कमांडेंट अभी रिटायर गए हैं वो,
1: जी
0: तो उनका बहुत अच्छा गीत था, यारा दिल दारा मेरा दिल करता।
1: जी जी जी
0: तो जब भी हम कोई फंक्शन होता है तो ये गीत को हम जरूर गाते
1: दो लाइनें सर हमारे श्रोताओं के
0: थे।
1: लिए।
0: या

0: दिलदारा मेरा दिल
1: क्या क्या
0: कर।
1: बात
0: वो
1: है।
0: हमको आज तक, और जब भी हम मिलते हैं, जब भी हम किसी कोर्स में साथ मिलते हैं, तो गीत को जरूर एंजॉय करते हैं।
1: सर बहुत अच्छा लगा सर ये चीज। यदि आम व्यक्ति जो कि फोर्सेस में नहीं है लेकिन वो चाहता है कि हम भी कुछ देश
0: देश,
1: सेवा करें तो क्या
0: हाँ,
1: कर सकता है?
0: देश सेवा तो सिर्फ देश पर बॉर्डर लड़ने से ही नहीं होती है।
1: जी
0: हाँ, यहाँ पर जैसे मैं, और यहाँ पर भी कई सोशल प्रोग्राम में जब गया हूँ, तो मान लीजिए जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं, वो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ पर लोग फोर्सेस के प्रति बहुत आदर रखते हैं,
1: जी
0: बहुत सम्मान करते हैं। हर 15 अगस्त, 26 जनवरी या ओकेजनली बीच में भी फोर्सेस के लिए अपना ब्लड डोनेट

0: करके देते हैं, तो
1: जी
0: ये तो एक बहुत बड़ी देश सेवा ही होगी है कि कब जरूरत पड़ जाए किसको। इसके अलावा अपना जो देश के संविधान है, नियम्स है, इसका हम पालन करें, तो
1: सर,
0: ये भी एक देश सेवा में
1: एक
0: शामिल होता
1: युवाओं
0: है।
1: से ही जुड़ा एक प्रश्न और मन में आ रहा है। आप बोले अनुशासन और संयम, आज की जो वर्तमान युवा पीढ़ी है इसमें इन दोनों की ही कमी दिखाई दे रही है,
0: जी,
1: तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: कमी इसलिए है कि आज वो सब डिजिटल हो गया है चीज़। मैं कोई भी खुद कुछ काम नहीं करना चाहता है, हर काम ऐसे बैठे बैठे अगर मैं यहीं बैठूं और यहीं सारे काम हो जाए,
1: जी
0: यही चाहता है
1: जी
0: आज का युवा जो है, कहीं बाहर जाकर या इस तरह का काम नहीं करना चाहते जिसमें इसमें फिजिकल एक्स्ट्रा काम करना पड़े। जैसे हम अभी देखते हैं कि कुछ खाना हमें मंगवाना है, तो वो नहीं चाहता है कि मैं बाहर जाकर कहूँ, वो तुरंत ऐड कर दे, ऑर्डर करेगा पर वो सामान आ जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं जो है आदमी को और कमजोर कर रही है।
1: जी तो मतलब काम करने के लिए बाहर निकलना, आप शुरू में भी आपने कहा होम सिकनेस से बचना है, ये
0: होम
1: भी एक तरह से होम सिकनेस ही है।
0: सिकनेस और जो आराम,
1: जी
0: जिसको हम आराम ही कहेंगे कि हम बैठे बैठे भी मंगवा दिया है और खा लिया है, कुछ सामान और मंगवा लिया,
1: जी जी
0: मार्केट में नहीं जाना है, अभी कपड़ा यहीं परचेस कर लेते हैं, ऐप पे देख लेते हैं, तुरंत मंगवाते हैं। तो ये जो बाहर अपना काम करने का जो आदत है
1: जी
0: उसको डालना पड़ेगा उसको।
1: सर, आपको अपने कैरियर में अभी कोई ऐसा पल जिसमें आपको बड़ा गर्व महसूस होता हो कि ये काम मेरे द्वारा हुआ?
0: जो 26/11 का हुआ था,
1: जी
0: उसके अंदर मैं वहाँ पर, उस वक्त पोस्टिंग था मुंबई में, और रात में 12 बजे हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाली हमारी रैपिड एक्शन फोर्स की पहली पार्टी थी वहाँ पर
1: अच्छा
0: जी। तो उस वक्त मैं वहाँ पर करीब 3 दिन तक हम लोग उसके अंदर रहे हैं उस ऑपरेशन में, और मैं श्रीनगर में चिटी सिंहपुरा जो हुआ था ना केस कांड,
1: जी जी जी
0: चिटी
1: जी जी
0: सिंहपुरा में भी मैं शामिल था वहाँ पर उस
1: अच्छा
0: वक्त जब हो गया था। तो उसके बाद उसी रात को हम लोग ऑपरेशन करने वहाँ चले गए थे,
1: जी
0: और 26/11 के ऑपरेशन में भी हम लोग 3 दिन साथ रहे हैं ये। और उसके बाद जब वहाँ से हम चले हैं तो लोगों ने हमारा बड़ा स्वागत किया है
1: जी
0: मुंबई में, तो वो एक बड़ा गर्व का पल महसूस हुआ कि
1: सर, उस घटना में बहुत सारे जवान शहीद भी हुए थे,
0: जी
1: तो और ऐसे भी फोर्सेस हैं, तो फोर्सेस में कई बार ऐसी दुखद घटनाएं होती हैं, तो ऐसे शहीदों के परिवारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहें?
0: शहीद के परिवार को तो सबसे पहले तो ये है कि हम उसकी जो नुकसान हुआ, जो हुआ है, वो तो हम भर कर नहीं दे सकते कभी भी, लेकिन उनके परिवार के प्रति हमको संवेदना रखनी चाहिए हमें, मतलब जो फोर्स वालों को तो रखना ही चाहिए और रखते भी हैं फोर्स वाले। जो सिविल लोग होते हैं
1: जी
0: इनको भी उनके प्रति तो थोड़ा संवेदना रखना चाहिए कि ये परिवार है, इनके घर का जो कार्मिक जो है हमारे देश के लिए, अपने देश के
1: जी
0: लिए अपना बलिदान किया है या क्या किया है।
1: बहुत सारे युवा सर आज के समय में ये चाहते हैं कि आर्मी में जाएं, और उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, उनको बस यही पता है कि फिजिकल इतना होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए या समथिंग, और जो फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो कैसे विकसित कर होता है?
0: जिम जाने से आपका फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बनेगा,
1: जी
0: आपको वहाँ पर रनिंग करनी होती है, 5 किलोमीटर जो है 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना
1: जी
0: होता है,
1: यही यही पूछ रहा हूँ।
0: आपको 13 फीट का जो है लॉन्ग जंप करना होता है,
1: जी
0: 3.5 फीट करीब आपको हाई जंप करना होता है,
1: जी
0: इसके अलावा आपको रस्सा पर चढ़ना होता है। तो ये जो फिजिकल स्ट्रेंथ है सिर्फ जिम जाने से नहीं आएगी, आपको ग्राउंड में दौड़ना पड़ेगा और आपका जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप वो जो टाइमिंग है टाइमिंग के अंदर आना पड़ेगा।
1: और सर, अब चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं काशी में पिछले 2 साल से हूँ, यहाँ पर वृक्षारोपण, सफाई अभियान,
1: जी जी
0: नशा मुक्ति,
1: जी
0: और इसके अलावा कुछ बच्चों को जो है, गरीब बच्चों को जो है
1: हाँ,
0: मदद
1: आप
0: करता
1: इसके अलावा भी
0: हूँ।
1: बहुत सारे एक्टिविटीज में
0: हाँ
1: इन्वॉल्व रहे हैं,
0: जी
1: उनके बारे में भी कुछ एक दो बातें हमें बताएं हमारे श्रोताओं को।
0: हाँ अभी हमने वरुणा का जो है 11 किलोमीटर सफाई अभियान किया है, वो सृजन सामाजिक संस्था है उनके और नगर निगम के साथ कोलाब्रेशन करके। इसके अलावा लगभग 1 लाख के आसपास पेड़ हमने पूरे 2 साल में यहाँ लगवाए हैं,
1: जी
0: अलग अलग पार्क में जाकर, और घाट की जब भी कोई फंक्शन होता है तो हम घाट की सफाई करना जाते हैं,
1: जी जी
0: 80 घाट से लेकर जो है दशाश्वमेध घाट तक, लगभग मैक्सिमम घाटों की हम सफाई करते हैं जब भी कोई फंक्शन होता है, जैसे छठ पूजा हो गई है, कोई त्यौहार हो गया है, तो
1: जी
0: साफ
1: जी
0: करते हैं जाते हैं। इसके अलावा स्कूलों में हम जाते हैं बच्चों को नशों से दूर रखने के लिए जो है लेक्चर देते हैं कि बच्चे आजकल नशे से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है,
1: जी जी
0: वो बताते हैं। अभी हमने गांव डुमरिया में जो है 2,51,000 पेड़ लगाए, 2 घंटा में।

0: और इसका जिक्र भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में किया था,
1: अच्छा
0: और उसका जो बुकलेट्स निकली है उसमें भी मेरा फोटो भी है उसके अंदर, उस
1: अच्छा
0: बुकलेट में हमारे जवान पौधा लगाते हैं।
1: जी
0: तो इनको मैं बस काशीवासियों को या सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अपना एरिया जो है उसको स्वच्छ रखें,
1: जी जी
0: हरा भरा रखे, पेड़
1: जी
0: पौधों लगाए। हम देख रहे हैं कि अभी 48 टेम्परेचर हमारे बनारस
1: बहुत
0: में पहुंच
1: ज़्यादा
0: गया है,
1: जी
0: तो हम पेड़ काटे जा रहे हैं, एसी को लगाए जा रहे हैं,
1: जी
0: लेकिन पौधारोपण नहीं कर रहे। जब जो पौधारोपण करते हैं उसका संरक्षण भी करना चाहिए,
1: जी
0: हरा भरा रखने के लिए वो प्रयास करें, यही हम
1: अपने
0: कर
1: शहर
0: रहे हैं,
1: को स्वच्छ,
0: स्वच्छ और
1: सुरक्षित और
0: सुंदर
1: हरा
0: रखें।
1: भरा रखें,
0: जी
1: सुंदर
0: जी
1: रखें। श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि राजेश्वर बालापुरकर सर ने जो बातें हमें बताई वे निश्चित रूप से आपके दिलों तक पहुंचेंगी। आपसे बात करके लगा कि देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी की चीज नहीं है, बल्कि ये हर दिन का फर्ज है। तो जब हमारे ये जवान जागते रहते हैं तभी हम रातों में चैन से सो पाते हैं। उनके इस जज्बे को हमारा सलाम। राजेश्वर सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं से इतनी अच्छी बातें शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया है और अपने लोगों को जो हमारी बात पहुँचाने का जो मौका दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: आपसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कमांडेंट सीआरपीएफ 95 बटालियन राजेश्वर बालापुरकर से आशुतोष की बातचीत। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 होने वाले हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है गायन। कलाकार हैं पशुपतिनाथ मिश्र, राग है दरबारी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायन। कलाकार थे पशुपतिनाथ मिश्र, राग था दरबारी। हारमोनियम पर संगत कर रहे थे मेहताब खान और तबले पर संगत कर रहे थे पंडित जे मैसी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचो सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजना

0: योजनाओं का उद्घाटन करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है। इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam were also honored with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials today said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was launched.